मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज बुधवार है। शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की तिथि 31। तदनुसार 22 जुलाई 2026 ईस्वी। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 होने ही वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन, आलेख एवं वाचन सुरेंद्र झा का।
1: संसार में एहन के अछि जकरा ऐहिक सुखक कामना नहीं हो। संसारक समस्त क्रिया व्यापार सुखे के लेल संचालित होइ छै। मानवीय संबंधों यह उत्सथिक आ स्वजन परिजनादिक जे शब्दावली अछि तकरो सुखे के लालसा परिभाषित करै छै। मुदा मनुष्यक उत्कर्ष त तखन सिद्ध होइ छै जखन ओ आनक सुखक लेल अपन सुखक त्याग कऽ दै छै। अनका सुखी देखबाक हेतु अपन

0: समस्त मनोरथक बलि दऽ दै छै। प्राचीन भारत में भेला राजा शर्याति, हुनक कन्याक नाव छलनि सुकन्या, यथा नाम तथा गुण। सुकन्या अतुलित रूप वैभव आ गुण सँ संपन्न छलीह। राजा शर्याति हुनका योग्य वरक अन्वेषण में दिन राति एक केने छलाह। तखनहि च्यवन ऋषिक दृष्टि सुकन्या पर पड़ल, ओ सुकन्या पर अनुरक्त भऽ गेलाह। राजा शर्यातिक समक्ष सुकन्या सँ विवाह करबाक प्रस्ताव राखलनि। राजा शर्याति गाछ पर सँ खसलाह, कहाँ सुंदरता में अप्सरों के लज्जित के निहारी, गुणक खैनी, ऐश्वर्य में पालिता कोमलांगी सुकन्या, आ कहाँ रुक्ष जटा सँ युक्त क्षीणकाय कुरूप आ दरिद्र च्यवन। शर्याति प्रस्ताव के स्वीकार नहीं कर सकला। ऋषि क्रुद्ध भ गेला, शर्यातिक राज्य में अशांति उत्पन्न कऽ देलनि। अनावृष्टि, भूचाल आ महामारी सँ प्रजा त्राहि त्राहि कऽ उठल। शर्यातिक आगा दुइयेटा विकल्प छल, ऋषिकें सुकन्या दान कऽ देब वा अपना प्रजाकें अपने सोझा में मरित देखब। राजा किंकर्तव्य विमूढ़ भऽ गेलाह, मुदा सुकन्या च्यवन के वरण करबाक निश्चय कयलनि। व्यक्तिगत दुख सँ प्रजाक दुख नमहर छल, प्रजाक सुख शांतिक लेल ओ स्त्री सुलभ समस्त आकांक्षाक बलि दऽ देलनि। ऋषिकें अंगीकार कय सुकन्या प्रजाकें आसन्न सर्वनाश सँ बचा लेलनि। व्यक्तिगत सुखक बलि दऽ कऽ सर्वे भवन्तु सुखिनकें सार्थक कयलनि। संसार में एहन के अछि जकरा ऐहिक सुखक कामना नहीं हो? संसारक समस्त क्रिया व्यापार सुखेक लेल संचालित होइ छै। मानवीय संबंधों यह उत्सथिक आ स्वजन परिजनादिक जे शब्दावली अछि तकरो सुखेक लालसा परिभाषित करै छै। मुदा मनुष्यक उत्कर्ष तऽ तखन सिद्ध होइ छै जखन ओ आनक सुखक लेल अपन सुखक त्याग कऽ दै छै, अनका सुखी देखबाक हेतु अपन समस्त मनोरथक बलि दऽ दै छै। प्राचीन भारत में भेला राजा शर्याति, हुनक कन्याक नाव छलनि सुकन्या, यथा नाम तथा गुण। सुकन्या अतुलित रूप वैभव आ गुण सँ संपन्न छलीह। राजा शर्याति हुनका योग्य वरक अन्वेषण में दिन राति एक केने छलाह। तखनहि च्यवन ऋषिक दृष्टि सुकन्या पर पड़ल, ओ सुकन्या पर अनुरक्त भऽ गेलाह। राजा शर्यातिक समक्ष सुकन्या सँ विवाह करबाक प्रस्ताव राखलनि। राजा शर्याति गाछ पर सँ खसलाह, कहाँ सुंदरता में अप्सरों के लज्जित के निहारी, गुणक खैनी, ऐश्वर्य में पालिता कोमलांगी सुकन्या।
1: चिंतन, अभी आपने सुना, आकाशवाणी दरभंगा से प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा।
2: आजुक कृषि चर्चा के संग हम शांतनु कुमार मिश्र, किसान भाई, जो आधुनिक पद्धति के संग और नीक जना मिश्री कंद के खेती कैल जाए तो बेसी से बेसी उपजा प्राप्त कैल जा सकत है, संगे एकरा बेच कर नीक कैचा से हो कमायल जा सकत है। किसान भाई, मिश्री कंद के आधुनिक खेती के लेल बलोई दोमट माटि, जाय में जल निकासी के नीक व्यवस्था हुआ, ओहन खेत के चुनाव कर मिश्री कंद के खेती करबा के चाही। किसान भाई, ओना तो सब प्रकार के माटि में एकर खेती कैल जात है, लेकिन बलोई दोमट माटि अइ खेती के लेल नीक मानल जात है। किसान भाई, जुलाई अगस्त में बुआई के लेल 20-30 किलोग्राम बिया प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ित है, संगे 30 सेंटीमीटर के दूरी पर क्यारी बना कर रोपबा के चाही। एक क्यारी से दोसर क्यारी के बीच में नाला हेबा के चाही, जैसे पटौनी करे में सुविधा हुए, संगे उचित जल प्रबंधन के हरदम व्यवस्था हेबा के चाही। किसान भाई, बरसात के मौसम में एकर खेती कैल जात है तो पटौनी के कम आवश्यकता पड़ित है, लेकिन सूखा पड़े तो पटौनी क देबा के चाही। फूल आवा पर तोड़ाई को फेंक देबा के चाही, ऐसा उपज प्रभावित होते संगे।

0: उपजा में कमी आबि जात अछि। किसान भाई खेत के तैयारी में माटि के कंद के विकास के लेल बलुई दोमट माटि हेबा के चाही, संगे माटि पलट वाला हर से एक गहीर जोताई करी, संगे एकर बाद कल्टीवेटर से 203 जोताई कर पाटा लगा देबा के चाही। बुआई से पहिने प्रति हेक्टेयर 10-15 टन सरल गोबर के खाद खेत में उपयोग करबा के चाही। किसान भाई मिश्री कंद के उन्नतशील प्रभेद बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कयल गेल अछि, ओ अछि राजेंद्र मिश्री कंद 1, राजेंद्र मिश्री कंद 2 प्रमुख अछि। ई किस्म के पूरा बिहार में खेती कयल जा सकैत अछि, संगे उपजा सेहो नीक होइत अछि। बीज दर आ बुआई के समय फल कंद के उत्पादन के लेल जुलाई अगस्त में यदि एकर खेती करै छी तब 20-25 किलोग्राम बिया प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होइत अछि। कतार से कतार आ पौध से पौध के दूरी 30x30 सेंटीमीटर रखबा के चाही, संगे खाद आ उर्वरक प्रति हेक्टेयर 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, संगे 80 किलोग्राम पोटास प्रयोग करबा के चाही। कंद के फटवा से बचेबा के लेल 5 किलोग्राम बोरेक्स के उपयोग करब लाभदायक होइत अछि। किसान भाई खरपतवार नियंत्रण में खरपतवार 50% फसल के नुकसान पहुँचाबैत अछि। बुआई के 25-30 दिन आ 50-60 दिन के बाद निराई गोराई करब आवश्यक भ जाइत अछि, तकर बाद एहि फसल पर माटि चढ़ेबा के चाही। रासायनिक विधि के लेल पेडीमेथिलीन 3 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग करबा के चाही। ई दवाई बुआई के तुरंत बाद करबा के चाही। किसान भाई फूल के तोड़ाई, किसान भाई यदि उद्देश्य सिर्फ कंद प्राप्त करब अछि तो फूल के तोड़ कर फेंक देबा के चाही। कल्ली बनने से पहिने एकरा नष्ट कर दी। फूल नहीं तोड़ला पर कंद के आकार और उपजा पर बुरा प्रभाव पड़ित अछि। उपज 75% से कम भ जात अछि। उपज आ खुदाई फसल के लगभग 4-5 महीना नवंबर जनवरी में तैयार भ जात अछि। एकरा कोदाल से सावधानी पूर्वक खुदाई कर मार्केट में बेचल जा सकैत अछि। किसान भाई एहिमे रोग ब्याज विशेष कर बीजोत्पादन वाला फसल में नुकसान पहुँचाबैत अछि फल्ली छिद्रक। एकरा नियंत्रण लेल 5% मिश्री कंद के बीज के घोल बनाकर रासायनिक उपचारित केला के बाद एकर रोपाई करबा के चाही। ई अगस्त में बुआई कयल गेल फसल में बेसी नुकसान पहुँचाबैत अछि। एहिमे पत्ती सिकुड़ जात अछि आ पौध छोट भ जात अछि, जाहि से फसल बर्बाद भ जात अछि। बुआई से पहिने आघात फसल पर रोग के प्रकोप कम होइत अछि। कीटनाशी के छिड़काव 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर कीटनाशक दवाई के प्रयोग करबा के चाही। अही के संग आजुक कृषि चर्चा संपन्न भेल। शांतनु कुमार मिश्र के आज्ञा देल जाओ। नमस्कार।
1: कृषि चर्चा अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।

0: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीएनकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा में आज का विषय है लिकोरिया रोग। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर हिना आरजू।
3: ल्यूकोरिया हमारे समाज में बहुत ही आम बीमारी है जो कि करीब 60% औरतों में पाया जाता है। किसी भी औरत में अगर नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाए तो उसे ल्यूकोरिया कहते हैं। यह डिस्चार्ज आमतौर से 15 से 20 साल की उम्र की लड़कियों में या फिर गर्भावस्था के दौरान या अंडेदानी से अंडे निकलने के दौरान या मासिक से पहले बढ़ जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, नॉन स्पेसिफिक वैसा ल्यूकोरिया जिसमें बदबू ना हो या जिसके कल्चर से कीड़े ना निकलें। यह या तो सर्विक्स से होता है या वजाइना।

0: से होता है। सर्विक्स से उस स्थिति में होता है जबकि सर्विक्स में इन्फेक्शन हो जाए या सर्विक्स की सतह पर जख्म हो जाए या बच्चा पैदा होने से सर्विक्स फट जाए, उस स्थिति में ल्यूकोरिया बढ़ जाता है। वजाइनल ल्यूकोरिया, वजाइना की सतह से डिस्चार्ज उस समय बढ़ जाता है जैसे कि गर्भावस्था के दौरान या अंडदानी में ज्यादा खून का जमना या पेल्विस में इन्फेक्शन होने से वजाइनल ल्यूकोरिया बढ़ जाता है। स्पेसिफिक जो भी वजाइनल डिस्चार्ज पस की तरह हो और उसमें बदबू हो और उसके कल्चर में कीड़ा निकले उसे स्पेसिफिक ल्यूकोरिया कहते हैं। इसके कारण है ट्राइकोमोनियासिस, ये सबसे प्रमुख और सबसे आम कारण है। इसमें डिस्चार्ज हरा पतला और वजाइना की सतह पर दर्द का अनुभव, वजाइना की सतह में जलन और खुजली हो जाती है, मरीज को पेशाब में जलन, पेशाब करने के बाद दुखन, पेड़ों में दर्द, कमर में दर्द का अनुभव होता है। इस डिस्चार्ज के कल्चर से ट्राइकोमोनास कीड़ा मिलता है। इसका ट्रीटमेंट है मेट्रोनिडाजोल 200 मिलीग्राम की सुबह दोपहर शाम एक सप्ताह या टिनिडाजोल 300 मिलीग्राम की सुबह शाम एक सप्ताह। इसके अलावा सेक्निडाजोल की दो गोलियां 1000 मिलीग्राम जो बना देती हैं वो सिर्फ एक बार दी जाती हैं, या वजाइना यानी कि मासिक के रास्ते रखने की गोलियां जैसे बीटाडीन वजाइनल पेसरीज कहते हैं या मलहम जिसे जेल कहते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा कारण है कैंडिडियासिस। इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो दही की तरह होता है और ये आमतौर से गर्भावस्था के दौरान या फिर डायबिटीज के मरीजों में पाया जाता है। इसमें भी वजाइना की सतह पर खुजली और जलन का अनुभव होता है, इसके अलावा पेशाब में भी जलन होती है। इसके ट्रीटमेंट में कीटोकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल की 150 मिलीग्राम की टैबलेट सिर्फ एक बार दी जाती हैं। इसके अलावा मासिक के रास्ते रखने की पेसरीज जिन्हें हम माइकोस्टैटिन पेसरीज कहते हैं वो भी दी जाती हैं। इनके अलावा क्लमाइडिया भी एक कारण है। इसमें पेशाब में भी जलन होती है, दुखन होती है और डिस्चार्ज होता है। इसके ट्रीटमेंट में भी टेट्रासाइक्लिन 500 मिलीग्राम की सुबह दोपहर शाम और रात यानी 4 टाइम 14 दिनों के लिए दिया जाता है। डॉक्सीसाइक्लिन की टैबलेट 100 मिलीग्राम की सुबह और शाम 14 दिनों के लिए या फिर अमोक्सिसिलिन की 500 मिलीग्राम की टैबलेट्स सुबह दोपहर शाम एक सप्ताह या एरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम की टैबलेट्स सुबह दोपहर शाम एक सप्ताह तक दी जाती हैं। एक और प्रमुख कारण है गार्डेनेला वजाइनालिस वजिनाइटिस। इसमें जो डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया होता है वो मछली की तरह होता है, मछली की तरह की बदबू वाला होता है और ये भी हरे रंग का होता है। इसके ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल की 500 मिलीग्राम की गोलियां सुबह शाम एक सप्ताह या 2 ग्राम की एक साथ दी जाती हैं। इनके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन सुबह शाम 100 मिलीग्राम की गोलियां 14 दिन या टेट्रासाइक्लिन की 500 मिलीग्राम की गोलियां सुबह दोपहर शाम और रात 14 दिन तक दी जाती हैं। इसके अलावा रोगी को किसी योग्य चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए।
1: स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत अभी आपने डॉक्टर हिना आरजू को सुना, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। श्रोताओं, वक्त है भक्ति संगीत में डूबने का, तो आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम वंदना। पहले ये देशगान।

समवेत स्वर में अभी आप सुन रहे थे देशगान। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह के स्वर में ये सुंदर सा भजन।

तुम करुणा के सागर हो, मेरी गागर भर दो। प्रभु तो करुणा की बरसात करते ही हैं, बस जरूरत है मालिक के चरणों में समर्पण की। जिसने मैं को त्याग दिया, प्रभु के नाम को धारण किया, वो प्रभु का पार्षद बन जाता है। बहरहाल आइए सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में ये सुंदर सा भजन।

मनुआ राम नाम तू गाले, अनूप जलोटा के स्वर में अभी आप ये भजन सुन रहे थे। इसी के साथ भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी दरभंगा से प्रस्तुत है रामचरित मानस गान।

कामदेव को भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए भेजना देवताओं की एक चाल थी जिसमें वे सफल हुए थे, किंतु शिव के तृतीय नेत्र के खुलते ही कामदेव की भस्म हो जाने की घटना से देवगण एक बार फिर हतोत्साह हो गए। रति के रोने बिलखने से द्रवित होकर भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया कि उसका पति कामदेव अब से अनंग होकर सभी प्राणियों को व्यापेगा। इस वरदान से देवताओं का मनोबल बढ़ा और ब्रह्मा तथा विष्णु समेत सभी देवता शिव जी के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने

अनंत के रूप में कामदेव को पुनर्जीवन देने के लिए शिव जी की प्रशंसा की। देवगण ने तब पार्वती के अपार तप का वर्णन करते हुए शिव जी से उन्हें पत्नी रूप में अंगीकार करने की प्रार्थना की। अपने आराध्य श्री राम के वचन याद करके शिव जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली।

रामचरित मानस गान अभी आपने सुना, मुख्य स्वर था मालिनी नाम्बियार का। प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। अब जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। 10 बजे आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का, लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 10:30 पर। दिन के 11 बजे हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे बांसुरी वादन। 11:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। दिन के 12 बजे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम फिल्म संगीत,

महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार का प्रसारण समय होगा दिन के 12:30 पर। देशभक्ति गीत आप सुन सकेंगे 1:10 पर। सदाबहार गीतों का आनंद एक बार पुनः आप ले सकेंगे 1:15 और 2:30 पर। हम आपको सुनवाएंगे रोजगार सूचना। अपराह्न 3:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारी दूसरी सभा के अंतर्गत शाम 5:00 आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे तरुण कुसुम। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 5:40 पर। विद्यापति गीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:10 पर। मैथिली संवाद का प्रसारण समय होगा शाम 6:25 जिसे आप हमारे पटना केंद्र से सुन सकेंगे। पर ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर, इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे घर आंगन। खेती गृहस्थी का समय होगा शाम 7:00। बिहार विधान मंडल समीक्षा, इसका प्रसारण होगा शाम 7:50 पर, जिसे आप हमारे पटना केंद्र से सुनेंगे। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से। सिंगरहार का प्रसारण समय होगा रात्रि 8:15। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात्रि 10:00। तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, अब समय हो चला है समाचारों का, तो पहले आप सुनेंगे संस्कृत में फिर हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः लोकसभायां विपक्ष नेतारं राहुल गांधिनम् आरोपितवान् यत् प्रशासनस्य आश्वासनस्य अनन्तरमपि सः नीट विषयक चर्चायाः स्वपूर्वामाग्रहात् निवृत्तः।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: पूर्वाहणे कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अन्य दल सदस्याः नीट विषयक चर्चा आधृत्य प्रदर्शनम अकुर्वन्। केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंहः तथा केन्द्रीय गृह सचिवः गोविंद मोहना लोक कल्याण मार्गस्थते प्रदर्शनस्थले कांग्रेस नेतृभिः सह मेलनं कृतवन्तौ। तत्रैव संसदि विपक्ष सदस्यैः पुनः पुनः कृतैः व्यवधानैः लोकसभा राज्यसभा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने

0: आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रपति ने डिजिटल नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, औषधि और स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि प्रसंस्करण और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह चेतावनी दी है कि अमरीका हर उस स्थल पर जोरदार हमले करता रहेगा जहां ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू करने का प्रयास करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनन के राष्ट्रपति जोसेफ फाउन की उपस्थिति में श्री ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान तनाव जारी रखने के बावजूद बातचीत की कोशिश में है। ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमला न करने की चेतावनी देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ऐसा होने पर अमरीका 10 गुना अधिक हमले करेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रण किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट गतिविधियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं और 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यों वाली पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ष पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार श्रोता लोकन, आजुक नमस्कार मिथिला कंक में हम रंजीत और हमारे संगे स्टूडियो में उपस्थित छथि कैयाम अहू के हमारे नमस्कार।
1: जी हाँ बिल्कुल रंजीत जी, और श्रोताओं को भी प्यार भरा नमस्कार।
0: और जना के श्रोता लोकन के बुझल छन कि कार्यक्रमक शुरुआत हम अपन करै छी सुविचार से, तो सबसे पहले आजुक सुविचार।
1: ज्ञान ही वह शक्ति है जो अंधकार को मिटाती है, स्वामी विवेकानंद ने कहा।
0: देखो निश्चित तौर पर जे अन्हार जखन भ जाइ छै, साँझ होइ छै, अन्हार होइ छै, तऽ लोक ओहि अंधेरा के मिटाबऽ के लेल दिया जराबै छथिन, नहि कि अंधकार सँ लड़ै छथिन। तऽ जँ

0: अहाँके जीवन में ज्ञान रूपी संस्कार अहाँ ज्ञान अर्जित नहीं केने छी तो अहाँके जीवन हमेशा अंधकारमय रहत, कतबो अहाँ अपना अंदर प्रकाश जरा लेब ओहिसँ अहाँके ज्ञान के उपलब्धि हासिल नहीं भऽ सकैत अछि। ताहि लऽ कऽ स्वामी विवेकानंद के लिखल शब्दक जे तात्पर्य जे छै मर्म अछि ओकरा हमरा लोकनिके बुझबाक चाही और जीवन में ओकरा आत्मसात करबाक चाही। और सुविचार के बाद हमरा लोकनि एक डेग आगा और बढ़ाबै छी और नजर राखै छी आजुक दिनक इतिहास पर, जे आजुक दिन की खास महत्व रखैत अछि हमरा राष्ट्र में, हमरा समाज में, और जानकारी साझा कऽ रहल छथि कहिया।
1: आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय या ये कह लें कि विश्व मस्तिष्क दिवस भी मना रहे हैं। और आज ही के दिन 1933 में वाइली पोस्ट ने अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। आज ही के दिन 1981 में भारत का पहला भूस्तरीय उपग्रह एप्पल के ने सफलतापूर्वक कार्य करना शुरू किया था। 1947 में संविधान सभा ने तिरंगे को आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंकित किया गया था।
0: तो ई छल आजुक दिनक इतिहास, जे हमरा लोकन जानकारी साझा केलहुँ। और आजुक दिनक इतिहास में जे सबसँ पैघ इतिहास जकरा कहल जाए ओ कयाम बड़ा सुंदर अपने कहलहुँ, जे आइए के दिन हमरा लोकन के जे भारत के झंडा अइ, जे झंडा विश्व पटल पर अपन उपस्थिति धमाकेदार तरीका सँ एंट्री अपन करा रहल अछि, ओ तिरंगा झंडा के आइए के दिन जे छै से अथी कयल गेल छल,
1: अंगीकार किया गया,
0: अंगीकार कयल गेल छल। मतलब एकरा ई कयल गेल जे फाइनल रूप एगो देल गेल छल जे भारतीय झंडा जे हैत आजादी के बाद ओ अइ तीन रंग के हैत, ओहिमे अशोक चक्र हैत, लाल हरियर और ई रंग के छै से एमे मिश्रण हैत। अइ तरह अइ चीज के आइए के दिन एकर पूरा निर्णय लेल गेल छल। तऽ अइ विषय पर हमरा लोकनि सेहो चर्चा करब, चर्चा किछु और बात पर सेहो करब। मुदा श्रोता लोकनि, सबसँ पहिने जेना अपने लोकनिके बुझल अइ कि हमरा लोकनि कार्यक्रममे मैथिली गीतके आनन्द लै छी, तऽ आउ सबसँ पहिले सुनै छी सुन्दरसन मैथिली गीत, ओकरा बाद हमरा लोकनि फेर अपने लोकनिसँ बातचीत करब। आउ सुनै छी मैथिली गीत।

0: अखन हम लोग मैथिली गीत सुनै छलहुँ हैं कुंज विहारी मिश्र के आवाज में। राजूक नमस्कार मिथिलांक में हमारे घड़ी के सुई किछ और इशारा कर रहा है।
1: जी बिल्कुल, और घड़ी के सुई के साथ हमें चलते रहना चाहिए। जीवन में भी हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हम समय के साथ अपने हर काम को, हर चीज़ को करते रहें, ताकि हम जो काम हमारा है, जो बचा हुआ समय हमें मिले, समय के साथ काम करने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ, हमारे पास बच जाती है। बहुत सारे काम को हम समय से करते हैं तो जो 24 घंटे हमारे पास हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि आकाशवाणी दरभंगा से सारी चीज़ों को समय के साथ, घड़ी के साथ हम आप तक पहुँचाएँ। और अब वक्त हो चुका है हालचाल का। हालचाल प्रस्तुत करेंगे रंजीत कुमार झा।
0: धन्यवाद कहिया, नमस्कार। राज्य के सरकारी स्कूल में शिक्षक की कमी जल्दी दूर कैल जाए। शिक्षा विभाग के चारिम चरण TRE4 के शिक्षक नियुक्ति के लिए अधिसूचना अही महीना के अंत तक बिहार लोक सेवा आयोग के पठा देल जाए। विधानसभा में मंगलवार का प्रश्नोत्तर काल के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मौजूदगी में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ई घोषणा कैलन है। शिक्षा मंत्री गौतम कृष्ण के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में कहलन कि TRE4 के तहत प्राथमिकी, माध्यमिकी और उच्च माध्यमिक माध्यमिक स्कूल में शिक्षक के नियुक्ति कराओल जाए। शिक्षक के कमी के आकलन भ चुकल है। जिलावार और विषयवार शिक्षक के सूची विभाग के प्राप्त भ गए। रोहिल रंजन के ध्याराकर्षण के जवाब में शिक्षा मंत्री मानलन कि शिक्षक के पदस्थापन के विसंगति कोनो स्कूल में बेसी तो कोनो में कम में एक विषयवार संख्या संतुलित कैल जाए। मुख्यमंत्री सदन में स्पष्ट रूप से कहलन है कि 600 से लेकर 700 उच्च विद्यालय के पास भूमि नहीं है। एहन स्कूल के 6 महीना के भीतर भूमि उपलब्ध

0: करा देल जाय। अभिषेक रंजन के सवाल पर शिक्षा मंत्री के जवाब में हस्तक्षेप करैत सीएम कहलन कि जमीन भेटवा के बाद स्कूल के भवन बनावा के सुविधा सेहो कैल जाय। मंजीत कुमार सिंह के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री कहलन कि 2676 प्राथमिक और माध्यमिक और 721 उच्च माध्यमिक स्कूल के अपन भवन नहीं है, जे पर सरकार जल्दीए बनावे के विचार कर रहल अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलन है कि गांव में होल्डिंग, कचरा प्रबंधन और नल जल योजना से लोग के राशि लेवा जेबा के प्रावधान पहले से कैल गेल छल। मुख्यमंत्री कहलन कि ई व्यवस्था के और बेहतर बनावे को लक पंचायत राज विभाग नयका नियमावली बनाब जा रहा है। कुछ बदलाव केला के बाद ए पर गरीब से टैक्स नहीं लेवा के प्रावधान सेहो सरकार के द्वारा बनाओल जायत। मुख्यमंत्री कहलन है कि गरीब से टैक्स ले जेबा के बाद पूरा तरह से निराधार एकरा सरकार पूरा तरीका से खारिज कर रहल अछि। बिहार बोर्ड के 11वीं में नामांकन के लेल एक बेर फेर से OFSS पोर्टल खोल देल गेल है। पोर्टल में 5 से 11 अगस्त तक के लेल खोजल गेल है विचार कर रहल अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलन है कि गांव में होल्डिंग, कचरा प्रबंधन और नल जल योजना से लोग के राशि लेवा जेबा के प्रावधान पहले से कैल गेल छल। मुख्यमंत्री कहलन कि ई व्यवस्था के और बेहतर बनावे को लक पंचायत राज विभाग नयका नियमावली बनाब जा रहा है। कुछ बदलाव केला के बाद ए पर गरीब से टैक्स नहीं लेवा के प्रावधान सेहो सरकार के द्वारा बनाओल जायत। मुख्यमंत्री कहलन है कि गरीब से टैक्स ले जेबा के बाद पूरा तरह से निराधार एकरा सरकार पूरा तरीका से खारिज कर रहल अछि। बिहार बोर्ड के 11वीं में नामांकन के लेल एक बेर फेर से OFSS पोर्टल खोल देल गेल है। पोर्टल में 5 से 11 अगस्त तक के लेल खोजल गेल है। CBSE के दोसर बोर्ड या और कंपार्टमेंटल के परीक्षा में विद्यार्थी के जे बिहार बोर्ड के इंटर के इच्छुक छथि तो अन्य कोनो बोर्ड से छूटल विद्यार्थी के उक्त अवधि में अपन नामांकन BSEB के संबंध शिक्षण संस्थान में उपलब्ध सीट पर करा सकैत छथि। पुलिस भर्ती परीक्षा के लेल 22 गो स्पेशल ट्रेन सेहो चलाओल जायत। बिहार पुलिस रेडियो ASI भर्ती परीक्षा में शामिल होवे वाला अभ्यर्थी के सुविधा के लेल पूर्व मध्य रेलवे के तरफ से 22 जुलाई को 4 गो परीक्षा स्पेशल ट्रेन के संचालन के निर्णय रेलवे बोर्ड के द्वारा लेल गेल है। एकर उद्देश्य विभिन्न जिला से परीक्षा केंद्र तक पहुंचे वाला अभ्यर्थी के सुगम और अतिरिक्त रेल सुविधा उपलब्ध करेनाइ छल। राज्य में जमीन के दाखिल खारिज कराबक लेल अब 200 रुपया आम जनता के देबे पड़तन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लोक सँ शुल्क वसूलबा के प्रावधान कर जा रहा है। सदन में मंगल को भूमि सुधार दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2026 पर सहमति प्रदान कयल गेल छल। एहि विधेयक के तहत भूमि में दाखिल खारिज से संबंधित प्रत्येक याचिका के अपील के ज्ञापन और पुनरीक्षण आवेदन पर शुल्क लगाबे के प्रावधान कयल गेल है। राज्य सरकार एक बेर फिर स्पष्ट केलक है कि स्टेट हाईवे पर सिर्फ व्यावसायिक वाहन से टैक्स लेल जाय। परिवहन मंत्री दामोदर राउत मंगलवार को विधान परिषद के दोसर पाली में ई जानकारी देलन। आजाद MLC अब्दुल बारी सिद्दीकी के ओर से गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा के दौरान सरकार से टैक्स नहीं लगाबे के मांग कैल गेल छल, तकर जवाब में ई देल गेल छल। राज्य के खेती के जमीन के उपयोग और व्यवसायिक कार्य के करवा के लेल उसमें बदलाव के आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में विधानसभा में मंगलवार का गैर कृषि भूमि और प्रयोजन के संपरिवर्तन विधेयक 2026 पर सहमति प्रदान कर दिल गेल है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड के ओर से मंगल को स्थानीय निकाय के शिक्षक और आयोजित 5वीं और अंतिम सक्षमता परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिल गेल है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर त्यागराजन MS एकर परिणाम जारी कैलन। पहली 12वीं तक के लिए आयोजित एहि परीक्षा में कुल 14512 शिक्षक शामिल भेल छला है, जै में 6559 पुरुष और 7953 महिला शिक्षक शामिल छला है, जै में 4353 30% शिक्षक सफल अभ्यर्थी एहि में सफल भेला है, जै में सफल होवे वाला में 1870 पुरुष और 2483 महिला अभ्यर्थी सफलता प्राप्त कैलन है। बिहार के जिला के अस्पताल में गंभीर और सामान्य मरीज के इलाज के जांच के व्यवस्था के दुरुस्त कैल जाए। मरीज के स्थिति के अनुरूप अस्पताल में लाल, पीला और हरा क्षेत्र बनाओल जाए। अस्पताल पहुँचे वाला मरीज के हुनकर स्वास्थ्य के स्थिति के अनुरूप संबंधित क्षेत्र में जांच और उपचार के सुविधा उपलब्ध कराओल जाएत। स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि राज्य के सब जिला के अस्पताल में प्रभावी ट्राइज प्रणाली लागू करवा के निर्देश पठा दिले हैं। एकरा तहत मरीज के प्राथमिक जांच क के हुनकर गंभीरता के अनुसार हुनकर तत्काल संबंधी क्षेत्र में भेजल जाए ताकि हुनका समय पर इलाज भ सकें। डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में आईसीयू के जीर्णोद्धार कार्य के 6 महीना बीत गेला के बादो अखन तक कोनो स्थिति स्पष्ट नहीं भ सकल है। अई वजह से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत गंभीर मरीज के इलाज पूर्णा आईसीयू में अखनो कैल जाते अतः के स्थिति सामान्य वार्ड जकाँ अच्छ। सुविधा के घोर कमी के बीच चिकित्सक अतः मरीज के इलाज करवा के लेल मजबूर छथि। अपने लोकन के बताबे चली कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल अपना कारनामा के लिए आए दिन चर्चा के विषय बनल रहत अच्छ। अखन ही हाल चाल अपने लोकन आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहल छी।
1: अब 70 वर्ष

0: अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का, 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रैयाम और सकड़ी में नवका सहकारी चीनी मिल के स्थापना के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैसार आयोजित कयल गेल। नवका सहकारी चीनी मिल स्थापना के प्रगति, किसान के संगे सहभागिता और गन्ना उत्पादन बढ़ावों के रणनीति पर विस्तार से विचार विमर्श कयल गेल। अचानक हृदय गति रुकवा के स्थिति में समय पर कैल गेल कार्डियो प्लानिंग मिनोरी रिसिस्टेशन और CPR कोनो व्यक्ति के जीवन बचा सकते है। उद्देश्य से IAP और के और सो मंगलवार का दरभंगा मेडिकल कॉलेज सहित संस्थान में छात्र के CPR के गुर सिखाओल गेल। प्रखंड बनीगाछी प्रखंड क्षेत्र के चनौर और टटवार पंचायत में मंगल का आयोजित सहयोग शिविर में कुल 7 गो मामला के निष्पादन सहयोग शिविर के माध्यम से कराओल गेल। ओते बिरौल में जन कल्याणकारी योजना के घर घर जाकर पहुँचावा के उद्देश्य मंगलवार का नगर पंचायत स्थित माध्यमिक विद्यालय बलिया अकबरपुर बैंक सोनपुर पघारी पंचायत भवन में जाकर शिविर के लोग के जानकारी दी गई और 80 गो आवेदन प्राप्त भेल। जिलाधिकारी कौशल कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जाला रेड्डी और ग्रामीण SP साक्षी कुमारी मंगलवार को संयुक्त रूप से कुशेश्वर स्थान पहुंचकर श्रावणी मेला के तैयारी के निरीक्षण कयलनि। अधिकारी सर्वप्रथम बाबा कुशेश्वरनाथ मंदिर में विधिवत जलाभिषेक और पूजा अर्चना कऽ कऽ क्षेत्रवासी के सुख शांति और समृद्धि के कामना कयलनि। DM, SP और ग्रामीण SP मंदिर परिसर और श्रावणी मेला के तैयारी के जायजा लै श्रद्धालु के लिए सुविधा, सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, प्रवेश और निकासी मार्ग, भीड़ प्रबंधन और अन्य आवश्यक व्यवस्था के बारीकी से अवलोकन कयलनि हैं। पश्चिमी कोशी नहर सकड़ी के श्रीरामपुर वितरणी शाखा नहर में पानी आवश्यक धान रोपनी के कार्य शुरू भ गेल है और किसान के चेहरा खिल उठलनि हैं। अनावृष्टि के कारण किसान के खेती कार्य प्रभावित होबय लागल छल। भूगर्भ जल स्तर नीचा गिरबा से प्राइवेट बोरिंग और पटवन कऽ कऽ किसान धान रोपनी करबा पर मजबूर छला और खर्चीला भऽ गेल छलनि हैं। विभाग के मुताबिक खजौली के मेन कैनाल से 10 जुलाई का पश्चिमी कोसी नहर के श्रीरामपुर वितरणी शाखा नहर में करीब 48 क्यूसेक पानी छोड़ल गेल छल, जकर लाभ आब आम किसान के भेट रहल अछि। एहि के संग आजुक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि सम्पन्न होइत अछि। नमस्कार।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर

0: 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हालचाल के बाद श्रोताओं को अवगत करा दें लोकल अपडेट से। नगर में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, मृत पशु आदि से संबंधित शिकायत को लेकर निगम के नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर हैं 6202777 40 पर आप शिकायत कर सकते हैं। शहर में बिजली की समस्या होने पर फ्यूज़ कॉल सेंटर के मोबाइल नंबर हैं 7763818777 पर आप संपर्क कर सकते हैं। दरभंगा से ट्रेनों की बात करें तो सुबह 6:30 पर पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, सुबह 8:15 पर दरभंगा से नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, दोपहर 12:30 पर दरभंगा से पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, शाम 7:00 दरभंगा से नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। विमानों की बात करें तो सुबह 9:30 पर दरभंगा से मुंबई के लिए, सुबह 11:30 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 12:25 पर दरभंगा से कोलकाता के लिए, दोपहर 12:50 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 1:35 पर दरभंगा से मुंबई के लिए ये विमान रविवार, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को है। दोपहर 3:00 दरभंगा से हैदराबाद के लिए और शाम 4:35 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए।
3: जब हम बात करें यातायात संबंधी जानकारी के, तो सवालों के मुताबिक चली कि यातायात संबंधी जानकारी में जो अपना क्षेत्र सौ जो तीनों साधन है यातायात के, ओमे कतौ कोनो फेरबदल नहीं कैल गेल है। शहरी क्षेत्र में सड़क मार्ग के अगर हमारा लोगों की बात करी तो वन वे सिस्टम आइयो लागू, ओमे कतौ कोनो फेरबदल नहीं कैल गेल है। जो कोनो VVIP मूवमेंट के कारण सड़क मार्ग में परिवर्तन जिला प्रशासन के द्वारा कैल जाए, एक जानकारी अपने लखन के आकाशवाणी दरभंगा के द्वारा जरूर देल जाए। ट्रेन सफर के अगर हमारा लोगों की बात करी तो जाहि गाड़ी के जो आगमन के समय और जाहि गाड़ी के जो प्रस्थान करवा के समय निर्धारित कैल गेल रेलवे बोर्ड के द्वारा, ओमे कतौ कोनो परिवर्तन नहीं कैल गेल है। और जना कि हमारा लोगन भोरे अबै छलहुँ कार्यालय तो मौसम लगभग ठीके ठाल छल, तो मौसमो ठीक है, तो मौसमों का असर नहीं पड़ सकत। जो हवाई सफर के हमारा लोगन बात करी तो हवाई अड्डा और सटी के समय से जाहि विमान के संचालन के समय निर्धारित है वो अपना समय से निर्धारित संचालित है। लेकिन एक बात हम और अपील करबे आकाशवाणी दरभंगा परिवार के तरफ से तमाम श्रोता के, जो आज अपने लोगन कतौ सफर करवा के योजना हुए तो जाहि मार्ग से अपने लोग सफर करवा के योजना बनेने हुए ओठमका जो इंक्वायरी नंबर दिल गेल छे, वही इंक्वायरी नंबर पर एक बेर क्वेरी कर ली, सवाल जवाब कर ली, जानकारी प्राप्त कर ली, ओकरा बाद अपने सफर के शुरुआत करी। और कहियाँ हमारा लोग अखन अपन सफर के शुरुआत कर रहल छी। नमस्कार मिथिला के कार्यक्रम में आज एक डेग आगा बढ़े छी और आप समय हमारा लोग के किछ और इशारा कर रहे थे, तो पहले एक फिल्म संगीत का आनंद ले छी, ओकरा बाद फिर श्रोता लोग बातचीत करब।

0: कि श्रोताओं को ये गाना बिल्कुल पसंद आया होगा। श्रोताओं, आज बुधवार है और बुधवार को हम मिथिला की आवाज़ लेकर आते हैं, मिथिला के लोगों से हम रूबरू होते हैं, उनके द्वारा किए गए बातों को, उनके द्वारा किए गए कारनामों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और आज भी हमारा कुछ ऐसा ही इरादा है। और अब आकाशवाणी दरभंगा से प्रस्तुत है मिथिला की आवाज़।
1: नमस्कार, आज
0: जो
1: मिथिला के आवाज़ के अंक में हमारा संग जुड़ रहा है मखाना अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मनोज कुमार। अब हम लोग इनका से जानबा के प्रयास कर रही छे जे मिथिला के आंगन से निकल कर आई जे मखाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपन वैश्विक पहचान बना लेलक है, और ओकर सबसे पैघ पैदावार उत्पादक मखाना अगर कहल जाए तो हमारे मिथिला के क्षेत्र थी, और मिथिला के क्षेत्र में ये राष्ट्रीय संस्था मखाना अनुसंधान केंद्र थी। अब हमर जे मखाना के खेती करे वाला किसान लोकन छथि, भाई लोकन छथि, तिनका हम आई आकाशवाणी दरभंगा के और साक्षात्कार के माध्यम से बताब चाहे छियनि कि मखाना के छे से अब निकल के समय भ गेल छे पानि से, तो कर जे किसान देर से खेती कैलन, जे पहले कृषि कैलन, कौन उन्नत के किस्म हमारा मिथिलांचल के क्षेत्र के पानि के हिसाब से उन्नत प्रभेद हेतै, विस्तृत जानकारी अपने अपन लोगन के वरिष्ठ वैज्ञानिक मनोज कुमार दे रहल छथि। आकाशवाणी दरभंगा परिवार में अपने के स्वागत थी। अपने हमारा श्रोता के बतबियन जे मखाना के खेती करे वाला जे किसान छथि उनका कौन तरह खेती करबाक चाहिए, कौन नस्ल के खाना के उत्पादकता से और अपन व्यवसाय बढ़ेबाक चाहिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय जो भी कृषक बंधु आकाशवाणी दरभंगा से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन सबों का मेरी तरफ से और राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा की तरफ से हार्दिक अभिवादन। पहले जितने भी कृषक बंधु जुड़े हुए हैं उन सबों को मैं उन सबों का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपकी मेहनत, लगन और परिश्रम के बल पर ही आज हमारा जो एक पारंपरिक उत्पाद है, हमारी जो एक पारंपरिक फसल है मखाना, उसके कारण पूरे विश्व में, विश्व के मानचित्र पर आप कहें तो हमारा मिथिला क्षेत्र पुनः प्रतिष्ठित हुआ है।
1: जी।
2: रही बात की अभी क्या किया जा सकता है, तो इस समय जिन्होंने बहुत जल्दी खेती की शुरुआत की थी, फरवरी के महीने में जिनकी रोपाई हुई थी, उनके लिए अभी कटाई का समय है, हार्वेस्टिंग का समय है, तो दो तीन चक्रों में वो इस समय मखाना की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और अपने उत्पाद को जितनी जल्दी हो सके वो प्रसंस्करण की तरफ ले जाएं। भंडारण पानी में ही करना है, ये हमारे किसान जानते हैं, लेकिन एक जो सबसे प्रमुख बात है जो किसानों को मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि सिर्फ मखाना के उत्पाद को, बीज को ही ना बेच लें, अपनी आमदनी को और बेहतर करने के लिए कच्चे बीज को बेचने के बजाय आप प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार करें, मखाने का लावा तैयार करें, मूल्य संवर्धन की तरफ जाएं, और हो सकता है तो विपणन की तरफ या निर्यात की तरफ। कुछ हमारे युवा साथी जो इस समय जुड़ रहे हैं उनसे मेरी सलाह है, उनको मेरी सलाह है कि आप निर्यात की तरफ भी ध्यान दें। तो खेती में आय है, लेकिन आय को और भी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन, निर्यात की तरफ भी आप जरूर भागीदारी करें। और जिन किसानों ने, जिन कृषक बंधुओं ने थोड़ी देर से मखाने की रुपाई की है, उनके लिए अभी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, फूल फल निकलने का समय चल रहा होगा, वो चाहें अगर फ्लावरिंग की शुरुआत हो रही होगी कहीं तो वो सूक्ष्म पोषक तत्वों के माध्यम से जैसे कॉपर सल्फेट है उसका छिड़काव कर सकते हैं 0.1%, इससे बीजों का आकार बड़ा होगा, बीजों के वजन में बढ़ोतरी होगी, उनको अच्छा उत्पादन मिलेगा। साथ ही अगर व्याधियों की समस्या होती है, कीड़े मकोड़ों की समस्या होती है, तो ऐसे में किसानों से मेरा अनुरोध ये है कि वो जैविक तरीकों से इन कीड़ों का नियंत्रण करें, व्याधियों का नियंत्रण करें, जैसे नीम का तेल है, 3 से 5 ml नीम का तेल स्प्रे करेंगे प्रति लीटर पानी में घोल के, तो भी इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभी जो आने वाला सीजन है, एक जरूरी सलाह यह है कि अब जब प्रसंस्करण करें मखाने का तो बीच नवंबर तक आते आते आपके मखाने का प्रसंस्करण हो जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद बीजों में अंकुरण शुरू हो जाता है और फिर जो प्रसंस्कृत उत्पाद की क्वालिटी होती है, उसकी गुणवत्ता होती है, वो प्रभावित हो जाती है। तो बेहतर आमदनी के लिए प्रसंस्करण की तरफ भी जाएं, मूल्य

0: की तरफ भी जाएं और प्रसंस्करण सही समय पर भी कर लें। एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जिन्होंने देर से खेती की शुरुआत की है कि पहली बार इस वर्ष मखाने की जो हार्वेस्टिंग मशीन है वो भी बाजार में अगस्त के महीने में उपलब्ध हो जाएगी। तो अभी तक बहुत ही श्रम साध्य काम रहा है मखाना की निकासी, इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि मशीन के आने से ये काम और भी आसान हो जाएगा, बहुत ही सुगमता से किसान इस काम को कर पाएंगे और उनकी आमदनी में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी।
1: और अमूमन ऐसा देखा जाता है कि मखाना का खेती करने के लिए लोग गहरे तालाब का उपयोग करते हैं, लेकिन इस बीच में हम लोग भी कई जगह गए हैं और देखे हैं कि जैसे लोग धान की खेती सपाट खेतों में कर लेते हैं, मखाना का खेती भी वैसे लोग अब सपाट खेतों में थोड़ा सा पानी डाल के लोग कर रहे हैं इसका। लेकिन एक तरफ तो लोग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसका प्रभाव समाज में ये हो रहा है कि लोग उसको थोड़ा अविश्वसनीय ढंग से देख रहे हैं कि अरे पानी गहरे तालाब में मखाना की खेती होती है, इतने छोटे से जगह में इतने कम पानी में मखाना की खेती नहीं हो सकती है। ये कहाँ तक सही है?
0: ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे किसानों को भी इसमें निश्चित तौर पर रुचि होगी। अभी हाल के समय में मखाने के क्षेत्र में जो भी विस्तार हुआ है वो मूल रूप से ये उतले पानी में ही कम पानी का जो सिस्टम है, जो पद्धति है, उसमें ही मखाने का विस्तार हुआ है। लेकिन एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि मखाना मूल रूप से एक जलीय फसल है। पारंपरिक रूप से तालाबों में निचली भूमि जहाँ जल जमाव की समस्या पहले होती थी ऐसी जगहों पर हम मखाने की खेती करते थे। हाल के समय में जो एक ट्रेंड बना है वो ये बना है कि सामान्य खेतों में भी हम मखाना की खेती की शुरुआत करते हैं और भूमिगत जल पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। तो एक बहुत जो महत्वपूर्ण सुझाव है वो ये है कि मखाने की खेती के बारे में जब भी आप सोचें तो क्षेत्र का चयन, जगह का चयन इस तरह करें कि जहाँ
1: पानी
0: प्राकृतिक उपलब्धता, हाँ प्राकृतिक उपलब्धता हो, पानी की सतही जल की प्राकृतिक उपलब्धता हो, स्वाभाविक तौर पर उपलब्धता हो, और भूमिगत जल पर आपकी जो निर्भरता है वो न्यूनतम होनी चाहिए, क्योंकि पानी एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। और हमारे बिहार में जो मूल रूप से कृषि प्रधान हमारा राज्य है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर आबादी का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, लगभग ग्रामीण है, पूरा बिहार लगभग ग्रामीण ही है, 88% बिहार तो ग्रामीण ही है। तो ऐसे में जहाँ कृषि पर हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा है तो जल और भूमि, ये जो दो प्राकृतिक संसाधन हैं, इनके संरक्षण और संवर्धन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो भविष्य है, भविष्य का विकास है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि इन प्राकृतिक संसाधनों को अपनी आमदनी बढ़ाने के साथ साथ हम कैसे संरक्षित रखें और इनको हम संवर्धित भी करें। इसीलिए चयन इस तरह हो जगह का जिसमें भूमिगत जल पर आपकी निर्भरता कम हो। हाँ बिल्कुल,
1: श्रोता लोग देख लीजिए मखाना के खेती के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करवे करूँ, लेकिन ये वरिष्ठ वैज्ञानिक एक तौर पर सुंदर बात कहलन जे जल के उपलब्धता जत हो ओहिठमन एकर खेती होबाक चाही और पानी बचाव के संदेश जे छे सेहो एहि माध्यम से देलन है। एक बात और कही श्रोता लोकन जे पानी एक एहन चीज है जे प्राकृतिक चीज थिक ओकरा हम लोगन कोनो प्रयोगशाला में, कोनो लैबोरेटरी में और कोनो वैज्ञानिक के द्वारा बनाओल नहीं जा सकैत है। पानी लग जतेक भूगर्भ जल स्तर हम लोगन के पास उपलब्ध है ओकरा सीमित में खर्चा करी। एहि शब्दक संग आजुक अंक सँ लैत छी विदा, फेर अगला अंक में अपने लोगन से हेतै भेंट, तब तक के लेल दिल जो आज्ञा नमस्कार।
2: उम्मीद करते हैं श्रोताओं को ये भेंट वार्ता बिल्कुल पसंद आया होगा, जहां मखाना की खेती हम किस तरह कर सकते हैं, मखाना से क्या लाभ कमा सकते हैं, मखाना को किस तरह से हम बीज से लावा तक तैयार करते हैं, और ये सारी चीज़ें अभी मिथिला की आवाज़ के तहत आप सुन रहे थे। और हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि हम कुछ जो चर्चा है उस पर हम बातें करते हैं। तो आज जैसे झंडे को का जो आकार
3: झंडा के आजुक दिन अंगीकार किया गया है राष्ट्र में, भारत वर्ष में जो तिरंगा हम लोग लहराबे फहराबे जरा अपन हम आन बान शान बुझे छे वही झंडा के आइए के दिन अंगीकार किया गया।
2: जी हाँ बिल्कुल, और इसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को गौरव, संघर्ष, बलिदान और राष्ट्रीय एकता का एक प्रतीक मानने की कहानी है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाए गए इस ध्वज का निर्माण, विकास और गौरव अनगिनत स्मृतियाँ जुड़ी हुई है। पहला ध्वज 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौक पर फहराया गया था। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय इस ध्वज को ध्वज में लाल और हरी पट्टी

0: थी। महात्मा गांधी के सुझाव पर इसमें सफ़ेद रंग और चक्र जोड़ा गया जो स्वदेशी का प्रतीक था। 1931 में लाल रंग के स्थान पर केसरी रंग को शामिल किया गया, केसरिया रंग को शामिल किया गया था। अंततः 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारत के रूप में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया, जिसमें चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को जगह दी गई। केसरिया साहस, बलिदान और त्याग का प्रतीक है। सफ़ेद शांति, विकास और समृद्धि का प्रतीक है। अशोक चक्र अशोक स्तंभ से लिया गया वह चक्र धर्म, न्याय और निरंतर गतिशीलता का प्रतीक है। इसमें 24 तीलियां हैं जो हमें जीवन में 24 घंटे निरंतर आगे बढ़ते रहने का संदेश देती है।
1: निश्चित तौर पर देखो जे झंडो, मान लीजिए हम झंडे के बात नहीं करी कहीं, हम कोनो जे स्मृति चिन्ह होइ छै वो बहुत कुछ संदेश दै छै और अपना संगे बहुत रास संदेश लऽ कऽ अबै छै, ओकरा हमरा लोकनिक आत्मसात करबाक चाही। और नमस्कार मिथिला कांक में घड़ी जे सेहो हमरा लोकनिक किछु और इशारा कऽ रहल अछि, तऽ दू टप्पी और चर्चा हमरा लोकनि एहि विषय पर करै छी जे अपने के हाथ में हम देखै छी बड़ा सुंदर एकटा यंत्र छै और बड़ा पुरान लगैया देखबा में।
0: जी हाँ बिल्कुल, और बात किया जाए अगर उसको तो रेडियो के बारे में हम बात कर लें कि वो
1: अच्छा तो यंत्र अपने के हाथ में रेडियो थी,
0: रेडियो रेडियो या रेडियो के साथ हम ये कह लें कि माइक्रोफोन, मोबाइल, ये सारी चीज़ें जो हमारे हाथ में है हो सकता है।
1: निश्चित तौर पर कहीं हम देखो जो अहाँ के थोड़ा सहजता महसूस भेल, लेकिन हम अहाँ के बताबी जे रेडियो के जे प्रासंगिकता छलै है ओ जतबे काल छलै है ओतबे आय छै, अंतर अतबे भ गेलै है कि जखन शुरुआती दौर में भारतवर्ष के रेडियो के शुरुआत भेल रहे तो आम जनता के रेडियो घर में रखबाक लेल और सुनबाक लेल टैक्स देबे पड़ैत रहन, ओहो दिन हमरा लोकनि इतिहास में पढ़ने छी। और आय सरकार मुफ्त में रेडियो बाँट रही है, रेडियो के प्रासंगिकता कहियो कम नहीं भेलै चूँकि रेडियो अपना संगे एकटा क्षेत्र में काज नहीं करै छलै, ओ देश के विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न पहलू के और विभिन्न लोग के सुख सुविधा के ध्यान में रख के अपन कार्यक्रम के प्रसारण करित छल, ताई रेडियो के प्रासंगिकता आइयो उतबे बनल है जते कि काल छल। और संचार माध्यम में अगर विश्वसनीयता के बात अगर कहीं हमारा लोग करी तो आइयो हमारा भारतवर्ष के श्रोता के जतेक विश्वास अपना रेडियो संगे छन ओतेक विश्वास और अन्य संचार के माध्यम संगे नहीं छन, चूँकि रेडियो एक एहन संचार माध्यम थी जे भोरे ब्रह्म मुहूर्त से लौक और रात्रि के मध्य रात्रि तक विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न चीज के प्रसारण करते थे। आप वहाँ देख लियो शिक्षा होए, संस्कृति होए, संगीत होए, खेल होए, खेती गृहस्थी होए, महिला के समस्या होए, हर एक क्षेत्र के पढ़ाई लिखाई होए, बाल बच्चा के होए, धियापुता के होए, साहित्यिकी के होए, काव्य पाठ होए, हरेक तरह के कार्यक्रम के एक संगे एकटा पोटड़ी में बांधि कऽ और बेरावारी हमरा लोकन श्रोता लोकन के लेल आकाशवाणी के प्रत्येक केंद्र के प्रत्येक स्टूडियो सँ क्षेत्रवार आकाशवाणी के सबसँ पैघ एकटा इहो बहुत पैघ उपलब्धि कहल जाए कहिया, एहन प्रसारण कतौ नहि होइत अछि जे क्षेत्रवार क्षेत्रीय भाषा के समाहित करैत क्षेत्रीय परम्परा के अग्रसारित करैत रेडियो आइयो अपन पुरने घर्रा पर आम जनता के लेल उतबे विश्वास के प्रतीक बनल अछि जते कि रेडियो शुरुआती दौर में प्रतीक बनल छल।
0: जी हाँ बिल्कुल, और रेडियो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि रेडियो को हम कहीं भी ले जा सकते हैं। रेडियो हम किसी काम को करते करते खाते हुए खेत में किसी महिलाएं किचन में काम कर रही हैं वहाँ रेडियो सुन सकती हैं। तो रेडियो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम हमारा समय जो दूसरी तरफ बटाने के साथ साथ हम रेडियो हमको अपने साथ जोड़ सकता है आपदा की घड़ी में, जहाँ पर इंटरनेट नहीं हो, जहाँ पर मोबाइल की फैसिलिटी नहीं हो। आज भी देश के कोने कोने पर रेडियो की जो पहुंच है वो बनी हुई है, तो आपदा की घड़ी में रेडियो हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। और यूँ रेडियो को हम वैसे भी अपने साथ रख सकते हैं, जैसा कि रंजीत जी ने कहा कि आकाशवाणी के जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी गतिविधियां हैं, उसके साथ साथ जो ऐप है वो आपके मोबाइल में है, वो जहां आप प्ले स्टोर में इंस्टॉल करके आकाशवाणी के सारे कार्यक्रमों को, हर चीज़ को सुन सकते हैं। और हर एक चीज़ आकाशवाणी ने हर एक उम्र के लोगों के लिए बांट रखा है, जहां जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम रेडियो के माध्यम से सुन सकते हैं।
1: देखो सबसे पैघ बात हो चले, देखियो हमारा पेट में चले अखन मुदा है, देखियो बड़ा सुंदर बात आयल चले जे आई अहाँ अखन बड़ा सुंदर बात कहूँ कि न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड कह के हमारा लोग मोबाइल के आकाशवाणी केंद्र के कोनो केंद्र के सुन सकें, लेकिन हमारा

मोबाइलमे तब तऽ ओ सुनबाक लेल नेट होबाक चाही, लेकिन जँ हम रेडियो अपना सङ्गमे रखने छी तऽ रेडियो सुनबाक लेल हमरा कोनो नेटके आवश्यकता नहि अइ, कोनो कम्पनीके रिचार्ज करबाक हमरा आवश्यकता नहि अइ। सरकार प्रसारण करै छथिन मुफ्तमे आओर हम सुनै छी मुफ्तमे। हँ, बैटरी जरूर लागै छै बैटरी रेडियो सुनबामे, या फेर लाइन बिजलीके थोड़े खपत होइ छै। आओर अहाँके बताबी जे रेडियोके एकटा ट्रेंड रहै कहिआ जे लोकके जे शादी विवाह होइ ने तऽ रेडियो लोक कन्हामे लऽ कऽ चलथिन, रेडियोके ई क्रेज छलै। एकटा रेडियोपर समाचार सुनबाक लेल आधा आधा गाँवके लोक बैसै छलखिन हँ। ओ सामाजिक एकता, सामाजिक समाचार सुनबा, समाचार तऽ एकटा बहाना होइ छलै, लेकिन सामाजिक समरसता, सामाजिक एकरूपता, सामाजिक एकताके परिचायक कतौ ने कतौ रेडियो बनै छलै, जे एकटा दरवाजापर बैसि कऽ एकटा रेडियोसँ 50 आदमी सुनै छलाह। दूरदर्शनके अगर हमरा लोकनि बात करी तऽ अहाँ ओ दौरके कनि कयाम स्मरण करियौ, जखन शनि आओर रविके रामायण आओर महाभारतके प्रसारण होइ छलैए, तऽ एकटा दरवाजापर एकटा घरमे समूचा गाँवके बैस लोक बैसि कऽ ओकरा देखै छलखिन हँ। ओ सामाजिक एकता, सामाजिक समरसताके जे छलैए से स्वरूप छलैए, उदाहरण छलैए, ओकरा चरितार्थ करै छलैए। आगा आगा एक दिग आओर हमरा लोकनि बढ़ै छी, आओर समय तऽ इशारा कऽ रहल अइ, मुदा चलैत चलैत एकटा आओर फिल्म सङ्गीत हमरा लोकनि गुनगुना रहल छी।

0: उम्मीद करते हैं श्रोताओं को ये गाना बिल्कुल पसंद आया होगा और रेडियो आप यूं ही सुनते रहें और हम आपको आकाशवाणी दरभंगा से आपकी मनपसंद चीज़ों को आप तक पहुंचाते रहें और रेडियो पड़ी हुई आप हमारे साथ बने रहें, हमारा रिश्ता आपके साथ बना रहे, इस वादे के साथ कि अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। दीजिए आज्ञा,
1: नमस्कार
0: नमस्कार मिथिला।

0: कार्यक्रम नमस्कार मिथिला का प्रसारण अभी आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे थे।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: भोर होते उठ जाओ कि एकता इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत है, फूल प्रकृति में घोराए लगत है, ऊर्जा आबा वाला काल ले
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
3: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खायब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
6: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने ही वाले हैं। अब आप समाचार प्रभात सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई और

0: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
0: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
2: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
3: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित आईएनएस मलवान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें आरबीओ 6000 रॉकेट और डीआरडीओ द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने

0: बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
1: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
2: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिविंग रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
3: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावती सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं ना कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
0: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अमस्करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनीषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज PV सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host 3-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow water craft INS Malvan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva, and PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर

0: Because it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Anuja. The dailies have covered the Prime Minister's call to the NDA MPs to reach out to youth and dispel their fears of any future occurrence of an exam paper leak. In an express quoting, the Prime Minister says, "Future of youth is beyond politics, calls for foolproof and timely exams." Quoting the Home Ministry, the Times of India states, 50% quota for ex-Agnivis in Central Armed Police Forces, Assam Rifles posts. India soon to get first dengue vaccine for people aged 4 to 60 years, informs the statesman. An op-ed in the Tribune writes on how India's private sector has entered an exciting phase with Skyroots Aerospace launching Vikram 1 rocket. Condemning the attack on commercial vessel, Russian envoys summoned over killing of 4 Indians, writes the Economic Times. A headline in Hindustan Times writes, AI to drive planning, audits, fraud detection under Viksit Bharat Ji Ramji, humans to take final call. Finally, Financial Express mentions about a QS survey declaring Delhi the most affordable for students in the world, doing well on employer demand as well. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Roddy Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. EU holds three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow watercraft INS Malwan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva. And PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इक्तसादी राबतों में नुमायां तौसी की जरूरत उजागर की है। और दोनों मुल्कों के कारोबारी इदारों पर जोर दिया है कि वो तिजारत से आगे बढ़कर तवील मुद्दती साझेदारी कायम करें। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की 3 रोज़ा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। भारती बहरिया आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर मुल्क में ही बनाए गए आपदोस शिकन जंगी बहरी जहाज INS मालवान को अपने बेड़े में शामिल करेगी। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत में अच्छी तालीमी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। भारत ने जिनेवा में WTO के तिजारती पॉलिसी जायजे में जाब्तों पर मबनी कसीर रुखी तिजारती निजाम के तहत अपने अहद का इयादा किया है। और आज चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात को वसत देने के लिए कहा है। उन्होंने दोनों मुल्कों के ताजिरों से कहा है कि वो तिजारत के अलावा भी सरगर्मियां जारी रखें और सरमायाकारी टेक्नोलॉजी नीज इख्तिरा पर मबनी तवील मुद्दती शराकत दारी कायम करें। इस गोपजे के मकाम पर भारत शिमाली मकदूनिया तिजारती फोरम से खिताब करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि उनके दौरे से जो किसी भारतीय सदर का शिमाली मकदूनिया का पहला दौरा है इन ताल्लुकात को मुस्तकम करने के भारत के मजबूत इरादे की अक्कासी होती है। सदर मुर्मू ने शिमाली मकदूनिया को डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे में भी भारत के साथ शराकत दारी कायम करने के लिए मदऊ किया जिससे माली शमूलियत को फरोग देने में भारत के UPI प्लेटफॉर्म की कामयाबी का अंदाजा होता है।
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
2: शिमाली मकदूनिया के सदर जमहूरिया के दौरे की खबरें देने वाली हमारी नमा निगार की एक रिपोर्ट।
4: सत्र में मुर्मू ने कहा कि भारत की दवा साजी की सनद शिमाली मकतूनिया

0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के हालिया केस में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात का तहफ्फुज करने का अहद किया हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए कई इकदाम कर रही है। जनाब मोदी ने कल पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही, जिसे अब मंगल मिलन भी कहा जाता है। इधर सरकार ने कहा है कि वो नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के केस और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस कराने के लिए तैयार है। कल शाम नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया कि वो सरकार की यकीन दहानी के बावजूद नीट से वाबस्ता मामलात पर बहस कराने के अपने पहले के मुतालबे से पीछे हट गए हैं।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इससे पहले दिन में कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के दीगर अरकान के साथ नीट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बाद में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के सरकर्दा लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, नीज समाजवादी पार्टी के सरबरा अखिलेश यादव समेत अपोजिशन के सभी लीडरों को रिहा कर दिया, जिन्हें लोक कल्याण मार्ग के नजदीक एहतजाज करने पर हिरासत में लिया गया था। इधर दिल्ली पुलिस ने एक मुबैना वाकये में मौत होने के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। एक बयान में पुलिस ने कहा है कि किसी की भी मौत नहीं हुई है। पुलिस ने लोगों पर जोर दिया है कि वो गैर मुसद्दका जानकारी पर न तो भरोसा करें और न ही इसे शेयर करें। दिल्ली पुलिस ने आवाम को सलाह दी है कि वो दुरुस्त और मुसद्दका जानकारी के लिए सिर्फ सरकारी वसीलों पर भरोसा करें। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा कल नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए और नीट UG इम्तिहान का पर्चा मुबैना तौर पर लीक होने के मामले पर कौमी राजधानी में एहतजाज के दौरान जख्मी होने वालों की सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मीटिंग भी की। जनाब नड्डा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी गए और वहां दाखिल सभी जख्मी मुजाहिरीन से मुलाकात की। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में अपोजिशन की लीडर राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया है कि वो पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान रखना पैदा करने के लिए तलबा को सियासी आलायकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब प्रधान ने कहा कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज करते हुए जनाब राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं ने वजीर आजम की रिहायशगाह के बाहर एहतजाज किया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जनाब धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने नीट मुआहदे पर जामे बहस कराने के लिए अपनी आमादगी से मुत्तला कर दिया था, इसके बावजूद कांग्रेस ने जमहूरी बहस मुबाहसे के बजाय सियासी तमाशा करने का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस का मकसद तलबा के लिए कोई हल तलाश करना नहीं बल्कि सियासी सुर्खियों में आने के लिए रखना डालना था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुंग को कौमी राजधानी के सदर सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुंतकिल किए जाने का हुक्म दिया है। अदालत ने वांगचुक की अहलिया गीतांजलि अंगमो की दाखिल करदा दरखास्त की समाअत करते हुए यह हुक्म जारी किया है। मरकजी सरकार की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल मुंतकिल करने पर सरकार को कोई एतराज नहीं है। फ्रांस की पार्लियामेंट ने एक खसूसी बिल को मंजूरी दी है, जिसके तहत 15 साल तक की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने से बाज रखा गया है। फ्रांस की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कानून साज अरकान ने कल इस बिल के हक में वोट दिया। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के जुमरे में PV सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा, जबकि आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की मर्दों की डबल्स जोड़ी रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गद्दे, नीज तानिशा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स डबल जोड़ी आज अपने अपने मैच खेलेंगी। इधर HS प्रणॉय पहले राउंड में ही मलेशिया के लियोन जुंग हाउ से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। खवातीन के सिंगल्स में देविका सिहाग थाईलैंड की खिलाड़ी बुसानन ओंगबाम रुंगफन से हार गई है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत बिहार के 26 जिलों में 38 आईसीयू का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, जिन विद्यालयों के पास अपनी भूमि नहीं है उन्हें 6 महीने के भीतर जमीन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। भागलपुर की एक अदालत ने काजवलीचक विस्फोट मामले में 2 दोषियों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। और मौसम विभाग ने आज बांका, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत राज्य के 26 जिलों में 38 सघन चिकित्सा इकाइयों आईसीयू का निर्माण होगा। राज्यसभा में भाजपा सांसद भीम सिंह के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी आईसीयू के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और कार्यादेश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन इकाइयों की स्थापना और संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, जबकि केंद्र सरकार आवश्यक वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रही है। मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत बिहार से संबंधित कोई प्रशासनिक अनुमोदन प्रस्ताव लंबित नहीं है। विधानसभा में आज बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले विज्ञापनों के लिए पंचायतें शुल्क वसूल सकेंगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों और अपार्टमेंट के निर्माण के लिए भवन का नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा की तर्ज पर गठित होने वाले प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। विधानसभा में कल इस विधेयक की प्रति सदस्यों के बीच वितरित की गई। राज्य सरकार ने कहा है कि जिन विद्यालयों के पास अपनी भूमि नहीं है उन्हें 6 महीने के भीतर जमीन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर के दौरान हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के लगभग 700 उच्च विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं है।
1: पहले भी इस तरह की व्यवस्था जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी पंचायतों में पंचायत के अंदर हाई स्कूल बनाने का निर्णय लिया था तो लगभग 600 से 700 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर हमें जमीन उपलब्ध उस समय नहीं हो पाया। उस समय ये निर्णय हुआ कि जहां 2 रूम भी हैं वहां हम तत्काल शुरू कर दें। पहले मैट्रिक की व्यवस्था की गई, बाद में उसको इंटर की व्यवस्था की प्रक्रिया चल। माननीय मंत्री इसकी समीक्षा कर लेंगे, लेकिन इसके बावजूद जितने भी जगह हाई स्कूल के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है उसको 6 महीने के अंदर उपलब्ध कराकर शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा।
0: विधानसभा ने बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रायोजनों के लिए समपरिवर्तन निरसन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य में कृषि भूमि का व्यावसायिक या अन्य गैर कृषि उपयोग के लिए भूमि के समपरिवर्तन की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि इस विधेयक के माध्यम से वर्ष 2010 के कृषि भूमि समपरिवर्तन अधिनियम को निरस्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि नए प्रावधान लागू होने के बाद कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग के लिए अलग से समपरिवर्तन की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
2: इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने के पश्चात बिहार राज्य में बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रायोजन के लिए संप्रवर्तन अधिनियम 2010 निरस्त हो जाएगा और लोगों को काफी सुविधा प्राप्त होगा, किसी तरह का एनओसी या परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
0: विधानसभा में पक्ष और विपक्ष ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विधायक निधि की राशि 4 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 6 करोड़ रूपये करने की मांग

0: ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान योजना एवं विकास मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि विधायक निधि बढ़ाने का निर्णय वित्त विभाग और राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाएगा। इसके अलावा सदस्यों ने विधायक निधि से बिना निविदा कराए जाने वाले कार्यों की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की भी मांग की। सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया। राज्य सरकार ने कहा है कि हर घर नल का जल योजना के संचालन की जिम्मेदारी फिर से वार्ड सदस्यों को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। विधान परिषद में इस विषय पर हुई चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायती राज मंत्री और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संयुक्त रूप से बैठक कर इस संबंध में निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदस्यों की ओर से दिए गए सुझावों पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। राज्य सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि राज्य मार्गों पर केवल व्यावसायिक वाहनों से ही टोल टैक्स लिया जाएगा। विधान परिषद में परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देशानुसार गैर व्यावसायिक निजी वाहनों से टोल नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में नियमावली अधिसूचित की जा चुकी है। परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए रेल यात्रा रियायत की सुविधा दोबारा शुरू करने का अनुरोध रेल मंत्रालय से करेगी। गौरतलब है कि यह सुविधा कोरोना काल के दौरान बंद कर दी गई थी। बिहार विधानसभा के सभी विधायकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम PMIS पोर्टल के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए विधानसभा में शीघ्र ही कार्यशाला आयोजित की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। डॉ. कुमार ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य विधायकों को AI के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग से अवगत कराना और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की निगरानी के लिए विकसित PMIS पोर्टल के प्रभावी इस्तेमाल का प्रशिक्षण देना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। भागलपुर की एक अदालत ने काजवली चक विस्फोट मामले में दो दोषियों मोहम्मद आजाद और नवीन मंडल को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक हेमकांत झा ने बताया कि तीन आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। उन्होंने बताया कि विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोनों दोषियों को 10-10 साल कारावास और 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं अदालत ने दोनों दोषियों को गैर इरादतन हत्या के मामले में 9-9 वर्ष कारावास और 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा दी है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी।
3: सत्रवाद संख्या 94-23 जो भागलपुर शहर में भयंकर विस्फोट हुआ था 2022 में काजवली चक में, जिसमें 14 आदमी मर गए थे, 10 आदमी घायल हो गए थे और 3 मंजिला बिल्डिंग उड़ गया था, उसी में 5 अभियुक्त था, जिसमें 3 अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया और 2 जो अभियुक्त हैं मोहम्मद आजाद और नवीन मंडल उनको दोषी पाया गया और सजा सुना दिया गया। मैक्सिमम 10 वर्ष की दिया गया है।
0: इधर बेगूसराय की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही सभी दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रदेशवासियों को कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात देंगे और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री पटना सिटी स्थित

0: गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के नए भवन में विभिन्न निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं, जिला औषधि भंडार तथा राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में नई चिकित्सा सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत राज्य के विभिन्न जिला अस्पतालों में 105 नए आईसीयू बेड, 70 वेंटिलेटर युक्त गहन चिकित्सा इकाइयों और 2400 घंटे आपातकालीन सेवाएं शुरू की जाएंगी। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में पीपीपी मॉडल के तहत पहले चरण में 11 हब लैब और उनसे संबद्ध 221 स्पोक लैब के माध्यम से निशुल्क पैथोलॉजी सेवाएं भी आरंभ की जाएंगी। इसके अलावा राज्य के 25 अनुमंडल अस्पतालों में निशुल्क डायलिसिस सेवा का भी शुभारंभ किया जाएगा। समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा स्वास्थ्य मंत्री निशांत भी मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
1: वहीं मुख्यमंत्री आज पटना में 46 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से निर्मित भद्रघाट, नौजरघाट और महावीर घाट का उद्घाटन भी करेंगे। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज बांका, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है।
2: दिनांक 22 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात एवं तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, बांका, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: दरभंगा जिले में रैयाम चीनी मिल सहकारी समिति की सदस्यता और गन्ना किसान पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि 24 से 26 जुलाई तक केवटी, सिंहवाड़ा और मणिगाछी प्रखंड में शिविर लगाए जाएंगे। कैमूर जिले के मोहनिया स्थित समेकित जांच चौकी पर ट्रकों से कथित अवैध वसूली के आरोप में 3 सैप जवान और 1 होमगार्ड जवान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 83,300 रुपये नकद और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मुंगेर के चर्चित मधु कुमारी की मौत के मामले में फॉरेंसिक जांच में हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि जांच से पता चला है कि मधु की हत्या उनके निलंबित दारोगा पति चंदन कुमार ने की थी। उन्होंने बताया कि मामले में जल्द ही आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के तीनगछिया मोहल्ले से पुलिस ने अपहरण और रंगदारी के मामले में 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। अररिया नगर थाना क्षेत्र स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क के पास से पुलिस ने 155 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में पार्क के केयरटेकर की गिरफ्तारी हुई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, चौथे चरण में शिक्षक भर्ती की अधियाचना इसी माह, विधानसभा में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शिक्षा मंत्री ने घोषणा की। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, गांव में गरीबों से कोई टैक्स नहीं लेगी सरकार। प्रभात खबर की सुर्खी है, पांचवीं और अंतिम सक्षमता परीक्षा में 70% शिक्षक फेल। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मुजफ्फरपुर के कनिष्क यूनाइटेड किंगडम में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, नीट पर पहली बार बोले पीएम मोदी, सरकार छात्रों के साथ। आज अखबार ने लिखा है, नीट आंदोलन प्रधानमंत्री आवास पहुंचा, राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव समेत कई नेता हिरासत में, देर शाम हुए रिहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत बिहार के 26 जिलों में 38 आईसीयू का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, जिन विद्यालयों के पास अपनी भूमि नहीं है उन्हें 6 महीने के भीतर जमीन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। भागलपुर की एक अदालत ने काजवलीचक विस्फोट मामले में 2 दोषियों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। और मौसम विभाग ने आज बांका, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: गन्ने की खेती अब सिर्फ फसल नहीं बनेगी आपकी नई पहचान और बेहतर कमाई का आधार।
1: बिहार सरकार की गन्ना उद्योग विभाग की बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत अब गुड़ उत्पादन इकाई की स्थापना पर मिलेगा पूंजीगत लागत का 50% तक अनुदान।
2: क्षमता के अनुसार 6 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता का लाभ उठाइए।
1: आज ही कीन केयर पोर्टल ccs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि है 25 जुलाई 2026। गन्ना उद्योग विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी।
3: यार वोट देना तो है लेकिन मतदान केंद्र कहाँ है?
4: मेरा नाम मतदाता सूची में है या नहीं कैसे पता चलेगा?
5: और मुझे मतदान से जुड़ी जानकारी चाहिए।
4: बस एक नंबर याद रखिए, 1950।
3: 1950?
4: जी हाँ, मतदाता सूची, मतदान केंद्र, मतदान प्रक्रिया, चुनाव संबंधी जानकारी या सहायता, हर सवाल का जवाब एक नंबर पर।
3: मतलब जानकारी भी मार्गदर्शन भी?
4: बिल्कुल, 182 बाकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें।
5: अब तो मतदान और भी आसान हो गया।
4: 30 जुलाई 2026 को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। आपका एक वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। कोई मतदाता ना छूटे।
6: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात संगीत
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
1: रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं, नहीं।
0: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
2: तुम नाचो रस बरसी,
0: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काट लेला आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनिके दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनिके देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। हमारा अगला कार्यक्रम हमारे पटना केंद्र से।

अभी आप इंदिवर की लिखी ये गजल सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में। चलिए आज बात करते हैं शाद अजीमाबादी की शायरी की। उर्दू शायरी के उफक पर शाद अजीमाबादी का नाम एक अहद साज की तरह है। इनकी शायरी में गनाई आहंग, फलसफाए तसव्वुफ, दुगुदाज और जबान की बेसाख्तगी है। इनकी गजलों में दाखली जज्बात, सच्चे एहसास और रोजमर्रा की हकीकत पसंदी का हसीन इम्तिज़ाज मिलता है। इनकी शायरी का सबसे नुमाया पहलू इनकी गजलों में गहराई, गहरा फलसफा, फलसफियाना रंग और नुदरत ख्याल है। इनकी शायरी में इंसान की बेबसी, कायनात की हकीकत और जिंदगी की नापायदारी पर बेहतरीन इशार मिलते हैं। शाद की शायरी मायूसी या खनूतियत नहीं बल्कि सब्र और इस्तेकाम और हकीकत पसंदी का दर्स मिलता है। शाद ने गजलों के अलावा मरसिया, मसनवी और नसर में भी नुमाया काम किया है। इनके यहाँ अल्फाज का इंतकाब बहुत शुस्ता और नपातुला होता है। जज्बात की तर्जुमानी में वो मुबालगा आराई से गुरेज करते हैं, जिससे इनकी शायरी में एक कुदरती नगमगी और तासीर पैदा होती है। इनके इशार में दर्द व गम का इजहार भी इंतहाई वक़ार और शाइस्तगी के साथ किया गया है, जो क्लासिकी और उर्दू शायरी की बेहतरीन मिसाल है। शाद अजीमाबादी के चंद इशार मुलाहिज़ा हों कि खामोशी से तब मुसीबत और भी संगीन होती है, खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, तड़प है दिल तड़पने से ज़रा तस्कीन होती है।

0: एक और शेर मुलाजा हो कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने को नहीं नायाब हैं हम, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने को नहीं नायाब हैं हम, जो याद न आए भूल के फिर ए हम नफ्सों वो ख्वाब हैं हम। और एक आखिरी शेर मुलाजा हो कि नाजुक था बहुत कुछ दिल मेरा, नाजुक था बहुत कोई दिल मेरा, ऐशाद तहम्बुल हो न सका, एक ठेस लगी थी यूं ही सी, क्या जल्द ये शीशा टूट गया। तो ये थी आज की बात, चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम की जानिब और सुनते हैं आज का मकाला। मकाले का उन्वान है उर्दू शायरी में ख्वातीन का किरदार और मकाला निगार हैं मोहम्मद आरिफ अंसारी।
1: उर्दू शायरी की तारीख पर जब भी गुफ्तगू होती है तो अमूमन मीर, सौदा, दर्द, गालिब, ज़ौक, इकबाल, फिराक और फैज़ जैसे

0: बहुत कुछ दिल मेरा, नाजुक था बहुत कोई दिल मेरा, ऐशा तहम्बुल हो न सका। एक ठेस लगी थी यूं ही सी, क्या जल्द ये शीशा टूट गया। तो ये थी आज की बात। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम की जानिब और सुनते हैं आज का मकाला। मकाले का उन्वान है उर्दू शायरी में ख्वातीन का किरदार और मकाला निगार हैं मोहम्मद आरिफ अंसारी।
1: उर्दू शायरी की तारीख पर जब भी गुफ्तगू होती है तो अमूमन मीर, सौदा, दर्द, गालिब, ज़ौक, इकबाल, फिराक और फैज़ जैसे बड़े शोरा के नाम जहन में आते हैं, लेकिन इस रोशन अदबी रवायत का एक नहायत अहम और ताबनाक पहलू वह ख्वातीन शायरात भी हैं जिन्होंने मुख्तलिफ अदवार में अपनी फिक्री बसीरत, तख्लीकी सलाहियत और शेरी विजदान के ज़रिए उर्दू अदब को नई वसअत अता की। अगरचे एक तवील अरसे तक अदबी तारीख में उनकी खिदमात को वह नुमाया मकाम नहीं दिया गया जिसकी वह मुस्तहिक थीं, लेकिन जदीद तहकीक ने यह हकीकत वाज़ेह कर दी है कि उर्दू शायरी की तामीर व इर्तका में ख्वातीन की शिरकत इब्तदा से ही मौजूद रही है। उर्दू की ख्वातीन शायरात ने सिर्फ इश्क व मोहब्बत या जज्बात की तर्जमानी ही नहीं की बल्कि रूहानियत, अखलाकियात, इंसानी रिश्तों, समाजी शऊर और तहजीबी अकदार को भी अपने शायरी का मौजू बनाया। उन्होंने गज़ल, नज़्म, मसनवी, रुबाई, कसीदा और दीगर असनाफ सुखन में भी अपनी फ़नी महारत का सबूत दिया। उनके कलाम में एक तरफ निस्वानी एहसास की लताफत है तो दूसरी जानिब फ़िक्र की पुख्तगी, ज़ुबान की शाइस्तगी और इजहार की दिल आवेज़ी भी नुमायाँ नज़र आती है। उर्दू शायरी की अव्वलीन ख़वातीन आवाज़ों का जिक्र करते हुए सबसे पहले मुग़ल शहजादी ज़ेब-उन-निसा मख़फ़ी का नाम लिया जाता है। वह मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की साहबजादी थी और इल्म व अदब की सरपरस्ती के लिए शोहरत रखती थी। अरबी, फारसी और उर्दू पर यकसां उबूर रखने वाली मख़फ़ी ने ऐसे दौर में शेर कहे जब ख़वातीन के लिए इल्मी व अदबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना आसान नहीं था और उस ज़माने में उर्दू भी इर्तका के मरहले में थी। ताहम उनसे चंद उर्दू अशार भी मंसूब हैं जिनमें जज्बे की सादगी और बयान की दिलनशीनी नुमाया है। उनका यह शेर समाअत फरमाएं। कहते हो तुम न घर मेरे आया करे कोई, पर दिल न रह सके तो भला क्या करे कोई। ये शेर महज आशिकाना वारदात नहीं बल्कि इंसानी जज्बात की बेसाख्तगी का आईना भी है। उसके बाद मीर तकी मीर की साहिबजादी बेगम का जिक्र आता है। अदबी माहौल में परवरिश पाने के बायस उन्हें शेर व अदब का ज़ौक विरसे में मिला। उनके कलाम में रवायत की सादगी भी है और एहसास की गहराई भी। उनका यह शेर सुनिए। बरसों खमे गेसू में गिरफ्तार तो रखा, अब कहते हो क्या तुम ने हमें मार तो रखा। 18वीं सदी के अवाखिर में उर्दू शायरी को ख्वातीन की सूरत में दो ऐसी अहम आवाज़ें मिली जिन्होंने इस रवायत को मजबूत बुनियाद फराहम की। उनमें पहली शख्सियत लुत्फ़ुन्निसा बेगम इम्तियाज़ की है जिन्हें जदीद तहकीक के मुताबिक उर्दू की अव्वलिन साहिब दीवान शायरा करार दिया जाता है। इम्तियाज़ ने गज़ल के साथ मसनवी, कसीदा और रुबाई भी कही है। उनके शायरी से अंदाज़ा होता है कि उस ज़माने की ख़वातीन सिर्फ जज्बाती इजहार तक महदूद नहीं थीं बल्कि ज़बान व बयान पर भी गैर मामूली कुदरत रखती थीं। उनका यह शेर सुनिए। है ज़ेब आवर तख्त व ताजदार, सिकंदर मिसाल व सुलेमान असर। उसी दौर की दूसरी शायरा महलका चंदाबाई हैं जिनका नाम उर्दू शायरी की तारीख में हमेशा एहतराम से लिया जाएगा। वह हैदराबाद दक्कन की इल्मी और तहजीबी फिजा में परवान चढ़ी और शेर मोहम्मद खां ईमा से इसलाह ली। तवील अरसे तक उन्हें उर्दू की पहली साहिब दीवान शायरा समझा जाता रहा। उनके शायरी में क्लासिकी गज़ल की तमाम खूबियां मौजूद हैं। उनका यह शेर आज भी अपनी ताजगी बरकरार रखे हुए है। आता नहीं है ख्वाब में भी यार अब तलक, है मुंतज़र के दीदे बेदार अब तलक। ये वो ज़माना था जब ख्वातीन का अदब के मैदान में आना भी आसान न था, मगर इन शायरात ने समाजी पाबंदियों के बावजूद अपनी तख्लीकी सलाहियत का लोहा मनवाया और साबित किया कि उर्दू शायरी मर्दों की मीरास नहीं बल्कि औरत का एहसास, मुशाहदा और फिक्र भी उसकी तश्कील में बराबर के शरीक हैं। यही शायरात बात

तस्वीरें दर्द उसको दिखाए हुए तो हैं, तस्वीरें दर्द उसको दिखाए हुए तो हैं, सीने से उसके गम को लगाए हुए तो हैं, आँखों में कोई ख्वाब सजाए हुए तो हैं। और दूसरी गज़ल का मतला पेश खिदमत है, नाकिदों की है तवज्जो का सबब कुछ भी नहीं, कि नाकिदों की है तवज्जो का सबब कुछ भी नहीं, उसकी तहरीर में मिलता है अजब कुछ भी नहीं, उसकी तहरीर में मिलता है अजब कुछ भी नहीं। और ये शेर के दौलत हुस्ने अमल ही से है इंसान आला, कि दौलत हुस्ने अमल ही से है इंसान आला, फ़ख्र करने के लिए नामो नसब कुछ भी नहीं, फ़ख्र करने के लिए नामो नसब कुछ भी नहीं। और उसकी दुनियाए अदब में है अगरचे शोहरत, कि उसकी दुनियाए अदब में है अगरचे शोहरत, ज़िंदगी में ही मगर उसकी अदब कुछ भी नहीं, ज़िंदगी में ही मगर उसकी अदब कुछ भी नहीं। और गासिब वक्त को देता है सलामी हाकिम, कि गासिब वक्त को देता है सलामी हाकिम, है वो जिंदा में किया जिसने गज़ब कुछ भी नहीं, है वो जिंदा में किया जिसने गज़ब कुछ भी नहीं। और ये शेर के दिन जो अच्छे थे तो यारों की थी एक कहकशां, के दिन जो अच्छे थे तो यारों की थी एक कहकशां, अब न वो शामो सहर बज़्म में तरब कुछ भी नहीं, अब न वो शामो सहर बज़्म में तरब कुछ भी नहीं। और पेश वो लाख करे अपनी सफाई लेकिन, के पे ये तज़मीन का शेर, के पेश वो लाख करे अपनी सफाई लेकिन, कौन मानेगा तबाही का सबब कुछ भी नहीं, कौन मानेगा तबाही का सबब कुछ भी नहीं। और ये शेर के दिल के दरिया में उमंगों की कभी थी मौजें, के दिल के दरिया में उमंगों की कभी थी मौजें, एक मुद्दत से वो अब शोरो शगब कुछ भी नहीं, एक मुद्दत से वो अब शोरो शगब कुछ भी नहीं। और मिल गया वो तो ये लगता है कि सारी दुनिया, कि मिल गया वो तो ये लगता है कि सारी दुनिया, मिल गई है मुझे अब और तलब कुछ भी नहीं, मिल गई है मुझे अब और तलब कुछ भी नहीं। और गज़ल का आखिरी शेर, कि आज ही उसने कोई चोट नहीं पहुंचाई, कि आज ही उसने कोई चोट नहीं पहुंचाई, दुश्मनी हमसे रही उसको है कब कुछ भी नहीं, दुश्मनी हमसे रही उसको है कब कुछ भी नहीं। और ये मक्ता, कि वो नहीं रखता यकीन मिलने मिलाने में सना, वो नहीं रखता यकीन मिलने मिलाने में सना, जिंदगी का उसे क्या सच में है ढब कुछ भी नहीं, जिंदगी का उसे क्या सच में है ढब कुछ भी नहीं, नाकिदों की है तवज्जो का सबब कुछ भी नहीं, उसकी तहरीर में मिलता है अजब कुछ भी नहीं। और तीसरी गज़ल का मतला पेश खिदमत है, कि उसने कब खाया तरस उम्र बसर होने तक, कि उसने कब खाया तरस उम्र बसर होने तक, दिल की दुनिया के मेरे ज़ेरो ज़बर होने तक, दिल की दुनिया के मेरे ज़ेरो ज़बर होने तक। और ये शेर के क्या ख़बर उसको गुज़रती है न जाने क्या क्या, कि क्या ख़बर उसको गुज़रती है न जाने क्या क्या, उसके बीमार पे हर लम्हा सहर होने तक, उसके बीमार पे हर लम्हा सहर होने तक। और चश्मे आलम ने ये इबरत के निशान देखे हैं, कि चश्मे आलम ने ये इबरत के निशान देखे हैं, कितने शाहों को यहाँ दस्त निगर होने तक, कितने शाहों को यहाँ दस्त निगर होने तक। और ये शेर कि किस कदर खून हो बेताब उमंगों का मेरी, किस कदर खून हो बेताब उमंगों का मेरी, उसकी बस एक इनायत की नज़र होने तक, उसकी बस एक इनायत की नज़र होने तक। और ये शेर के दस्तकें देते थकेंगे न हम उसके दर पर, के दस्तकें देते थकेंगे न हम उसके दर पर, अपनी दिलगीर सदाओं में असर होने तक, अपनी दिलगीर सदाओं में असर होने तक। और रोज़ करता है तमाशे पे तमाशा इंसान, के रोज़ करता है तमाशे पे तमाशा इंसान, ख़त्म इस ज़िस्त की राहों का सफ़र होने तक, ख़त्म इस ज़िस्त की राहों का

सामिन, अभी आप बशर नवाज की लिखी गजल सुन रहे थे भूपेंद्र की आवाज़ में। इसी के साथ हमारे उर्दू प्रोग्राम का इख्तिताम यही होता है। ज़री फातिमा को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी।

अर्थात 1296 किलो हर्ष पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। सुबह के 10 बज रहे हैं और ये समय है फिल्म संगीत का। श्रोताओं, फिल्म संगीत की दुनिया के लिए आज का दिन कुछ खास है। जी हाँ, आज प्रसिद्ध पार्श्व गायक मुकेश की जयंती है। आज हम उन्हीं के गाए हुए कुछ गीत आप तक पहुँचाएंगे, तो सुनिए कार्यक्रम का ये पहला गीत।

फिल्म होली आई रे का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीत लिखा था इंदिवर ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और गायक आज मुकेश हैं। आज मुकेश का ही गाना हम आपको सुनवाएंगे। अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म सरस्वती चंद्र से, शब्द रचना इंदिवर की और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11

0: बजे मन की बात।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त नूतन। श्रोताओं, जैसा कि हमने पहले भी कहा, महान भारतीय पार्श्व गायक मुकेश का आज जयंती है। 22 जुलाई 1923 को इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। इनका पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था। अपनी दर्द भरी और भावपूर्ण आवाज के लिए जाने जाने वाले मुकेश चंद्र माथुर ने हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग में सदाबहार गीत गाए। उन्हीं गीतों में से एक गीत ये गया आपके रेडियो सेट पर।

फिल्म मधुमति का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीत लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत सलिल चौधरी का। अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगम से। शब्द दिया है शैलेंद्र ने और संगीत शंकर जयकिशन का।

0: आ बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। पर बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।
1: नहीं, कभी नहीं।

0: यमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं पर बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं
1: नहीं नहीं।

0: बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।
1: जाओ ना क्यों सताते हो, होगा होगा।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों

0: पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: संदेश से पहले आप सुन रहे थे फिल्म कभी कभी का गीत। गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत खयाम का। श्रोताओं आप सुन रहे हैं मुकेश के गाए गीत। अभी आपने सुना मुकेश के गाए कुछ गीत। फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया जा रहा था और इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रस्तुत है हमारा लोकगीतों का कार्यक्रम।

बोध नारायण सिंह के स्वर में अभी आप सुन रहे थे। लोकगीतों के इस कार्यक्रम में इससे पहले आपने सुना था गणेश वंदना नीलम झा एवं सहेली की आवाज़ों में। आइए अब सुनते हैं ये गौरी शिव गौरी भजन।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम। अभी आपने पार्वती मिश्रा को सुना, अब सुनिए वीरेंद्र कुमार मिश्रा को।

सरिता परासर की आवाज़ में अभी आप ये महेश वाणी सुन रहे थे। इसी के साथ लोकगीतों का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं रोनू मजुमदार और किशन जी महाराज। आइए इनसे सुनते हैं राग अहिर भैरव अलाप जोध और झाला बांसुरी वादन में।
1: नमस्कार। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे साथ तबला बजाने के लिए परम पूज्य मेरे गुरु समान पंडित किशन महाराज जी मंच पर आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए हैं। मैं जब भी इनकी तरफ देखता हूं तो मुझे अपने गुरु की छवि दिखाई देती है इनके चेहरे पर। इनके साथ एक मंच पर बैठना बड़े सौभाग्य की बात है और ये संभव हुआ तो इन्हीं के आशीर्वाद से। मैं इस लायक तो नहीं हूं मगर जो भी मैंने टूटा फूटा सीखा है वो प्रस्तुत है। शुरू करने से पहले मैं परम पूज्य महाराज जी चाचा जी से आशीर्वाद चाहता हूं और उपस्थित गुणीजनों से सबसे मैं इजाजत चाहता हूं। प्रस्तुत है राग अहिर भैरव आलाप जोड़ झाला और दो बंदिशें ताल धमार और तीन ताल।

श्रोता भी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत में बांसुरी वादन रोनू मजुमदार और किशन जी महाराज से राग अहिर भैरव अलाप जोध झाला। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्मभूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुल के से कामिल बुल के बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
3: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
2: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
3: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
2: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबील मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
3: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी, अब जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है।
3: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
2: जी,
3: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा।
2: अजीत जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
3: जी,
2: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फू फू जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
3: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को यानी हॉर्नबिल पक्षी को साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
2: जी, यही वजह है कि नगा परंपराओं में, विशेषकर सर के आभूषणों में,

0: पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
1: श्रोताओं, इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं
0: जी,
1: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य
0: जी।
1: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं। तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के साथ ये नृत्य होता है
0: जी।
1: विमलेश जी, एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे, ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है जिसे मोरुंग कहते हैं। ये मोरुंग होता क्या है?
0: अजीत जी, मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था
1: जी। प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहां जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे
0: जी। यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
1: श्रोताओं, ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है
0: जी।
1: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की
0: जी।
1: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें
0: जी।
1: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: मोरुंग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मोरुंग किसे कहते हैं? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
0: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
2: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
3: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
2: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था, क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
4: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
3: जी मालिक, ये बात तो है।
4: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं, बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहां की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
3: जी मालिक, कोशिश करता हूं। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
4: अच्छा,
3: ऐसी कि साक्षात कामधेनु, दूध भी 15 सेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
4: भाई, इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
3: जी मालिक।
2: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा,

0: आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले न देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
1: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
2: ये नहीं हो सकता हीरा सिंह भाई, हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहाँ मिलेगा। तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
0: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, पुचकारा और बोल उठा,
1: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूँ तुम्हारे पास, तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा, मेरी प्यारी सुंदरिया।
0: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
2: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 सेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 सेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
1: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 सेर दूध दुहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा?
2: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
1: जी सेठ जी।
0: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
2: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है। गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
1: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए, अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
2: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
0: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया। एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी
1: सुंदरिया, तुम? मेरी प्यारी सुंदरिया।
0: वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो, क्षमा करना, मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ, मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर देर तक सिसकता रहा।
1: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम गांव चलेंगे। मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम्हें बेच दिया, लेकिन सुंदरिया, वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, अब मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
2: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी?

0: गाय कैसी?
1: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
0: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं उनका क्या होगा?
1: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूं। रुपए जब चुकता हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
2: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
1: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
2: हीरा सिंह ने गाय को पुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था, कहने लगे,
0: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे, तुमसे यहाँ मुफ्त में काम करवाकर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
1: जी सेठ जी।
0: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले हमसे मिलने जरूर आना।
1: धन्यवाद सेठ जी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
4: नमस्कार श्रोताओ, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
5: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
4: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
5: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
4: मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ये कहानी शिलोंग की है।
5: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलोंग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
6: यही कहीं तो थी वो दुकान, कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान, उसके बाद हाँ वो रही।
5: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था, पपीज फॉर सेल।
4: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
5: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
4: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
6: हाँ, यहां से अंदर चलता हूं।

0: अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है, और ले प्यारे प्यारे पपीस भी हैं। आजा आजा।
1: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
2: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है, इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
1: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
0: नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते बेटा।
0: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
3: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
0: ओह।
3: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
0: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
3: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
0: नहीं,
3: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो
0: नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा, आप उनके दाम बताइए तो सही।
3: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
0: अच्छा,
3: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
0: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे, आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
3: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
0: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा, अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
3: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
4: हाँ जी बताइए।
3: देखो सारे पपीस ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
4: हाँ हाँ अभी लाते हैं, बस एक मिनट।
2: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कू कू करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
1: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था, उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
3: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
4: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है, अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश वापिस चलो।
0: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा इधर आ।
3: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।

0: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
1: हैं? अब अच्छा, समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है, लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
0: नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
1: अरे बेटा, कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
0: क्या?
1: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
0: मैडम, मैं खरीदूंगा इसे, मैं इसे ही खरीदूंगा।
1: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
0: मुझे यही चाहिए।
1: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो, शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
0: नहीं।
1: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
0: जी नहीं, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ, मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा, ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा, चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
1: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
0: यूं ही?
1: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
0: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
1: अच्छा अच्छा, समझी समझी, स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
0: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना, इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है, मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
1: पर बेटा ये तो
0: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
1: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए, मेरा मतलब है कि।
0: तो यही इसकी कीमत भी है, अब ये रहे 1500 रुपए,
1: अब
0: और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त, है ना, है ना मेरा दोस्त, तू यूजीन का दोस्त, तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
1: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
0: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
2: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
1: अरे बेटा, ये
0: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा, अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
1: अरे अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं बस,
0: मैं भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी एक कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया, और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता।

0: ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
1: बेटा।
0: इसलिए मुझे लगता है कि ये पपी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
1: योजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ। लो,
0: आजा।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरा प्यारा दोस्त, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं भी अब सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप पादल लेंगे हमारे केंद्र से नए फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म मिस्टर सेलिब्रिटी से। गायक कलाकार हैं अभिलिप्सा पांडा, गीत रचना योगेश पंडित ने की है, संगीत दिया है विनोद ने।

मनोज मंतशर के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म माँ से। आवाजें थी श्रेया घोषाल और जुबीन नौटियाल की। संगीत निर्देशन रॉकी शिव ने किया था। श्रोताओं ये सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म मीसन मंजू से। गायक कलाकार हैं राज बर्मन।

रोहित शर्मा के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेसन मंजू से। संगीत निर्देशन राघव सचर ने किया था। गायक कलाकार राज बर्मन। श्रोताओं आइए सुनते हैं एक और गीत इसी फिल्म से, जुबीन नौटियाल की आवाज में। गीत रचना सब्बीर अहमद की है और इस गीत को अपने धुनों से सवारा है तनिष्क बागची ने।

मिथुन के संगीत निर्देशन में गए इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म वनवास से। आवाजें थी विशाल मिश्रा और पलक मुच्छल की। गीतकार शहद कादरी थे। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म लापता लेडी से।

प्रशांत पांडे के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म लापता लेडी से, अरिजीत सिंह की आवाज में। संगीत निर्देशन राम संपत ने किया था। आइए सुनते हैं हला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म किसी की भाई किसी की जान से। गायक कलाकार हैं कमाल खान और पलक मुच्छल। गीत रचना सब्बीर अहमद ने की है और धुन तैयार किया है हिमेश रेशमिया ने।

श्रोतों, इसी गीत के साथ नए फिल्मी गीतों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है बहनों का कार्यक्रम नारी संसार।

अनमोल होते हैं ये अपनों के रिश्ते, कितने अनमोल होते हैं ये अपनों के रिश्ते, कोई याद ना भी करे तो भी इंतजार रहता है। इसी उम्मीद और इंतजार के साथ आज आपसे मिलने आई है आपकी रेडियो सखी आरती। नमस्कार बहनों, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगी, प्रसन्न होंगी और इस समय आप अपने सारे कामकाज निपटा कर कर रही होंगी इंतजार अपने पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार का। तो बहनों, अब आपका इंतजार हुआ ख़त्म, मैं आ गई हूँ आपसे ढेर सारी बातें करने, साथ ही आपको प्यारे प्यारे गाने भी सुनवाएंगे और हर दिन की तरह आज भी आप वार्ता सुनेंगे हमारी रेडियो सखी कविता जी से। पर उससे पहले करते हैं कुछ बातें। बहनों, गृह सज्जा एक कला है जिसमें आपके द्वारा चुने गए सामान, फर्नीचर से लेकर के आपके कमरे से जोड़े जाने वाला सामान, सब कुछ शामिल होता है। बहनों, घर की सजावट न केवल आपके रहने की जगह होती है बल्कि आपकी व्यक्तिगत शैली और स्वाद को भी प्रभाषित करने में मदद करती है। घर की सजावट को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर एक ऐसा जगह होती है कि जहाँ पर लोग आराम करते हैं, शांति, विश्राम, खुशी से रहते हैं। तो इसलिए कहती हूँ कि आपकी व्यक्तिगत शैली आपके घर को सजाने की कुंजी है। व्यक्तिगत रुचि और कार्य क्षमता के बीच सही संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। गृह सजावट शुरू करने से पहले ये सोचना चाहिए कि आप अपने घर के साथ क्या क्या सब करना चाहते हैं, आपको कौन सा रंग पसंद है और आप किस तरह की आप फर्नीचर पसंद करते हैं, एक बार इस बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए। घर की साज सज्जा के ऐसे कई विकल्प हैं कि कई तत्व हैं जिस पर विचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फर्नीचर की अगर हम बात करें तो फर्नीचर शायद घर की सजावट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ऐसे फर्नीचर का चयन करें जो न केवल कार्यात्मक हो बल्कि सौंदर्य की दृष्टि से भी आकर्षक हो। और इसमें एक सजावटी सोफ़ा, साथ में आधुनिक कॉफ़ी टेबल और कुर्सी शामिल हो सकती है। सखी बहनों, हमारे घर में रंग का भी फर्क पड़ता है। जी हाँ, रंग का भी सही चुनाव करें, साथ ही अपने कमरे में सभी चीज़ों का एक दूसरे से मेल खानी चाहिए ताकि हमारा घर सुंदर दिखे। गृह सज्जा और कला दोनों का उद्देश्य एक ही है, घर को सुंदर और आकर्षक बनाना, साथ ही शांति प्रदान करे। बेहतर घर वो होता है देखने में आकर्षक हो, आरामदायक हो और आपके व्यक्तिगत स्वभाव को दर्शाता हो। तो ध्यान रखें, घर के सभी चीज़ों जैसे पर्दे, कालीन और सजावटी सामान में एक सही संतुलन होना चाहिए ताकि कमरा भरा भरा हो लेकिन व्यवस्थित लगे, सुंदर दिखे। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा फिल्म संगीत।

सभी बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनाने का, 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

0: अंतराल के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नारी संसार में। तो बहनों, अंतराल में जाने से पहले हम आपसे बातचीत कर रहे थे गृह सज्जा और कला पे। अब हम चलते हैं अगले चर्चा की ओर, डिजिटल युग में महिलाओं और उद्यमिता पे बातचीत करते हैं। महिला जो है, डिजिटल युग ने महिला उद्यमिता की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। जी हाँ, स्मार्टफोन और इंटरनेट के कारण महिलाओं के लिए घर बैठे काम करना आसान हो गया है। कहने का मतलब है कि महिलाएं घर बैठे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, वैश्विक ग्राहकों तक पहुंच सकती हैं और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए बिक्री बढ़ाना भी संभव हो गया है। आज के समय में बिना भारी पूंजी के नए स्टार्टअप की शुरुआत कर रही हैं। जी हाँ, कम लागत में आप व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। आप चाहे तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपनी व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इसके लिए आपको किराए पर दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑनलाइन सामानें बेच सकती हैं। सोशल मीडिया का उपयोग जैसे टूल्स का उपयोग करके महिलाएं अपने उत्पादकों की मार्केटिंग स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रही हैं। बहनों, डिजिटल पर पेमेंट और लोन की बात करें तो UPI और डिजिटल बैंकिंग ने पैसों के लेन देन को इतना आसान और सुरक्षित बना दिया है कि महिलाएं आसानी से अकाउंट और बजट खुद संभाल सकती है। कौशल विकास, विभिन्न सरकारी और निजी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाएं घर बैठे बिजनेस और मैनेजमेंट और डिजिटल स्किल सीख सकती है। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं वार्ता। वार्ता का विषय है डिजिटल साक्षरता है जरूरी। वार्ताकार हैं कविता राय। तो आइए सुनते हैं इनसे वार्ता।
1: डिजिटल साक्षरता 21वीं शताब्दी की भारत में ही नहीं विश्व की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह एक नवीन जीवन कौशल है जो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस डिजिटल युग में जीवित रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल रूप से साक्षर होना अति आवश्यक है। डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी तकनीकी उपकरणों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। डिजिटल साक्षरता वर्तमान समय में विश्व भर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जीवन कौशल के रूप में स्थापित हो रही है। आज हमारे देश में ही नहीं संपूर्ण विश्व भर में डिजिटल वातावरण का प्रभाव देखा जा सकता है। 21वीं शताब्दी की इस नवीन साक्षरता की आवश्यकता इसलिए भी आवश्यक हो गई है क्योंकि डिजिटल युग में जीवित रहने के लिए डिजिटल रूप से साक्षर होना अति आवश्यक है। डिजिटल साक्षरता व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों ही रूप से अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने की तथा नवीन सूचनाओं की प्राप्ति व संचार तकनीकी के उचित उपयोग करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। डिजिटल साक्षरता की मुख्य विशेषता डिजिटल उपकरणों के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करके किसी विषय पर जानकारी खोजने, उसका मूल्यांकन करने, दृश्य श्रव्य सामग्री के निर्माण करने तथा दूसरों से साझा करने की क्षमता के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। डिजिटल रूप से साक्षर होना शहरी तथा ग्रामीण समाजों में एक आधुनिक दक्षताओं के रूप में विकसित हो रहा एक नया जीवन कौशल है। कुछ समय पूर्व तक नौकरी के लिए आवेदन करते समय डिजिटल रूप से साक्षर व्यक्ति को नियुक्ति पत्र के लिए प्रोत्साहन मिलता था, परंतु वर्तमान समय में इसे आवश्यक कौशल के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी डिजिटल साक्षरता आवश्यक कौशल के रूप में विकसित हो रही है। डिजिटल साक्षरता का एक महत्वपूर्ण रूप हमें COVID-19 महामारी के समय भी देखने को मिला था, जब महामारी के कारण सभी कार्यालय व शिक्षण संस्थाओं को बंद कर दिया गया था। सभी

0: आवश्यक कार्य ऑनलाइन माध्यम से करने का प्रयास किया गया। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं ने ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हर संभव प्रयास किया, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि हमारे देश के शिक्षक भी डिजिटल रूप से साक्षर हो, तभी वह भी अपने शिक्षण कार्य में इस नवीन जीवन कौशल का उपयोग करने में सक्षम होंगे। अपने शिक्षण कार्य में शिक्षकों द्वारा डिजिटल उपकरणों तथा नवीन तकनीकी के प्रयोग का यह प्रयास हमारे छात्रों में डिजिटल साक्षरता की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। श्रोता सखियों, डिजिटल साक्षरता का अर्थ डिजिटल उपकरणों जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन का सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता है। इसमें इंटरनेट ब्राउज करना, डिजिटल भुगतान करना, साइबर खतरों से बचाव आदि शामिल है। यह आधुनिक युग में व्यक्तिगत विकास और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। डिजिटल साक्षरता के प्रमुख घटक बुनियादी कौशल, कंप्यूटर या स्मार्टफोन चालू करना, फाइलें सहेजना और एप्स का उपयोग करना है। सूचना साक्षरता, इंटरनेट पर मिली जानकारी की सत्यता की जांच करना और फेक न्यूज से बचना, मजबूत पासवर्ड बनाना, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित रखना और ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान रहना साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग सेवाओं को डिजिटल माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना है। तो बहनों, आप सभी से ये गुजारिश है कि आप भी डिजिटल रूप से साक्षर बने, इसे अपनाएं, खुद को मजबूत बनाएं। धन्यवाद।
1: तो बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता, वार्ताकार थी कविता राय। अब हम चलते हैं अगले चर्चा की ओर। बहनों, वैसे तो हर किसी के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, या फिर बुजुर्ग हो या बच्चे। पोषण सभी के लिए ज़रूरी है, खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि महिलाएं परिवार की नींव होती है। यदि नींव कमज़ोर होंगी तो भला घर का क्या होगा। कहने का मतलब है कि हम महिलाओं को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, वो उसके ऊपर इसलिए होती है क्योंकि महिलाएं पर ही पूरा घर आधारित होता है, उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है और हर किसी की ज़रूरतों का ख्याल रखना भी पड़ता है। पर दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल रखना भूल जाती हैं, ऐसे में वो बीमार भी पड़ सकती हैं। तो इसलिए महिलाओं को चाहिए कि वे घर के बाकी सदस्यों का ख्याल रखते हुए अपना भी ख्याल रखना सीखे, ताकि वो डायबिटीज या थायराइड जैसी बीमारियों की चपेट में आने से बचे। सखी बहनों, आजकल महिलाओं में भी डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियां देखने को मिल रही हैं, या फिर जैसी समस्याएं काफ़ी देखने को मिलती है। जी हाँ, घर को संभालते हुए इतना तनाव लेती है कि न जाने कितने बीमारी उनके ऊपर हावी होने लगती है। तो इस तरह वो खुद का ख्याल न रखकर खुद को भी समस्या में डाल देती हैं और फिर उन्हें डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, साथ ही उनका समय बर्बाद होता है, उनके पैसे भी खर्च होते हैं। तो बहनों, ध्यान रखे परिवार के साथ साथ अपना भी ख्याल रखे। खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। काम के बीच बीच में थोड़ा सा समय निकाले और उन समय में थोड़ा आराम करे और अपने मनपसंद के गाने सुने, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, और टाइम पे खाना भी बहुत ज़रूरी है। तो बहनों, अपना ध्यान रखे। बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा फिल्म संगीत।

बहनों, अब वक्त हो चला है हर दिन कुछ खास का। बहनों, अभी बरसात के मौसम में प्राकृतिक अपनी सुंदरता बिखेरती है। सुहानी हवा, महकता मौसम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन इस मौसम में हवा और हवा में नमी रहती है। साथ ही इस मौसम में गर्मी से राहत तो मिलती ही है, लेकिन ये अपने साथ साथ बीमारियां भी लेकर के आती है, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार और पाचन संबंधी समस्याएं भी अपने साथ लेकर के आता है। इस मौसम में थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जी हाँ, इस मौसम में बीमारियों से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि घर के आसपास पानी जमा ना होने दे और मच्छरों से बचाव करें। साथ ही बासी खाने से भी बचे और पानी उबालकर ठंडा करके पिए। साथ ही भीगने पर तुरंत कपड़े बदले, अगर हो सके तो साफ पानी से स्नान करके कपड़े बदले और तुलसी का काढ़ा जरूर पिए। रात को सोते समय हल्दी वाला दूध पिए। बहनों, हल्दी में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। इस मौसम में घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरते। जी हाँ, इस मौसम में कब बारिश हो जाए किसी को पता नहीं चलता है, तो घर से बाहर निकलते समय अपने साथ साथ छाता या रेनकोट जरूर लेकर के चले। इसके साथ जूते और मोजे का भी ध्यान रखें ताकि बारिश में भीगने से बचा जा सके। इतना ही नहीं, घर पर फर्श को सूखा रखें और पानी जमा न होने दें, जिससे मच्छर और कीड़े न पनपे। ऐसे मौसम में रंग छोड़ने वाले कपड़े से भी परहेज करें। आपको पता है रंगों में केमिकल होते हैं और उससे खुजली होने का आशंका होती है, तो बहनों ध्यान रखें, कपड़े का भी सही चयन करें। एक बात जरूर ध्यान रखें, कभी भी किसी के साथ तौलिया या कंघी का शेयर ना करें, इससे भी फंगल इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो बहनों, यदि आपको बुखार, उल्टी, दस्त या कोई अन्य लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बहनों, अगर आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहती हैं तो आप अपनी आवाज़ में 3 से 5 मिनट का ऑडियो भेज सकती हैं, या आप हमसे बात करना चाहती हैं तो आप अपना फ़ोन नंबर भेज सकती हैं। इसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 8460004। तो अब समय सीमा हमारी यहीं समाप्त हो रही है, फिर मिलेंगे इसी समय अगले अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।

श्रोताओं भी अब सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार। अब समय हो चला है हिंदी समाचार का, जिसका प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उपलब्धि, पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को स्थगित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में आईएनएस कादंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैड कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स, सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। बैठक के दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा आपात कार्रवाई जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेने की सलाह दी गई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो के घर में दिन के 1:05 हो

श्रोताओं, 1:10 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत। फिल्मी गीत तो गाने लेंगे दोपहर 1:15 पर। रोजगार सूचना हम आपको सुनवाएंगे दिन के 2:10 पर।

दोपहर 3 बजे आप सुनेंगे हमारे केंद्र से सुगम संगीत। युवा को संबोधित कार्यक्रम युवाणी हम आपको सुनवाएंगे शाम 5 बजे। युवाणी के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे तरुण कुसुम, साथ ही फिल्मी गीतों का आनंद ले सकेंगे संध्या काल में 5:40 पर। विद्यापति गीत हम आपको सुनवाएंगे संध्या 6:10 पर।

संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम गांव घर। गांव घर में श्रोता सुनेंगे घर आंगन, साथ ही सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी हम आपको सुनवाएंगे 7:00। हमारे पटना केंद्र से आप सुनेंगे विधानमंडल समीक्षा 7:50 पर। संसद समीक्षा आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से 8:00।

मैथिली साहित्य के कार्यक्रम सिंगर हार हम आपको सुनवाएंगे। रात्रि 8:15 पर सिंगर हार कार्यक्रम में आज श्रोता सुनेंगे काव्य पाठ कवि दिलीप कुमार झा से। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे संसद में प्रश्न काल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग हमारे दिल्ली केंद्र से। सभा की समाप्ति 11:10 पर की जाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही समाप्त होता है।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से प्रस्तुत होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत महेंद्र कपूर उनके साथियों की आवाज में।

महेंद्र कपूर के साथियों के स्वर में भी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप पानल लेंगे हमारे केंद्र से फिल्मी गीतों का। तो फिल्मी गीतों के सफर पर पहला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म गोपी से। गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर। गीत रचना राजेंद्र किशन की है और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अनोखी अदा से। संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया था। आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम आया सावन झूम के।

एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गाए इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म मंजिल से। फिल्म काला बाजार से अभी आप सुन रहे थे यह गीत मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में। संगीत निर्देशन एस डी बर्मन ने किया था, गीतकार थे शैलेंद्र। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मंजिल से। गीत रचना योगेश ने की है और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म आया सावन झूम के। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया था। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। गीत रचना समीर की है, धुन तैयार किया है आनंद मिलन ने। फिल्म का नाम आई मिलन की रात।

0: आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म सिंदूर से। आवाजें थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया था। इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का सफर अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप कुछ ही क्षणों में सुनेंगे हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरें।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का कई बार आग्रह किया। इसके बावजूद हंगामा और शोर शराबा जारी रहने के कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इधर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। श्री रिजिजू ने कहा कि सदन में कोई भी चर्चा स्थापित नियमों के अंतर्गत होनी चाहिए और इसके लिए उचित व्यवस्था आवश्यक है। श्री रिजिजू ने जोर दिया कि सरकार देश के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों को शामिल करते हुए सार्थक और रचनात्मक कार्य रचनात्मक चर्चा

0: चाहती है। राज्यसभा की कार्यवाही भी लगातार हंगामे के कारण बाधित हुई है। विधानमंडल के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है। फिलहाल भोजन अवकाश के बाद की कार्यवाही शुरू हुई है। विपक्ष ने विधानसभा में आज कम बारिश से किसानों को हो रही समस्या का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सदस्यों से इस मुद्दे को शून्यकाल के दौरान उठाने को कहा। इस पर सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामा बढ़ता देख मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार किसानों के हितों को लेकर चिंतित है और सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जरूरत होने पर किसानों को डीजल अनुदान भी दिया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में आज बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले विज्ञापनों के लिए पंचायतें शुल्क वसूल सकेंगी। विधान परिषद में आज की कार्यवाही के दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी को लेकर सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टीका टिप्पणी को लेकर जोरदार बहस हुई। बाद में सभापति अवधेश नारायण सिंह के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। इस समय भोजन अवकाश की कार्यवाही जारी है। जानकारी के अनुसार विधानसभा में कल पारित विभिन्न विधेयकों पर आज चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के नए भवन में विभिन्न निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं, जिला औषधि भंडार गृह तथा राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में नई चिकित्सा सेवाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने पटना में गंगा के 3 घाटों भद्रघाट, नौजर घाट और महावीर घाट का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 46 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से निर्मित आधुनिक सुविधाओं का शुभारंभ किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज अररिया, बांका, किशनगंज, पूर्णिया, पटना, बेगूसराय, खगड़िया समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की आशंका व्यक्त की गई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न भागों में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान मधेपुरा जिले के पुरैनी में सबसे अधिक 64.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सारण जिले की स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या से जुड़े एक मामले में दोषी पति, देवर और सास को 7-7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इन सभी पर 60,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। गोपालगंज जिले के बलथरी चेकपोस्ट पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 477 लीटर देशी शराब बरामद की है। इस संबंध में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जहानाबाद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आज ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा गृह पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। सुपौल के बरुआरी स्थित तेजेंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों को साइबर अपराधों को लेकर जागरूक किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
3: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज नीट इम्तहान पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामलों पर हिजब मुखालिफ के हंगामों के सबब दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इससे कबल

0: लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान के बेहतर तरीके से चलाने के लिए हिज्ब मुखालिफ से तआवुन करने की कई बार अपील की। इसके बावजूद हंगामा और शोर शराबा जारी रहने के सबब कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। इधर पार्लिमानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि हुकूमत नीट इम्तहान के पेपर लीक मामले पर बात करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जनाब रिजिजू ने कहा कि ऐवान में कोई भी बात तयशुदा जाब्ते के तहत होनी चाहिए और इसके लिए मुनासिब इंतजाम जरूरी है। जनाब रिजिजू ने जोर दिया के हुकूमत मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए सभी फरीक को शामिल करते हुए मुसबत और कारामद बातें चाहती है। इधर राज्यसभा की कार्रवाई भी लगातार हंगामे के सबब मुतासिर हुई। कानून साजिया के मानसूनी इजलास का आज तीसरा दिन है। दोनों ऐवानों में कार्रवाई बेहतर तरीके से चल रही है। फिलहाल खाने के वक्फा के बाद की कार्रवाई शुरू हुई है। हिज्ब मुखालिफ ने कानून साज असम्बली में आज कम बारिश से किसानों को हो रही परेशानी का मामला उठाया। हिज्ब मुखालिफ के अराकीन इस मामले पर बात करने का मुतालबा कर रहे थे। असम्बली के स्पीकर प्रेम कुमार ने अराकीन से इस मामले को वक्फ सिफर के दौरान उठाने को कहा। इस पर अराकीन नारेबाजी करते हुए ऐवान के बीच आ गए। हंगामा बढ़ता देखकर वजीर आला सम्राट चौधरी ने मदाखलत करते हुए कहा कि हुकूमत किसानों के मफाद को मद्देनजर रखते हुए फिक्रमंद है और आबपाशी के लिए 12 घंटे बिजली फराहम कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जरूरत पड़ने पर किसानों को डीजल की सब्सिडी भी दी जाएगी। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि कानून साज असम्बली में आज बिहार पंचायत राज तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायत हलका में आम मकामात पर लगाए जाने वाले इश्तहारात के लिए पंचायतें फीस वसूल कर सकेंगी। ऐवाने बाला कानून साज काउंसिल में आज की कार्रवाई के दौरान कानून साज असम्बली में कायदे हिज्ब इख्तलाफ तेजस्वी प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी को लेकर बरसरे इक्तदार जमात के अराकीन की नुक्ताचीनी और तंज पर शदीद बहस हुई। बाद में चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह की मदाखलत के बाद मामला पुरसकून हुआ। इस वक्त वक्फ एहतमाम की कार्रवाई जारी है। इत्तलात के मुताबिक कानून साज असम्बली में कल पास हुए मुख्तलिफ बिलों पर आज बहस की जाएगी। वजीर आला सम्राट चौधरी ने पटना सिटी में वाक़े गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल की नई इमारत में मुख्तलिफ मुफ्त तिब्बी सहूलियात, ज़िला दवा के गोदाम और रियासत के मुख्तलिफ तिब्बी इदारों में नई तिब्बी खिदमात का इफ्तिताह किया। जनाब चौधरी ने पटना में गंगा के तीन घाटों भद्र घाट, नौजर घाट और महावीर घाट का भी इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने 46,26,00,000 रुपए की लागत से तामीरशुदा जदीद सहूलियात का भी आगाज किया। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून की सरगर्मी से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आज अररिया, बांका, किशनगंज, पूर्णिया, पटना, बेगूसराय, खगड़िया समेत 10 अजला में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ मकामात पर बिजली गिरने का खदशा जाहिर किया गया है। महकमा ने अपनी पेशगोई में कहा है कि आइंदा 3 से 4 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ खित्तों में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। महकमा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मधेपुरा के पुरैनी में सबसे ज्यादा 64.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सारण जिला की मकामी अदालत ने जहेज के लिए कत्ल से मुंसलिक एक मामले में कसूरवार शौहर, देवर और सास को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन सभी के खिलाफ 60-60 हजार रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। गोपालगंज जिला के बलथरी चेक पोस्ट पर पुलिस ने गाड़ी जांच के दौरान एक ट्रक से 477 लीटर देशी शराब बरामद किया है। इस सिलसिले में एक स्मगलर को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो के घर में दिन के 2:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे रोजगार सूचना।

श्रोताओं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई ने एसओ का पद निकाला है। कुल पद 395 हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 21/7/2026 और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10/8/2026 है। न्यूनतम सीमा उम्र सीमा 25 साल है और अधिकतम उम्र सीमा 50 साल रखी गई है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट unionbankofindia.bank.in पर जाकर देख सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में LBO का पद लोकल बैंक ऑफिसर के लिए 545 कुल पद निकाले गए हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026 और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 9/8/2026 है। न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल और अधिकतम उम्र सीमा 30 साल। इस पद की विस्तृत जानकारी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट pnb.bank.in पर जाकर ले सकते हैं। क्वालिफिकेशंस बैचलर डिग्री है। रेलवे RRB टेक्निकल एग्जामिनेशन 2026 कुल पद 6557 है। आवेदन शुरू होने की तिथि 30 जून 2026। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। इस पद के लिए आवेदक के न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष रखी गई है। टेक्नीशियंस ग्रेड 3 के लिए 30 वर्ष और टेक्नीशियंस ग्रेड 1 सिंगल के लिए 33 वर्ष। योग्यता 10+2, साथ ही ITI।

0: इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च IGCAR ने कुल 200 पद निकाले हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026 और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19/8/2026 है। इस पद के लिए आवेदक के न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम उम्र सीमा 24 वर्ष। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.igcar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। NRF रेलवे ने कुल 6,777 पद निकाले हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 20/7/2026 है। आवेदन जमा करने की तिथि 19/8/2026 है। न्यूनतम उम्र सीमा 15 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 24 वर्ष रखी गई है। इसकी विस्तृत जानकारी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.nrfrequirement.in पर जाकर देख सकते हैं। रोजगार सूचना समाप्त हुई। श्रोता, अभी आप सुने थे रोजगार सूचना। अब समय हो चला है दोपहर समाचार का, जिसका प्रसारण हम दिल्ली से करेंगे। कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

0: अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मानसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से, वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
0: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी

0: कहने पर श्री बिड़ला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
1: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद

0: सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
1: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार INS कदंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। INS मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि IASV त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने IASV त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
3: In this era of volatility and disruption,
4: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
1: बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुरमुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉ. जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के

0: कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
1: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे इस स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 हो रहे हैं। पुनः पान लेंगे हमारे केंद्र से फिल्मी गीतों का। श्रोताओं, गीतों की शुरुआत हम करेंगे हमारे देश के महान पार्श्व गायक मुकेश चंद्र माथुर, जिनका कि आज जन्मदिवस है। तो आइए इनके जन्मदिवस के अवसर पर सुनते हैं यह इनके गाये गीत फिल्म अनारी से। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत निर्देशन शंकर जय किशन ने किया है।

सैलेंट के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेरा नाम जोकर। संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन ने किया था, गायक कलाकार मुकेश। श्रोताओं अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म मेरे हमसफर से, गायक कलाकार हैं मुकेश और लता मंगेशकर। गीत रचना आनंद बख्शी ने किया है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे हैं मुकेश के गीतों का। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म हिमालय की गोद में। गायक कलाकार है मुकेश, संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी ने किया है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं, आप गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश कुमार की आवाज में फिल्म मिलन से। गीत रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म सबक से। गीत रचना सावन कुमार की है और संगीत दिया है उषा खन्ना ने, गायक कलाकार मुकेश।

सबक फिल्म का यह गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में इसी गीत के साथ। अब दीजिए फिल्मी गीतों से इजाज़त। फिल्मी गीतों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। प्रस्तुत है सुगम संगीत, कलाकार हैं मंजूर खान।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत मंजूर खान से।

मंजूर खां के सुर में भी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3:20 हो रहे हैं। पुनः हम उपस्थित होंगे अपने आगामी कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

0: ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी
0: आपका विविध भारती के स्टूडियो में आई और सखियों सहेलियों से इतनी उम्दा जानकारी
1: जी
0: वाली बातें की और इतनी इतनी प्रेरक बातें आपने साझा
1: की। जी बहुत धन्यवाद ममता जी, आपका दिन शुभ हो और स्वस्थ हो।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
2: नमस्कार। तो आरती, देखो हमारी जो सखी ज्योति जैन है उनके

0: ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विविध भारती के स्टूडियो में आई और सखियों सहेलियों से इतनी उम्दा जानकारी वाली बातें की और इतनी इतनी प्रेरक बातें आपने साझा की।
1: जी बहुत धन्यवाद ममता जी, आपका दिन शुभ हो और स्वस्थ हो।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
2: तो आरती देखो, हमारी जो सखी ज्योति जैन है उनके ममता सिंह से जो बातचीत हुई वो हमने सुनी और उन्होंने भी फिटनेस के बारे में काफ़ी कुछ बातें हमें बताई। और देखिए, हंसना, खिलखिलाना, नृत्य करना, गीत सुनना, ये भी फिटनेस,
1: बिल्कुल ये भी फिटनेस में ही आता है।
2: तो ये उन्होंने हमें बताया। चलिए अब हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि अक्सर महिलाएं क्या करती हैं, पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब बात अपनी सेहत की आती है तो उसे वो सबसे आखिर में रख देती हैं। जबकि सच ये होता है कि यदि स्वस्थ और फिट होगी तभी परिवार की भी खुशहाल और स्वस्थ रहेगा।
1: बिल्कुल, और फिटनेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम पतले दिखें। पतले दिखना ही फिटनेस नहीं होता है। फिटनेस का अर्थ होता है शरीर का स्वस्थ होना, मन का प्रसन्न होना और ऊर्जा से भरपूर जीवन जीना। और महिलाओं के लिए रोजाना 30 से लेकर 45 मिनट की जो शारीरिक गतिविधि होती है वो बहुत लाभदायक होती है।
2: और बहुत सारी महिलाएं ये सोचती कि हम घर का काम करते हैं ना तो उससे तो हमारे शरीर की हलचल हो जाती है, तो अब हमें और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। लेकिन जो एक्सरसाइज जो हम करते हैं उसके जो पोस्चर होते हैं वो हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर की बनावट के लिए वो काफी उपयोगी होते हैं। तो काम अपनी जगह बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन कम से कम 30 मिनट के लिए हम थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़े आसन करें तो वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं।
1: क्योंकि इतने काम के बीच में अगर हम अपने लिए 30 मिनट ना निकालें ये तो अपने खुद के साथ नाइंसाफी हो जाएगी।
2: हाँ, लेकिन कई महिलाएं नहीं निकाल पाती, घर की व्यस्तता बहुत ज्यादा होती है, बड़ा परिवार होता है, दिन भर काम हैं। और उसके बाद में अगर वो अपने लिए समय निकालती है तो कई बार घर के लोग कहने भी लग जाते हैं कि अरे इतना काम पड़ा है कि तुम ये क्या करने लगी हो। तो कई महिलाओं के साथ इस तरह की परिस्थितियां भी होती हैं। खैर, लेकिन तेज कदमों से चलना, योग, प्राणायाम, साइकिल चलाना, नृत्य या हल्की एक्सरसाइज, इनमें से कोई भी गतिविधि नियमित रूप से अगर अपनाई जाए तो काफी अच्छा होता है। और संतुलित आहार भी फिटनेस की मजबूत नींव होता है।
1: बिल्कुल, और आप खाने में हरी सब्जियां ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, दालें हैं, दूध है, मोटे अनाज हैं, पर्याप्त पानी और प्रोटीन की जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत से लोग जो नहीं खाते उस तरीके के तो वो अंडे नहीं खाते तो वो पनीर खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पनीर ले सकते हैं, दूध की बनी चीज़ें ले सकते हैं। और ये जो जंक फूड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मीठे चीज़ें होती हैं, उनको अपना लें तो ज़्यादा बेहतर है।
2: हाँ, डिब्बाबंद जो भोजन आजकल बहुत प्रचलन में है तो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लें और उसके बाद ही उनका उपयोग करें। और हमारा तो सुझाव यही है कि उसकी बजाय आप घर में कोई भी चीज़ बना
1: क्योंकि हम छोटी सी भी चीज़ जो जंक फूड वाला लेते हैं ना उसके ऊपर आप देखिए कितनी कैलोरी लिखी होती है ना, तो उसमें हमें जितना चाहिए उसे कहीं कई गुना ज़्यादा हम थोड़े से खाने में ही ले लेते हैं, तो उसको आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा है।
2: इसके अलावा मानसिक फिटनेस भी उतनी ही आवश्यक होती है। तनाव कम करने के लिए ध्यान, योग, अच्छी नींद लेना, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना और परिवार के साथ समय बिताना, ये बहुत मददगार साबित होते हैं इसमें।
1: बिल्कुल, और जीवन के अलग अलग चरण हैं, जैसे किशोरावस्था हो या जो गर्भावस्था है, प्रसव के बाद का समय है या रोजनवृत्ति का समय है, ये महिलाओं की शारीरिक इसमें जरूरतें जो होती हैं वो बदलती रहती हैं, इसलिए समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जाँच कराना और विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल, ये जो रजोनिवृत्ति की तुमने बात की तो उस समय भी महिलाओं को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनको जैसे हॉट फ्लशेस आना और बार बार मुंह सूखना, प्यास लगना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं उन्हें। तो घर के लोगों का भी तो ये कर्तव्य बनता है कि वो भी अगर ऐसी समस्या उनके साथ है तो थोड़ा उनका साथ दें और उनका ख्याल रखें। तो इस तरह से अब इन बातों का ख्याल रख के फिटनेस का ध्यान रखा जा सकता है। इसके अलावा फिटनेस कोई विकल्प नहीं बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर महिला स्वस्थ है तो ही वो अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएगी और सशक्त समाज की वो पहचान भी होती है। इसके लिए महिलाओं की फिटनेस पर बहुत अधिक ध्यान देना जरूरी
1: है। अगर आप जिम नहीं जा पा रही हैं, डंबल्स नहीं है आपके पास, तो आप एक एक लीटर की जो बॉटल्स होती हैं है ना, उसके जरिए भी आप कर सकती हैं, डंबल्स का काम उससे ले सकती हैं। तो आप घर में ही कुछ एक्सरसाइज हैं वो करेंगी ना।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है और वो जो गीत हमने सुना शगुन फिल्म का, उसके पहले हम फिटनेस की बातें कर रहे थे। हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस बारे में अपने जो दिल के जो बातें थी या जो वो बताना चाहते थे हमें लिख भेजी है, तो हम एक एक करके हम अपनी सखियों को बताते हैं। एक साथी हमारी लिख रही है कि फिटनेस उम्र की मोहताज नहीं होती, चाहे किशोरी हो, गृहिणी, कामकाजी महिला या वरिष्ठ महिला, सभी के लिए सक्रिय और स्वस्थ रहना समान रूप से महत्वपूर्ण है। सैर, नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद महिलाओं को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। इससे तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और अनेक बीमारियों से भी बचाव होता है।
1: बिल्कुल। एक और हमारी सखी है जो लिखते हैं कि 50 के बाद प्रोटीन के रूप में सोयाबीन, टोफू मिल्क और स्प्राउट, खासकर मूंग, मूंगफली, काले चने हर महिला के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।
0: और एक हमारी जो साथी है वो ये भी लिख रही है कि व्यायाम से एंडोर्फिन या

0: यानी कि जो हैप्पी हार्मोन्स है वो निकलते हैं जो तनाव, चिंता और मूड स्विंग्स को कम करते हैं। हड्डियों की मजबूती, उम्र के बढ़ने के साथ महिलाओं में हड्डियों के कमज़ोर होने का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हड्डियां मजबूत होती है। ऊर्जा और आत्मविश्वास, फिट रहने से शरीर का स्टेमिना बढ़ता है जिससे महिलाएँ अपने दैनिक कार्य अधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ कर पाती हैं।
1: जी, और एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि मैं सुबह सैर को जाती हूँ, थोड़ा बहुत योग व्यायाम करती हूँ, बाहर का खाना जो होता है उसको खाने से परहेज करती हूँ कभी कभार को छोड़कर, और मौसमी फल सब्जी खाती हूँ। संगीत बहुत तरोताजा रखता है इसलिए विविध भारती के प्रोग्राम सुनना नहीं छोड़ती हूँ। मनोरंजन के लिए सखी सहेलियों के साथ गेट टुगेदर भी करती हूँ।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी हमारी ये भी लिख रहे हैं कि योग और प्राणायाम मानसिक शांति और लचीलेपन के लिए, योग सबसे उत्तम है। पिलेट्स, कोर स्ट्रेंथ और बॉडी पोस्चर सुधारने के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग हृदय स्वास्थ्य के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट यानी कि रोजाना 30 मिनट तेज चलना फायदेमंद होता है। और इस तरह की फिटनेस से संबंधित बहुत सारी बातें हमारे सखियों ने हमें लिख करके भेजी, तो हम उन सभी को धन्यवाद कहते हैं। और अब हम बात करते हैं मणिपुरी साड़ी के बारे में। तो मणिपुरी जो साड़ी है ये साड़ी आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से यानी कि राजा रानियों के समय से काफ़ी लोकप्रिय है। पुराने समय में इस साड़ी को रानियां भी पहना करती थी। मणिपुर की साड़ी को कारीगर मशीन का इस्तेमाल करके नहीं बल्कि हाथ की बुनाई से बनाते हैं।
1: जी, यही इसकी खासियत भी है। इसे बनाने में कुल 15 से 20 दिनों का समय लगता था और मणिपुर की साड़ियों को आज भी महिलाएं खास मौकों पर पहनती हैं। इन साड़ियों को पहनकर वो अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। मणिपुरी साड़ी का इतिहास बहुत पुराना है। ये राजघरानाओं की जो राजघराने होते थे उनकी परंपरा और महिलाओं के सामाजिक सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है।
0: हाँ, बिल्कुल। वैसे भी जब कोई भी महिला जब साड़ी पहनती है तो एक एलिगेंट लुक, मतलब यूं कह सकते हैं कि बहुत सुंदरता उसमें नज़र आती है। और जब हमारे देश में विभिन्न तरह की साड़ियाँ बनती है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की साड़ियाँ बनती है, और जब कोई त्यौहार आता है तो उस प्रांत की वो खास जो साड़ी है वो पहनी जाती है, तो सब महिलाएं एक तरह की साड़ी पहनती है, उस खूबसूरती का तो कहना ही क्या है ना। और मणिपुरी साड़ी और कपड़ों में दिखने वाले प्रसिद्ध टेम्पल डिज़ाइन और मोइरांग फी कहा जाता है, जो डिज़ाइन होते हैं उनका नाम है ये। और इस डिज़ाइन का आविष्कार मोइरांग साम्राज्य की जो राजकुमारी थी थोड़बी, उन्होंने किया था। और मणिपुरी साड़ियों को प्रिंट या डाई करने के लिए पहले के समय में पेड़ों की छालों, पत्तियों और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था।
1: बिल्कुल, पहले तो इसी प्राकृतिक तरीके से ही बनाते थे, कुछ भी अलग से रंग नहीं इस्तेमाल करते थे। इन सभी चीज़ों से कपड़ों पर कलर किया जाता था। यही कारण है कि ये साड़ियाँ सालों साल अपनी चमक नहीं खोती हैं। मणिपुरी साड़ी जो होती है वो सिर्फ रानियों तक सीमित नहीं थी बल्कि आज भी ये अपने हल्के और आरामदायक फैब्रिक, टेम्पल बॉर्डर और खूबसूरती के लिए महिलाओं के बीच काफ़ी चलन में है।
0: बिल्कुल, और ये साड़ियाँ मलबरी सिल्क, एरी सिल्क और कॉटन सिल्क ब्लेंड से तैयार की जाती है। ये सिल्क हल्का और सॉफ्ट होने के कारण बेहद आरामदायक होता है। इन साड़ियों पर बनी टेम्पल बॉर्डर साड़ी के लुक को और खास बना देती है। मणिपुरी संस्कृति में रंगों का विशेष महत्व है और प्रत्येक रंग का अपना प्रतीक और अर्थ होता है।
1: जी, जैसे कि लाल रंग प्रेम और जुनून का प्रतीक होता है, जबकि हरा रंग उर्वरता और समृद्धि को दर्शाता है। पीला रंग खुशी और शुभता से जुड़ता है, जबकि सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है। ये साड़ियाँ हथकरघे पर बुनी जाती हैं, मुख्य रूप से इनमें सूती और रेशमी धागों का प्रयोग होता है।
0: हाँ, और ये जो रंग बिरंगी साड़ियाँ होती है ना, वाकई में ये अलग अलग जो रंग होते हैं, चटकदार जो रंग होते हैं वो देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। और कई महिलाएं तो हर तरह के रंगों
1: जब वो पहन के आती ना तो पता चलता है त्योहार है।
0: बिल्कुल, और कुछ साड़ियां तो ऐसी होती है जिसमें मिले जुले रंग होते हैं, बहुत सारे रंगों की एक ही साड़ी बनी होती है। हाँ, तो वो भी बड़े एक इंद्रधनुष के रंगों की तरह बड़ी खूबसूरत लगती है। आजकल कुछ आधुनिक डिजाइनों में मिश्रित धागों का भी प्रयोग किया जाता है। महीन बुनाई और सादगी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इसके मुख्य प्रकार है फानेक, मयेक, नाइबी, क्षैतिज धारियां वाला सबसे लोकप्रिय पारंपरिक फानेक है, कनाप फानेक, विशेष अवसरों पर पहना जाने वाला सिला हुआ ये एक रूप है। ये अलग अलग तरह के नाम है जो अलग अलग डिजाइन को दिए गए हैं।
1: जी, और फिर है मोइरांग फी जो होता है वो प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र जिसकी सीमा जो यानी बॉर्डर जो होता है उस पर विशेष आकृतियां बुनी जाती हैं, और इसे GI मान्यता भी प्राप्त है इस वाले इसको। और वांगखे फी, ये बेहद महीन और पारदर्शी मलमल यानी कि मसलिन जैसी जो होती है साड़ी वो होती है, और शुरुआत में इसे शाही परिवार के लिए वांगखे क्षेत्र में बुना जाता था।
0: हाँ, और जी सामी ला

0: मामी भी ये बुनाई और कढ़ाई का एक अद्भुत संयोजन है जिसमें जानवरों पारंपरिक प्रतीकों को उकेरा जाता है
1: जी। और कभी से मणिपुर में प्रतिष्ठा योद्धाओं का प्रतीक माना जाता था। पारंपरिक रूप से इन साड़ियों को सूती, कॉटन और रेशम जो होती है, एरी और मलबरी धागों से हाथों द्वारा बुना जाता है। इन्हें रंगने के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों और पेड़ों की छालों का उपयोग किया जाता था।
0: हाँ, तो इस बार अगर जब भी आप मणिपुर जाए तो, या फिर आपके कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार अगर जाते हो तो वहाँ से एक साड़ी जरूर मंगवाइएगा। उनसे कहिएगा कि हमारे लिए एक मणिपुरी साड़ी लेकर आई है। चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे।

0: हमारा ये जो सेगमेंट है ना कि शब्द हमारा और विचार आपके, तो इसमें आज का जो शब्द है वो फिजूल खर्ची है, तो इस बारे में हमारे साथियों के, हमारे सखियों के क्या विचार हैं वो जान लेते हैं। हमारे एक साथी ये लिखते हैं कि फिजूल खर्ची मतलब समय या संसाधनों का बिना ठोस आवश्यकता खर्च में लापरवाही बरतना। ये एक ऐसी आदत है कि व्यक्ति अपनी आय के मुकाबले ज़्यादा खर्च करके सिर्फ दिखावे के लिए पैसे लुटाता रहता है, अंत में कर्ज में डूब जाता है और तब उनकी आँखें खुलती है तब बड़ी देर हो चुकी होती है। खर्च करने के बारे में एक गुजराती मुहावरा है कि पछेड़ी प्रमाणे सोड़ ताड़वी। इसका मतलब यह होता है कि चादर के हिसाब से पैर फैलाना। खर्च के साथ बचत की आदत भी डालें, वो आपके बुढ़ापे में एक लाठी जैसा सहारा बन सकती है।
1: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि फिजूल खर्ची, भाई इस रोग से प्रायः सभी ग्रसित होते हैं और ऐसा इसलिए है कि अपने वास्तविक आवश्यकताओं की जानकारी ही नहीं है और एक पर एक फ्री का लोभ भी समाया हुआ है, फिर मानव की प्रवृत्ति भी संग्रह करने की है। इस दृष्टिकोण से फिजूल खर्ची होना स्वाभाविक ही है। अक्सर ऐसा होता है ना।

0: जी, जब हम कुछ लेने जाते हैं, जो हम लेने जाते हैं, अगर उसके साथ में कुछ और एक्स्ट्रा मिल रहा होता है, कम दाम का मिल रहा होता है, या एक और एक पर एक फ्री होता है, तो हम उसको जरूर उठा लेते हैं, चाहे हमें उसकी जरूरत हो चाहे ना हो।
1: हाँ बिल्कुल, ये समझ करके कि ये तो फ्री मिल रहा है हमें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसका कुछ तो हमें भुगतान करना ही होता है, जो कि हमें पता नहीं चलता है। हमारी एक साथी ये लिख रही है कि ऑनलाइन शॉपिंग और आकर्षक विज्ञापनों के प्रभाव में आकर अनावश्यक वस्तुओं को खरीदना, बजट न बनाने और बचत के महत्व को न समझने की आदत, गलत वित्तीय देते हैं, जैसे फिजूल खर्ची, बिना बजट के खर्च करना और बचत न करना, जो कंगाली की शुरुआत कर सकती है। आय से अधिक खर्च करने पर व्यक्ति कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाता है। मानसिक तनाव, वित्तीय असुरक्षा के कारण परिवार में कलह और मानसिक अशांति बढ़ती है।
0: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि फिजूल खर्ची एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। आज की दिखावे की दुनिया में लोग अक्सर आवश्यकता से अधिक खर्च कर बैठते हैं। हमें अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए और अनावश्यक वस्तुओं की खरीद से बचना चाहिए। सादगी पूर्ण जीवन और मितव्यता हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं, इसलिए फिजूल खर्ची छोड़कर बचत और समझदारी की आदत अपनाना ही जीवन की सच्ची समृद्धि है।
1: और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि फिजूल खर्ची को रोकने का अर्थ कंजूसी करना नहीं बल्कि मितव्ययता, यानी कि सोच समझकर खर्च करना है, इस आदत को अपनाना है। इसके लिए व्यक्ति को किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि ये उसकी आवश्यकता है या केवल एक इच्छा। बजट बनाकर जीने और अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखने से ही आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: और एक साथी ने ये भी लिखा है कि फिजूल खर्ची एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। तो इन सब आदतों से, इन बातों से हमें बचना है। और फिलहाल एक गीत सुनना है।

0: गीत एक चटपटा सा गाना हमने सुना और अब ज्वार की कुछ चटपटी रेसिपीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि हमारे प्रांत में ज्वार नहीं होता है। अच्छा। महाराष्ट्र जाने पर वहाँ ये रोटी खाई जाती है, बहुत अच्छा लगता है और वहीं के लोगों से बनाना भी हमने सीखी है। और अब तो वैसे पैकेट में सारी चीज़ें मिल रही है, आटा भी मिल जाता है। ज्वार की रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है और अब मैं थोड़े ढंग से उसे बना भी लेती हूँ, क्योंकि उसे बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है ना, वो टूट जाती है किनारों से, इसलिए तो उसको बनाना भी एक टेक्निक होती है और हर किसी के हाथों में ये हुनर नहीं होता है, तो हमें भी सीखना चाहिए। लिखती है ये कि मैं रात के खाने में ज़्यादा ज्वार की रोटी खाती हूँ, किसी भी तरह की तीखी चटनी और सब्जी के साथ खाई जाती है, पर मुझे ये ठेचा और गुड़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। ठेचा एक तरह का महाराष्ट्र में बनाया जाने वाला एक तरह की चटनी होती है, मसाला भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारी लहसुन होती है, थोड़ा अदरक हरी मिर्ची होती है और फिर उन सबको थोड़ा भून लिया जाता है, थोड़ा मूंगफली के दाने डाल करके और फिर उसे पीस लिया जाता है नमक डाल करके और थोड़ा दरदरा सा इसे रखा जाता है, उसे ठेचा कहते हैं।
1: बिल्कुल एकदम मुंह में पानी आ जाए रेसिपी बता दी आपने।
0: बिल्कुल पारंपरिक जो रेसिपी होती है, व्यंजन जो होते हैं ना, उन्हें बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, हाथ से कूटना पीसना और इस तरह के कुछ अच्छी तरह से उन्हें सेकना, चूल्हे के ऊपर पहले तो सेका जाता था, तो ये जो प्रोसेस होते थे इसमें उन चीजों का एक स्वाद वो निकल जाता था।
1: खाली मिक्सी में आप पीस तो वो स्वाद नहीं आता जो हाथ से पीस के आता है।
0: बिल्कुल। अब और भी व्यंजन।
1: हाँ जी बिल्कुल। एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने लिखकर भेजा है ज्वार आटे की राब।
0: अच्छा।
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 4 चम्मच ज्वार का आटा, 4 चम्मच घी, 1/2 चम्मच अजवाइन, 3 चम्मच काजू बादाम की कतरन, 4 चम्मच गुड़, 1/2 चम्मच ड्राई जो अदरक का पाउडर होता है वो, और 2 कप गर्म पानी सजावट के लिए ड्राई फ्रूट्स की कतरन। अब सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें अजवाइन डालकर 1 मिनट के लिए इसको भून लीजिए अच्छे से, और बाद में ज्वार का आटा डालकर धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए। बाद में अदरक का पाउडर, गुड़ और पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लीजिए। बाद में काजू बादाम की कतरने डालकर वापस से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। तो अभी हमारी जो टेस्टी गर्मा गर्म जो ज्वार आटे की राब है वो बनकर तैयार है, इसको ड्राई फ्रूट से जा सकते हैं।
0: और एक साथी लिखा है कि ज्वार एक अत्यधिक पौष्टिक और ग्लूटेन मुक्त अनाज है जो फाइबर, प्रोटीन और खनिजों से भरपूर होता है। इसके सेवन से वजन नियंत्रण और पाचन क्रिया बेहतर बन रहती है। ज्वार के आटे और साबुत ज्वार से कई स्वादिष्ट व्यंजन बन सकते हैं। अब पहले ज्वार की रोटी या भाकरी के बारे में इन्होंने लिखा है कि ज्वार के आटे में गर्म पानी और थोड़ा सा नमक मिलाकर नरम आटा गूंथ लें और हाथ या बेलन की मदद से गोल बेलकर धीमी आंच पर इसे सेकें, तो इस तरह से तो ये रोटी बन जाएगी। हालांकि इन्होंने जितनी आसानी से लिखा है उतनी आसानी से वो बनती नहीं है।
1: बनती नहीं।
0: ज्वार का चीला किस तरह, पुड़ला जिसको बोलते हैं, वो किस तरह से बनाएं कि ज्वार के आटे में दही, पानी, कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, टमाटर, गाजर और इसके अलावा नमक और हरी मिर्च मिलाकर एक घोल बना लें इसका। अच्छा। वो तैयार कर लें और तवे पर तेल लगाकर वो घोल जो है वो फैला दें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेके। अचार या दही के साथ इसको खा सकते हैं, चाय या कॉफी के साथ भी खाया जा सकता है। हाँ ये थोड़ा आसानी से बनाया जा सकता है। इसी के साथ इन्होंने ज्वार का उपमा किस तरह से बनाए वो भी लिखा है कि रात भर भीगी हुई साबुत ज्वार को कुकर में उबाल लें, पैन में राई, करी पत्ता, प्याज और अपनी मनपसंद सब्जियां भुने और इसमें उबली हुई ज्वार और मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पकाएं। इस तरह से ज्वार का उपमा तैयार होता है।
1: वाह बहुत अच्छी चीज है ये तो। और साथ ही हम बात कर रहे थे ज्वार की जो खस्ता कचौड़ी होती है उसके लिए 1 कप गेहूं का आटा चाहिए, बेसन भी उसमें आप ले सकते हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन ये तो उन्होंने गेहूं का बताया हुआ है, हमें तो चाहिए ज्वार का।
0: हाँ।
1: तो हम बात करते हैं ज्वार भाकरी की। तो 2 कप ज्वार का आटा, 2 टेबल स्पून इसमें चावल का आटा चाहिए, 2 टेबल स्पून तेल और 1 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 कप बारीक कटा हुआ धनिया और 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा लहसुन, स्वाद के अनुसार नमक और भाकरी सेकने के लिए घी। सभी सामग्री को अच्छी तरह से आप मिला लीजिए और पानी की सहायता से उसका सख्त आटा आप गूंथ सकते हैं। तो मतलब पतला नहीं रखना है, पतला तो वो अलग हो जाएगा फिर, वो वैसा नहीं बनेगा। तो आटे को बराबर नींबू के आकार की छोटी छोटी सी लोइयों में आप बांट लीजिए। लोई को बेल कर भाकरी बना लीजिए, तवे को गर्म करके

0: और धीमी आंच पर भाखरी को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा सेक लीजिए, फिर घी डालकर लकड़ी के प्रेस से मतलब उस तरह से दबाते हुए अच्छी तरीके से उसको दोनों तरफ से धीमी आंच पर तब तक सेकिए जब तक वो कुरकुरी ना हो जाए, फिर अपनी पसंद की सब्जी या चटनी के साथ आप खा सकते हैं।
1: बिल्कुल। एक साथी हमारी लिख रही है कि ज्वार एक अत्यधिक पौष्टिक और ग्लूटेन मुक्त अनाज है जो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है और इसके सेवन से ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है। और ये लिखती है आगे कि मध्य प्रदेश और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ ज्वार की पारंपरिक रोटी, स्वादिष्ट ज्वार की राब, ज्वार का ढोकला या मुठिया और कुरकुरी ज्वार की पूरी आसानी से बना सकते हैं। और ज्वार के कुछ व्यंजनों के बारे में लिखा है इन्होंने, रोटी के बारे में लिखा है जो कि हम बता चुके हैं इसलिए, और चिले के बारे में भी लिखा है और उसके बारे में भी हम बता चुके हैं, तो ये तो हम नहीं बता रहे। इसके आगे इन्होंने ज्वार की स्टफ्ड बाटी के बारे में लिखा है तो वो हम बता देते हैं। इन्होंने लिखा है कि ज्वार के आटे में अजवाइन, तिल और कसूरी मेथी मिलाकर आटा गूंथ लें, इसके अंदर आलू और मटर का मसालेदार मिश्रण भरे और बाटी की तरह इसको सेक लें या कम तेल में कचौड़ी की तरह तल लें और ये स्वाद और सेहत का एक बेहतरीन संगम है। इसके बाद इन्होंने ज्वार का उपमा बनाने के बारे में लिखा है कि साबुत ज्वार को कुछ घंटे पानी में भिगोकर उबाल लें और अब राई, करी पत्ता और अपनी मनपसंद की सब्जियों से तड़का लगाएं, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और राब के बारे में इन्होंने लिखा है जो भी जिसकी रेसिपी भी हम बता चुके हैं।
0: बिल्कुल। एक छोटा सा ज्वार, ये ज्वार का डोसा है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ज्वार का आटा, 3 बारीक कटा हुआ प्याज, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 मुट्ठी कटा हुआ ताज़ा धनिया, 3 कप पानी और स्वाद के अनुसार नमक, 2 चम्मच डोसा सेकने के लिए तेल चाहिए। अब एक बाउल में ज्वार, जो ज्वार होता है उसका आटा लीजिए, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, नमक और पानी डाल लीजिए, सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाकर उसका पतला घोल तैयार करें, तवा गर्म करें और हल्का सा तेल लगा लीजिए उसको, फिर तवे पर घोल को डालकर गोल गोल घुमाते हुए फैलाएं जैसे कि आप डोसा बनाते हैं, और धीमी आंच पर डोसे को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लीजिए, फिर इसमें आप कुछ भर भी सकते हैं आलू का मसाला या आप ऐसे भी खा सकते हैं।
1: बिल्कुल। जो लोग रसोई घर में काम करते हैं उन्हें पता होता है कि किस चीज से किस तरह की चीजें, और वो विभिन्न तरह के वो प्रयोग भी करते रहते हैं कि अरे इससे हो सकता है कि ये चीज अच्छी बन जाए, वो चीज अच्छी बन जाए, और इस तरह से बना के वो कुछ अलग अलग प्रयोग करके भी बना सकते हैं। हमारे एक साथी ने ज्वार के आटे का कप केक बनाने की रेसिपी भी हमें लिख के भेजी है, लेकिन अभी तो हम समय नहीं कि उसे पढ़ पाएंगे, तो अगर हमारे कोई साथी बनाना चाहते हैं तो इस फेसबुक पेज से आप पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं।
0: बना के देखिए
1: एक गीत हम यहाँ सुन लेते हैं।

0: आरती देखो, जब हमारी पसंद की कोई रेसिपी बनती है ना, जो हमें बड़ी पसंद हो, स्वादिष्ट हो, तो हम भी तो अपने मन में कुछ सपने सजा करके बैठ जाते हैं कि आज
1: हम इसको किसके साथ खाएंगे।
0: बिल्कुल, इस तरह के सपने सजाए जाते हैं। खैर, हम अपनी सभी सखियों सखाओं के लिए यही दुआ मांगते हैं हमेशा कि आप बहुत अच्छे सपने सजाएं और आपके सपने पूरे भी हों।
1: बिल्कुल, स्वस्थ रहें।
0: हाँ, स्वस्थ रहें। इसी के साथ कार्यक्रम अब समाप्त करने की बारी है, तो आज्ञा दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हम एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि मुकेश हम सबके दिलों की धड़कन हैं। हम खुश हों या उदास हों, जिंदगी का कोई भी पहलू चल रहा हो, मुकेश के गाने हमारी जिंदगी में एक साथ चलते हैं और न जाने कितनी पीढ़ियों ने मुकेश की आवाज के साथ अपनी जिंदगी का सफर तय किया है। आज हम मुकेश की याद को नमन करते हुए एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस खास प्रोग्राम में दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, तो उनका तारुफ कराने से पहले उनकी आवाज सुनिए।
1: हो

0: बहती है,
1: जिस देश में गंगा बहती है,
0: जिस देश में गंगा बहती है।
2: क्या बात है, हम उस देश के वासी हैं

0: जिस देश में गंगा बहती है और जिस देश में मुकेश की आवाज गूंजती है, तो स्वागत करते हैं जाने माने गायक मुख्तार शाह का।
1: नमस्कार विनोद भाई, और सभी सुनने वालों को भी आदाब।
0: और मुख्तार भाई के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गोविंद मिश्र, जो मुकेश की आवाज हैं और बहुत प्यारे इंसान। बहुत स्वागत।
2: नमस्कार यूनुस भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।
0: मुख्तार और गोविंद जी, आप दोनों सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जिंदगी में मुकेश कहाँ से शुरू होते हैं?
1: जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं जब म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ता था यूनुस भाई, तब वो हमेशा ऐसे गाने का शौक तो कुदरती तौर से था, तो गाना ऐसे ही गाया करते थे। टीचर कभी बोलते थे तो ऐसे कुछ भी रैंडम गाते थे, लेकिन वो मैं मुकेश जी के गाने समहाउ मुझे बहुत पसंद थे और वही मैं गाया करता था। और जब मैं हाई स्कूल में आया तब वो कभी कभी फिल्म के गाने बहुत मशहूर हुआ करते थे उन दिनों, मैं पल दो पल का शायर हूँ।
0: वाह वाह।
1: तो वो गाना मैं अक्सर गाया करता था जब भी ऐसा टाइम पास के तौर पे स्कूल के अंदर कोई वो पीरियड अगर फ्री है या कोई फंक्शन में गेस्ट नहीं आए हैं तो उनको टाइम पास करने के लिए किसी को बुलाना है तो मुझे बुलाकर वो गाना गाने बोलते थे, तो मैं यही गाता था। तो मेरे जो दोस्त थे तो मुझे मुकेश मुख्तार की जगह मुकेश मुकेश बुलाने लगे।
0: वाह वाह।
1: इस तरह से मेरा जहन भी मुकेश जी की आवाज की तरफ ज्यादा।
0: ये किस शहर की बात है?
1: अहमदाबाद की, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरी तो पैदाइश वहीं की है।
0: तो अहमदाबाद में स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हुए आपका जो झुकाव है वो मुकेश के गानों की तरफ हुआ।
1: जी,
0: अब गोविंद की तरफ बढ़ते हैं। गोविंद, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ?
2: जी, मैं तो हमेशा दूसरे सिंगर्स के ही गाने गाता था, लेकिन क्या है कि कुछ जो जानकार लोग थे संगीत के और जहाँ पे मैं सीखता था, बेसिकली इलाहाबाद जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, अब वो प्रयागराज हो गया है, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप मुकेश को ट्राई कीजिए, आपकी वॉइस जो है थोड़ा सा ऐसा सिमिलर आता है। तो मैंने धीरे धीरे धीरे धीरे सुनना शुरू किया, और मुझे याद है एक बार कॉम्पिटिशन में मुझे गाने का मौका मिला, तो तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, वो गाने का मौका मिला।
0: क्या बात है।
2: और वो गाने के साथ वो फर्स्ट प्राइज जब मुझे मिला तब थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ा, और उसके बाद धीरे धीरे मैं सीरियस होता गया।
0: क्या बात है, तो वही गाना सुनाइए फिर।
2: तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी।
0: क्या बात है, क्या बात है। एक और बात गोविंद, के इलाहाबाद शहर में पढ़ रहे थे और कंपटीशन वगैरह की तो बातें हुई, पढ़ क्या रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे?
2: बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ।
0: ओ हो, ये इंजीनियरिंग और गायकी
2: दोनों अलग अलग है। अभी म्यूजिक का शौक था और 4 साल क्लासिकल ट्रेनिंग मिली मैंने प्रयागराज संगीत समिति से, और फैमिली में ऐसा कोई म्यूजिक में था नहीं, बट मेरा झुकाव थोड़ा उधर था तो
0: बगावत करनी पड़ी कि अब इंजीनियरिंग नहीं करेंगे।
2: कुछ सालों तक तो मुंबई में आने के बाद तो घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं शोज करता हूँ, मैंने हमेशा झूठी बोला कि मैं जॉब करता हूँ।
0: अच्छा, ये भी हुआ है?
2: हाँ, गांव में जनरली से मम्मी पापा को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो हमेशा मंथली जो भेजना भेज दिया। उसके बाद उन्होंने कभी पूछा नहीं कि तुम क्या करते हो, कितनी सैलरी है, कहाँ का जॉब है। तो बस वो चलता रहा। धीरे धीरे जब ये फेसबुक और इंस्टा में और सारे सोशल मीडिया यूट्यूब में वीडियोज आने लगे तब थोड़ा हाईलाइट में हुआ, तब मैंने बताया कि भाई मैं शोज करता हूँ।
0: मतलब इंजीनियर नहीं है, सिंगर
2: नहीं
0: है।
2: जी,
0: मुख्तार भाई, आपने क्या पढ़ाई की है भाई?
1: मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद फिर LLB किया।
0: अरे बाप रे बाप, ये क्या मामला है।
1: मतलब मैं ऑफिशियली ऐसे, मेरा तो एनरोलमेंट है एज ए लॉयर। जब पढ़ाई करता तभी मेरा दिल था बहुत यूनुस भाई के LLB करूंगा और वकील बनूंगा।
0: जी,
1: तो वो मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी। थोड़ा सा गाने का सफर शुरू हो गया था कॉलेज के टाइम में।
0: हाँ हाँ।
1: और फिर मैं जब एडवोकेट हुआ तब मैंने 2 साल म्यूजिक छोड़ के वकालत भी की फुल टाइम।
0: ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है कि
2: सच में।
0: कोर्टरूम में आप जो है वो जिरह कर रहे हैं। तो जिरह की बजाय गाना ज्यादा अच्छा लगता है।
1: लेकिन शायद ऐसा था, डेस्टिनी बोलते हैं ना।
0: जी,
1: तो मैंने शुरुआत की क्राइम साइड, मेरा लीगल प्रैक्टिस है।
0: हाँ,
1: आज भी मतलब मेरा एनरोलमेंट है।
0: जी,
1: और तो लेकिन वो जहन से कलाकार था तो क्राइम की प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज्यादा मन बहुत सेट हुआ नहीं, तो मैं धीरे धीरे थोड़ा उससे दूर होता गया। और कुछ हालात भी ऐसे हुए कि मुझे ऐसा चूज करना पड़ा कि या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी।
0: हाँ, हाँ।
1: तो ऑफ कोर्स म्यूजिक मेरा पैशन था तो वही फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा।
0: क्या बात है। अच्छा, तमाम शहरों में बल्कि दुनिया भर में आप मुकेश को गाते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आपको कई

0: बार गाने पड़ते हैं क्योंकि वो पॉपुलर गाने हैं।
1: जी जी।
0: पर मैं यहाँ चाहता हूँ कि अपने मन का कुछ सुनाइए जो आपको कम गाने का मौका मिले।
1: अमूमन शोज में नहीं रखे जाते ऐसे बहुत सारे गाने जो बहुत खूबसूरत गाने, जैसे अगर मैं बताऊं तो सारंगा तेरी याद,
0: क्या बात क्या बात, सरदार मलिक साहब का संगीत है।
1: जी जी। तो ये गाने अमूमन से कम होते हैं, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है।
0: वाह वाह वाह।
1: तो ऐसे कुछ गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अमूमन कम गाने का मौका।
0: एक गाना मुझे याद आ रहा है, पुकारो मुझे नाम लेकर।
1: वाह, क्या बात है, वो भी डांसिंग का ही म्यूजिक है।
0: ये डांसिंग का म्यूजिक।
1: तो दो लाइनें हो
0: जरूर।

0: अब आप लोगों से एक बहुत ही जज्बाती सवाल मैं करने जा रहा हूँ कि अगर कभी आपकी मुकेश से मुलाकात होती तो क्या कहते आप?
1: ये इमेजिन करना ही एक अपने आप में थ्रिल है कि कभी मौका नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली के अपने जिंदगी के, हम तो बहुत छोटे थे जब उनका इंतकाल हो गया।
0: जी जी,
1: लेकिन यस कभी अगर मौका मिलता तो शायद उस वक्त हम स्पीचलेस हो जाते।
0: बिल्कुल,
1: क्या कहें कि आप बहुत अच्छा गाते हो या बहुत अच्छे सिंगर हो, क्या कहें। तो मतलब वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: तो ऐसे ही मुकेश जी की आवाज और उनकी पर्सनालिटी एक हमारे लिए आइडियोलॉजी की तरह है।
0: बिल्कुल। गोविंद आप बताइए।
2: मैं तो मुख्तार भाई बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलता उस टाइम पे अगर वो मिलते तो, क्योंकि जब भी हम गाते हैं उनको या सुनते हैं तो ये सीरियस बात है कि मांग बंद करके जब भी उनको सुनते हैं तो मैं खाली एक ही चीज इमेजिन करता हूँ कि कैसे गाया होगा। इतने सरल स्वभाव के आदमी,
0: बिल्कुल
2: एकदम एकदम सीधा सीधा गाना और एकदम ना कोई ये वो ऐसा कुछ भी नहीं, सीधा स्ट्रेट गा के एकदम दिल पे उतर जाना। वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता, उड़ता नहीं उनको।
0: क्या बात। अच्छा मुकेश ने बहुत सारे भजन भी गाए हैं और कुछ तो गैर फिल्मी हैं, तो कुछ आप सुनाना चाहेंगे?
1: जिन

0: क्या प्यारा भजन, क्या बात है। और यहाँ ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कि मुकेश जी को रामचरितमानस जो है उससे बहुत लगाव था और उन्होंने पूरी रामचरित अपनी आवाज में रिकॉर्ड की थी। और जो फिल्म म्यूजिक के कदरदान हैं और जो मुकेश के भक्त हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़े तोहफे की तरह है, एक बहुत जरूरी एक चीज है जो संग्रह में रखा जाना चाहिए। मुकेश जी को जब हम सुनते हैं तो कई बार ये एक चीज उभर के आती है कि वो सैड सॉन्ग्स के बादशाह हैं। आप लोग क्या मानते हैं कि क्या ये बात उनको सिर्फ सैड सॉन्ग्स तक महदूद करना या सैड सॉन्ग्स के बादशाह कहना सही है? मुख्तार भाई,
1: मैंने जैसा उनका इंटरव्यू में उनके जबान से ये सुना है कि उन्होंने कहा कि भाई अगर मुझे 10 ऐसे लाइट सॉन्ग दिए जाएं और एक अगर मुझे इमोशनल या सैड सॉन्ग दिया जाए तो मैं सैड सॉन्ग गाना ज़्यादा पसंद करूँगा। कलाकार जो होता है, मेरा अमूमन मानना है कि हमेशा वो दिल से जुड़ा होता है।
0: बिल्कुल।
1: और जो इंसान दिल से जुड़ा होता है उसको हमेशा इमोशंस और फीलिंग्स उनसे बहुत लगाव होता है। और इसीलिए सारे कलाकारों का मैंने देखा है ज़्यादातर वो लोगों

0: को सेंटिमेंटल या इमोशनल और सैड सॉन्ग्स ज्यादा अच्छे लगते हैं।
1: क्या बात है, ये बहुत प्यारी बात कही है कि जज्बाती होते हैं कलाकार, इसलिए जो सैड सॉन्ग्स है उनसे लगाव होता है। मुकेश जी को खास तौर पर सैड सॉन्ग से जोड़कर देखा जाता है, गोविंद आप ये मानते हैं?
2: यही इंटरव्यू, बिल्कुल यही इंटरव्यू मैंने भी सुना था मुकेश जी का, यही था कि 10 अगर रोमांटिक सॉन्ग मुझे दिया जाए और एक सैड नंबर दिया जाए तो मैं सैड को ही प्रेफर करूंगा।
0: लेकिन अच्छा। लेकिन उसके बावजूद मुकेश जी ने काफी सारे रोमांटिक गाने गाए हैं, और मैं तो इनफैक्ट बहुत मरतबा जब ऐसा सुनता हूँ कि जो ऑडियंस होता है कभी बोलता है कि अरे यार मुकेश जी का प्रोग्राम है तो फिर रोने वाले गाने होंगे, तो ये बातें सुन सुनकर मैंने एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया कि जिसका टाइटल रोमांटिक मुकेश,
1: क्या
0: तो मतलब 3 घंटे सारे गाने रोमांटिक और मुकेश जी के गाए हुए, तो लोगों को ऐसा होता है कि अच्छा यार इनके तो इतने सारे गाने रोमांटिक भी हैं।
1: ये बहुत जरूरी बात है, तो एक रोमांटिक गाना आप लोग दोनों मिलकर।

0: था।
1: वैसे मुझे तो गाना, वैसे वापस मुझे भी मनोज कुमार जी वाला ही याद आया था, तौबे मतवाली चाल, लेकिन मैं सोचा मनोज कुमार जी का ज्यादा वो हो जाएगा, तो विराज कपूर जी का गाना
2: क्या बात है।
1: ऐसा

0: रोमांटिक गानों की बात हो रही है और अभी मुख्तार भाई आपने कहा कि मनोज कुमार के ऊपर और राज कपूर के ऊपर मुकेश की आवाज तो इस गाने को चुना जाए, किन हीरोज के ऊपर राज कपूर को छोड़कर, क्योंकि वो तो मुकेश राज कपूर की आवाज तो थे ही, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है मुकेश की आवाज? ये सवाल गोविंद आपके पास भी आने वाला है।
1: अब मेरा मानना है कि अगर राज कपूर मनोज कुमार जी के बाद, मुझे पर्सनली फिरोज खान के ऊपर उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। वाह,
0: मुझे एक बड़ा प्यारा गाना याद आ गया है।
1: अच्छा,
0: लेकिन देखते हैं कि आप उसको गाते हैं कि नहीं।
1: और वैसे तो सुनील दत्त जी पर भी हैं उनके गाने, शशि कपूर जी पर काफी सारे गाने, जितेंद्र पर बहुत सारे गाने।
0: हाँ।
1: तो लेकिन मुझे पर्सनली, मेरा मानना फिरोज खान में मुझे ज्यादा उनकी आवाज अच्छी।
0: तो कौन सा गाना चुन रहे हो आप?
1: जो

0: क्या बात है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत इंदीवर का लिखा हुआ ये गाना सफर फिल्म से, और विविध भारती पर हम यही बात कहते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। हम अपने लिसनर्स की पसंद का बहुत खास ख्याल रखते हैं और इसीलिए आज मुकेश जी को नमन करते हुए हमने आप दोनों को बुलाया। तो गोविंद, अब वही सवाल आपके पास आ रहा है।
1: शशि कपूर जी के ऊपर बहुत सारे

0: इतना अच्छा लग रहा है कि गानों की बारिश हो रही है और हम बहुत शिद्दत से मुकेश को याद कर रहे हैं। मुख्तार भाई, पूरी दुनिया में जाकर आप शोज करते हैं, मैं विदेशों में आपके शोज की बात करने जा रहा हूं, जहां कोई यादगार घटना बताइए।
1: यानी अमूमन तो जैसे हम अब्रॉड जो शोज करने जाते हैं तो ज़्यादातर तो हमारा क्राउड जो होता है अपना एशियन, उसमें भी अपना इंडियन क्राउड और अड़ोस पड़ोस के देशों के भी लोग जो होते हैं हमारा हिंदी सिनेमा को बहुत पसंद करते हैं, वो लोग ही प्रोग्राम देखने आते हैं। और यादगार में अगर मैं कहूँ तो मुझे हॉलैंड, नेदरलैंड एक ऐसी जगह लगती है कि जहाँ पर मैंने थ्रू आउट द वर्ल्ड देखा है कि रफ़ी साहब की पॉपुलैरिटी सारे प्लेबैक सिंगर्स में सबसे ज़्यादा है, एक्सेप्टेबिलिटी भी उनकी सबसे ज़्यादा है। लेकिन नेदरलैंड और सूरीनाम, क्योंकि ज़्यादातर नेदरलैंड से लोग जो हैं सूरीनाम से माइग्रेट होकर आए हैं, ये एक जगह मैंने ऐसी देखी जहाँ रफ़ी साहब से कुछ ज़्यादा मुकेश जी को लोग पसंद करते।
0: क्या बात है,
1: ये कि देश, इसलिए मुझे वो देश बहुत अच्छा लगता है।
0: वाह गोविंद, जब आप गाते हैं तो फरमाइशें किस तरह के गानों की ज्यादा आती है?
2: सैड नंबर की ज्यादा आती है।
0: और उसमें भी कोई खास गाना जिसको आपको तकरीबन हर शो में गाना पड़ता है?
2: जाऊं कहां बताए दिल।
0: अच्छा,
2: इसकी बहुत रिक्वेस्ट आती है।
0: हाँ, बहुत ही जज्बाती गाना है।
2: हाँ, सारंगा तेरी याद में है, सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये सब बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है।
0: सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये गाना सुनते हैं।
2: सजन

0: कौन होगा जिसको इस फिल्म से प्यार ना होगा,
1: है ना?
0: तीसरी कसम फिल्म का कौन सा गाना है जो आपके दिल के करीब है?
1: वो गाने तो उस फिल्म के सारे ही अच्छे थे
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो दूसरे दो गाने जो बहुत पॉपुलर हैं, सज्जन रे झूठ मत बोलो और दुनिया बनाने वाले,
0: हाँ
1: वो गाने भी इक्वली इतने ही अच्छे और मुझे पसंद है।

0: कौन होगा जिसको इस फिल्म से प्यार ना होगा।
1: हाँ,
0: हाँ, तीसरी, तीसरी कसम फिल्म का कौन सा गाना है जो आपके दिल के करीब है?
1: वो गाने तो उस फिल्म के सारे ही अच्छे थे
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो दूसरे दो गाने जो बहुत पॉपुलर हैं, सज्जन रे झूठ मत बोलो और दुनिया बनाने वाले, वो गाने भी इक्वली इतने अच्छे और मुझे पसंद है।
0: अच्छा, तो दुनिया बनाने वाले सुनते हैं आपसे।

0: आप लोग गाते हैं तो बिल्कुल यूं लगता है जैसे मुकेश जी हमारे सामने मौजूद हैं और गा रहे हैं। अपने गले का किस तरह से ख्याल रखते हैं आप लोग, बारी बारी से बताइए। पहले मुख्तार।
1: बिल्कुल, आप ये सवाल मुझसे करते तो मैं कहता पहले इनसे पूछिए।
2: अब पर्टिकुलरली यूनुस भाई, थोड़ा सा गले का ख्याल रखने में एक तो बात यही होती है कि थोड़ा सा अपने वॉइस के लिए जो भी मैं तो बाकायदा म्यूजिक सीखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो थोड़ा सा उठपटांग आता है वैसे थोड़ा सा रियाज करना सुबह में, वो थोड़ा सा करते हैं। गले के लिए खास सबसे पहला वही ज़रूरी होता है, और दूसरा ये होता है कि शो से 3-4 घंटा पहले तक कोशिश करते हैं और ख्याल रखते हैं कि कुछ फ्राइड कुछ नहीं खा लें या खट्टा कुछ ऐसा नहीं खा लें, और ठंडे का परहेज तो हमेशा रहता है थोड़ा।
0: गोविंद, आप
1: आइसक्रीम वगैरह तब चलता है जब 3-4 दिन का गैप हो, तो ऐसा लगता है कि भाई अभी गैप है खा लो। हाँ। थोड़ा सा कर सकते, थोड़ा फ्राइड चीज कुछ हुआ। हाँ। क्योंकि समोसा वोसा मुझे बहुत पसंद है।
0: अच्छा।
1: तो मैं देखता हूँ कि 3-4 दिन का गैप है तो मैं खा लेता हूँ, अदरवाइज नहीं खाता। और कोशिश करता हूँ कि नींद प्रॉपर लूँ जितना हो सके, 7-8 घंटे की नींद लेता हूँ। और सुबह उठना जैसा मुख्तार भाई ने बोला कि थोड़ा सरगम पे तो लगता ही हूँ, मतलब नोट्स पकड़ के एक एक नोट सा नींद आ पाए सरगम, वो एक एक एक नोट पे रहता हूँ मैं।
0: बिल्कुल, इलाहाबादी व्यक्ति को दुनिया में बाकी जगहों के समोसे पसंद आते हैं।
1: नहीं आते, लेकिन अब वो टेस्ट ऐसा करता हूँ चला इलाहाबाद में ही खा रहा हूँ।
0: अच्छा। खान पान का बाकायदा परहेज होता है
2: थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा ख्याल तो रखना ही रहता।
0: अच्छा, ये बताइए कि मुकेश की बहुत सारी गजलें हैं और उनमें से कुछ गजलें आपके दिल के बहुत करीब है, ये मुझे पता है। तो किन गजलों का
2: खूबसूरत उन्होंने जो गैर फिल्मी ये गजल वगैरह उन्होंने गाई है
0: जी।
2: लेकिन मेरा जो पर्टिकुलर मुझे जो बहुत पसंद है वो है तेरे

0: मुकेश जी ने गैर फिल्मी एल्बम बहुत सारे किए और वो दौर ऐसा था जब प्लेबैक सिंगर्स अपनी पसंद के गानों के लिए गैर फिल्मी एल्बम्स करते थे। लता जी ने किए, आशा जी ने किए, मन्ना डे ने बहुत सारे किए, रफी साहब की गजलें मौजूद हैं। तो अच्छा, गोविंद मुकेश के ही गाने आप सिर्फ सुनते हैं या जब सुनने की बारी आती है तो?
1: मैं सच बोलूं तो ऑन एयर आज एक्सेप्ट कर रहा हूं कि जब मेरा शो होता है, जब रिहर्सल होता है, रिहर्सल के एक दिन पहले ही मैं मुकेश जी को एकदम सीरियस होकर सुनता हूं।
0: अच्छा,
1: नहीं तो मेरे फेवरेट हमेशा रफी साहब रहे हैं।
0: और क्या बात है,
1: रफी साहब को मैं बहुत सुनता हूँ।
0: तो फिर अब मैं ये चाहता हूँ कि रफी साहब का एक गाना आप सुनें। ये तो अलग ही हो जाएगा मामला, है ना।

क्या बात है, ये बहुत ही शानदार एल्बम रहा है जिसमें बहुत कमाल की गजलें हैं। हमसे भागा ना करो गजालों की तरह, मेरे महबूब नहीं ये नहीं।

0: यार ये जो है ना ये अच्छा एक्सपेरिमेंट हो गया, अब मुझे आइडिया आ गया। अब मुख्तार भाई आपको भी रफी का गाना गाना पड़ेगा। ऐसा किसी ने किया नहीं होगा लेकिन यहाँ तो होगा ये।
1: सुहानी रात ढल चुकी।

0: हमने रफी साहब को सुना कि
1: मैंने भी, अच्छा मैंने भी
0: ये देखिए ये ऐसा सिर्फ गुजराती में ही पॉसिबल है, ऐसा शोज में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब अगर लोगों ने सुन लिया तो
2: हो सकता है कभी ऐसा कुछ फरमाइश आ जाए।
0: अच्छा जब आप फुर्सत में होते हैं तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुकेश के गाने सुन रहे हों, तो किन किन कलाकारों के गाने सुन रहे होते हैं?
2: मैं रफ़ी साहब सभी के फेवरेट रहे हैं, उनके गाने बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और ऑफ कोर्स मैं कभी किशोर कुमार जी के भी गाने कुछ मुझे पसंद हैं तो वो मैं सुनता हूँ अगर वक्त मिला तो।
0: गोविंद?
1: मैं गुलाम अली साहब को बहुत सुनता हूँ, खाली टाइम पे मैं गुलाम अली साहब को ही सिर्फ सुनता हूँ, बहुत मज़ा आता है उनकी हरकतों को, उनको सब एकदम ऐसा ऐसा डूब जाता हूँ पूरी तरह से।
0: वहाँ हमने गज़लों की बातें की तो यहाँ पर भी जो है, लेकिन अब ये कह के फंस गए गुरु।
2: मैं वो सोच ही रहा था,
1: सोच के जो है
0: चुपके चुपके रात दिन,
1: चुपके चुपके रात दिन, आंसू बहाना याद है चुपके

0: आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन।
1: एक पूरा दौर रहा है
2: ओ
1: गजलों
2: यस
1: का, जब
2: यस
1: गुलाम अली के कैसेट्स, कौन होगा जिसके कलेक्शन में नहीं हुआ करते
2: हाँ
1: होंगे।
2: एग्जैक्टली
1: आप लोग बहुत शोज करते हैं और ट्रैवल भी करते हैं अपने शोज के लिए। मुकेश की आवाज में अलग अलग गानों की अदायगी लाइव ऑडियंस के सामने, कितने दबाव और तनाव की बात होती है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और हर दिन एक जैसा तो नहीं होता है।
2: तनाव तो रहता है जब ये, क्योंकि कमर्शियल प्रोग्राम्स करने रहते हैं जहाँ लोग एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं आपके साथ के गानों के, एक तो वॉइस के अंदर रिजेम्बलेंस और उसके बाद उनके उनको गाना, तो उसका टेंशन तो हमेशा रहता है। इतने सारे, मतलब इतने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम कर चुके हैं थाउजेंड्स में, लेकिन अभी भी गाने का, और स्पेशल जब पहला गाना गाने स्टेज पर जा रहे होते हैं तो दिल ऐसा अंदर से धड़क तो रहा ही होता
1: क्या
2: कि
1: बात
2: भाई लोग एक्सेप्ट कर लें, आवाज़ ठीक से निकल जाए, आवाज़ चल जाए,
1: हाँ
2: क्योंकि वो हमारा क्रिएशन तो है नहीं, हम किसी और का गाया हुआ गाना है और मुकेश जी की आवाज़ को उसको कॉपी करना है, तो वो
1: हाँ
2: थोड़ा सा भी अगर ऐसा सोचते, अगर 5-10% भी अगर उसको जस्टिफाई कर सके तो, और मैं मेरे ख्याल से उतना ही करते हैं जिसके बदौलत लोग इतना प्यार देते हैं।
1: आप 5-10% नहीं करते हैं, आप इसका उल्टा करते हैं, मतलब 99% 100% करते हैं। गोविंद, कितना टेंशन होता है शो से पहले?
0: टेंशन तो बहुत रहता है, और जैसा मुख्तार भाई ने बोला, पहले गाने के लिए सच में बहुत टेंशन रहता है,
1: हाँ
0: जैसे धक धक धक धक करता रहता है। और मैं तो ग्रीन रूम में हुआ, मेरा जब नंबर आने लगा, जैसे पहला गाना मेरा ही है, तो मुझे टेंशन पहले स्टार्ट हो जाता है, और
1: अच्छा
0: मैं कर्टन के सामने खड़ा भगवान को बोलता रहता हूँ, आप संभाल लेना, आप स्टेज संभाल लेना, बस और कुछ नहीं।
1: अच्छा, इस टेंशन को ईज करने के लिए क्या तरीका है आप लोगों का? गहरी गहरी सांस लेना, क्या करते हैं? जैसे इन्होंने कहा भगवान से कहते हैं भाई संभाल लेना,
2: ये तो सबसे बड़ी बात ही है, टेंशन को ईज करने के लिए
1: ऊपर वाले को
2: हाँ उसको तो रिक्वेस्ट करना ही रहता है कि भाई संभालना।
1: बिल्कुल। एक चीज, हाँ ये सवाल पहले आएगा कि मैंने आपको कई जगह गाते हुए देखा है कि आप लिरिक्स के साथ नहीं गाते, अमूमन आपको सब गाने याद हैं
2: जी,
1: ये कितनी चैलेंजिंग बात होती है? ऐसा नहीं लगता है कि कभी कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया?
2: नहीं, क्या है कि बचपन से एक गाने का जो शौक रहा, तो पुराने दौर में जब हम छोटे थे तो हम लोगों को, अब पता है हम फिल्में जब जैसे देखने जाते तो स्टोरी भी पूरी याद होती थी,
1: बिल्कुल,
2: और अपने दोस्तों में कभी डिस्कस करते थे कि ऐसा होता तो वैसा होता, तो वो गाने भी उसी वक्त से मुझे ये सारे गाने, इनसे इतना लगाव था, इतने दिल से जुड़े रहे इन गीतों के साथ, वो तब से याद हैं, तो वो आज तक ऐसे एक सिस्टम कुदरत ने अंदर इतनी मेहरबानी की है कि वो एक सेट रखा है कि मैं स्टेज पे जाता हूँ, मैं कभी ऐसा सोच कर भी नहीं जाता हूँ कि अच्छा इसका पहला अंतरा क्या है, सेकंड क्या है, वो स्टेज पे याद आते जाता है, वो
1: चलता चला जाता है।
2: हाँ
1: तो कभी मैंने आपको लिरिक्स के साथ गाते हुए नहीं देखा, इसलिए मैंने कहा कि ये बात जो है ये तो पूछनी जरूरी है कि कितने गानों का खजाना दिमाग में जमा कर रखा है।
2: और वो मैंने क्या है कि कभी रखा भी नहीं रेफरेंस के लिए, मैं कागज इसीलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि जिस दिन साइकोलॉजी एक बैक ऑफ द माइंड मैंने मैसेज दे दिया कि

0: भाई एक रेफरेंस के लिए है, तो वो नजर वहां जाएगी। तो कहते हैं ना कि अब जैसे बैंडेज खरीदते हो तो आपको चोट लगती है।
1: अरे
0: तो खरीदना ही नहीं चाहिए बैंडेज।
1: गोविंद कितने गाने याद रहते हैं और डायरी की जरूरत पड़ती है?
2: हाँ कभी कभी पड़ती है। सर मुख्तार भाई ने बोला अभी कि थोड़ा रेफरेंस के लिए ना वो दिमाग में मेरे बैठ गया है वो चीज। कुछ लाइनों को देखना पड़ता है, मतलब बहुत बार गाया है लेकिन फिर भी वो देखना ही पड़ता है, होता है। लेकिन कुछ गाने बहुत याद हैं, कुछ गाने एकदम पूरे याद हैं, लेकिन कुछ गानों को जिनको मतलब अमूमन कभी नहीं गाया है या पहले दो बार गा रहा हूँ, दो तीन बार गाने के बाद तो वो याद ही हो जाता है।
1: अच्छा, फिर इतने सालों से आप लोग शोज कर रहे हैं और एक तरह से शो जो है वो जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं, तब भी रिहर्सल कितनी मायने रखती है? हर शो के पहले एक रिहर्सल होती है।
0: मैं अब इन दिनों अभी काफ़ी सारे मतलब रिहर्सल मैं स्किप करने लगा हूँ, बहुत नहीं जाता हूँ रिहर्सल में। लेकिन यस हाँ, कभी जैसे प्यारे भाई का अगर कोई प्रोग्राम है या आनंद जी भाई के साथ कर रहे हैं, विजू भाई के साथ कर रहे हैं, तो वो रिहर्सल पर्टिकुलरली अटेंड करने जाता हूँ, क्योंकि एक थोड़ा सा लर्निंग लेसन्स रहते हैं वहाँ पे। और बाकी अब म्यूजिशियंस और वो सब सारे इतने नोन हैं इतने सालों से, तो अब वो एक सबको एक लिस्ट दे दो और थोड़ा सा स्केल फ़ोन पर डिस्कस कर लो तो काम वैसे चल जाता है।
1: बिल्कुल,
0: अनलेस के कोई ऐसा रेयर गाना गा रहे हो तो थोड़ा सा देखना पड़ा।
1: गोविंद आप बताइए।
2: नहीं रिहर्सल तो ठीक है, जो अगर हम रेगुलर गाने गा रहे हैं तो उसकी जरूरत तो नहीं पड़ती है, क्योंकि सारे म्यूजिशियन भी वैसे ही हैं। और आज के टाइम पे चाहे सिंगर हो म्यूजिशियन हो, सब इतना मेहनती हैं, सब मेहनत करते हैं, सब अपना 100% स्टेज पर देते हैं, चाहे वो सिंगर हो चाहे म्यूजिशियन हो साउंड हो कोई भी हो। लेकिन हाँ कुछ पर्टिकुलर कुछ अलग गाने मिल गए, कुछ कोरस वाले गाने मिल गए तो रिहर्सल की जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल मुख्तार भाई, बहुत सारे लेजेंड्स के साथ मैंने आपको शो करते हुए दिखा है
0: जी।
1: तो जैसे प्यारे भाई ही हैं
0: जी, जी।
1: या आनंद जी भाई हैं या और तमाम लोग हैं, मतलब सिंगर्स भी बहुत सारे तमाम लोगों के साथ, उनकी कुछ यादें उनके साथ शो की यादें हमारे साथ बांटिए।
0: मैं मतलब मैंने कभी अपनी जिंदगी में जब छोटा था गाना मैंने शुरू किया अहमदाबाद में था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुदरत ऐसा मौका भी देगी कि ये लोगों के साथ मिलना होगा या इन लोगों के साथ कोई स्टेज पे खड़े रहने का मौका भी मिलेगा। तो मैं ऊपर वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये मौका दिया। जैसा कि हम सुनते थे कि भाई ये जो लेजेंड्स होते हैं तो जब इनके साथ काम करो तो इनके काम करने का तरीका, इनकी डिटेलिंग, इनका ऑब्जर्वेशन, वो देखकर ही पता चलता है कि इसीलिए ये लोग महान हैं। तो जैसे कि मैं बताऊँ कि अगर प्यारे लाल जी के साथ एक प्रोग्राम कर रहा था तो सारे म्यूजिशियंस बजा रहे हैं और जैसा मैं सुनता था तो वो मेरे साथ बात भी कर रहे थे, और वो जब जुम्मा चुम्मा दे दे वाला म्यूजिक आगे का चल रहा था तो वो जैसे स्टॉप हुआ तो उन्होंने पर्टिकुलरली चार कीबोर्ड वाले थे, उसमें से एक ही कीबोर्ड वाले को उन्होंने बोला कि आप वो बजाइए, आप क्या बजा रहे थे, और वही इंसान गलती कर रहा था वो जगह पर।
1: इतनी तो बारीकी से,
0: इतनी बारीकी से जो सुनना
1: जी
0: ये।
1: और प्यारे भाई के बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो 20 वायलिन में से भी एक को पहचान लेंगे कि तुम गलत बजा रहे थे। तो ये तो कमाल की बात है। उनके साथ बहुत रिहर्सल्स बहुत शोज किए हैं आपने, तो कोई एक गुरु मंत्र जो उन्होंने आपको दिया हो?
0: मुझे वो ऐसा कहते थे कि आपके थोड़े से जो लैंडिंग जहां आप नोट्स आपको करते हैं वो थोड़ा सस्टेन करना या उसको थोड़ा सा करेक्ट करना, जो उन्होंने मुझे बताया था, तो वो एक उन्होंने मुझे बताया और वो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा उन्होंने मुझे बताया है तो लैंडिंग नोट्स को जो गाना जहाँ से जो लाइन जहाँ ख़त्म होती है तो उसको जो सस्टेन करना, तो कोशिश करता हूँ वैसे ही करने की।
1: मुझे लगता है कि वो गाना जो आप कई बार प्यारे भाई के साथ स्टेज पर गा चुके हैं, वो जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली,
2: हाँ, हाँ, हाँ,
1: वो गाना सुनते हैं आपसे।

0: क्या बात है। इस गाने के बारे में जो एक ट्रिविया है वो भी बता दीजिए, द गुड द बैड द अगली।
1: वो जो म्यूजिक उन्होंने किया तो मैं, वो मुझे प्यारे भाई ने बताया कि हमने उसका बाकायदा पेड करके वो लिया हुआ म्यूजिक, चुराया हुआ नहीं
0: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कमाल है कि इतनी बड़ी हॉलीवुड की फिल्म और उसका जो म्यूजिक

0: गोविंद अब आपकी तरफ आते हैं, तमाम तरह के शोज किए हैं, तो को सिंगर्स के साथ कुछ दिलचस्प अनुभव, कभी ऐसा होता है कि लाइंस भूल जाते हैं लोग या ऐसा कुछ?
1: हाँ, एडजस्ट करना पड़ता है, कभी कभी तो होता है। और काफी सारी फीमेल सिंगर के साथ जब मैंने गाए तो कई लोग, कई फीमेल सिंगर ऐसी थी जिन्होंने कोई कोई गाने में लाइन भूल जाती थी, तो वो याद मुझे रहता था, तो मैं खाली उस इशारा करके मैं संभाल लूंगा, मैं गा लूंगा, मैं दो लाइन या तीन लाइन आगे गा के फिर उनको सपोर्ट करता कि अभी तुम गाओ।
0: क्या बात है, हाँ। क्या बात है, ये भी करना पड़ता है, करना पड़ता आप है। भी ऐसा करते हैं?
2: नहीं, आम तौर से ऐसा कभी, यस ऑफ कोर्स, अगर को सिंगर अगर है, कहीं हमारी गलती होगी तो शायद।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:19 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

युवा श्रोताओं का स्वागत है उनके प्रिय कार्यक्रम युववाणी में। साथियों, आज बातचीत करेंगे, कुछ गीत सुनेंगे, संगीत का आनंद लेंगे और आपसे जुड़े हुए कई मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस भगवती गीत के साथ।

मैया के अद्भुत श्रृंगार। अभी आप सुन रहे थे सरिता पराशर के स्वर में यह देवी गीत। दोस्तों, युवानी कार्यक्रम में जैसा कि हमने कहा कि युवा श्रोताओं से जुड़े कुछ मुद्दों पर हम बात करते हैं, और इस वक्त जो युवाओं के मुद्दे हैं वो सबसे बड़ा होता है कि हम किस प्रकार से स्वयं को निखारते हुए अपनी जगह, अपने क्षेत्र, अपने समाज और अपने राष्ट्र को भी निखार पाएं। युवा वह उम्र है जब आप नवोन्मेषी और प्रेरक विचार आपके मन में उत्पन्न होते हैं और जो समुदाय जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उसे एक आकार दे पाते हैं। युवाओं के लिए राष्ट्र की रूपरेखा, परिभाषा और विकास कार्यों को अपूर्ण रूप से लागू किया जा सकता है, लेकिन अधिक उत्साही और ऊर्जावान उम्र में हम होते हैं और हम चाहते हैं कि अपनी इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। और अगर हम सही दिशा में लगाते हैं अपनी ऊर्जा को तो सच मानिए राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर होता है। युवा पीढ़ी, जिसे आज जनजी के नाम से जाना जाता है, वो देश के निर्माण के लिए तरह तरह के नए सोच ला सकते हैं। अब राष्ट्र आगे बढ़ने की ओर कहता है कि सिर्फ हम नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी बने, यानी हम स्वयं का कोई कार्य, स्टार्टअप चालू करें। इस दिशा में भी देखा गया है कि युवाओं के मन में नए नए विचार आते हैं, नए नए तरह के स्टार्टअप्स पिछले कई सालों में हमारे देश ने देखा है, जिसे युवाओं ने चलाया है। छोटे से छोटे फॉर्म को बड़े से बड़ा रूप देना युवाओं के हाथ में होता है। आप भी सोचिए, आप भी जानिए कि हम कैसे, किस तरह जो कार्य हम कर रहे हैं उससे राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे। कार्यक्रम जारी है, आइए आनंद लेते हैं एक और गीत का।

बोध नारायण सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत और बातें हो रही हैं कि राष्ट्र निर्माण में युवा किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। देखिए, ये बातें करने के लिए, ये बातें कहने के लिए बहुत सारी हैं, लेकिन आज के युवा पीढ़ी के पास अपनी स्वयं की क्षमता इतनी है कि वह पहले ही अपनी दिशा तय कर चुकी होती है कि हमें क्या करना है। चाहे वह ग्राम में रहने वाले युवा हों, शहर में रहने वाले युवा हों या बड़े शहरों में रहने वाले युवा हों, आज इनमें कोई अंतर नहीं रह गया है, क्योंकि सूचना तंत्र इतनी ज़्यादा तेज़ी से विकसित हो रही है। हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, और हम लोग एक दूसरे से यानी पूरे विश्व से लगातार जुड़े हुए हैं। और युवाओं को यह पूर्व में अनुमान कर लेना होता है इस सूचना तंत्र के माध्यम से कि आने वाले समय में जब वो नौकरी के लिए तैयार हो रहे होंगे, उनकी पढ़ाई ख़त्म हो रही होगी, उस समय कौन सी चीज़ ट्रेंड कर रही होगी, किस प्रकार से वो उस क्षेत्र में जाकर अपना योगदान दे सकते हैं। अनिवार्य नहीं है कि नौकरी करने के लिए आप बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों को चुनें, बड़े बड़े जॉब्स को चुनें। अनिवार्य यह है कि जो व्यक्ति जिस क्षमता का है, सबसे पहले अपनी क्षमता का आकलन करना अनिवार्य है, जो व्यक्ति जिस क्षमता का है उस क्षमता के अनुसार राष्ट्र की सेवा करे और स्वयं का योगदान दे। यह सबसे अनिवार्य बात होती है कि आप अपनी क्षमता को स्वयं आंकिए। कोई अन्य आपके विषय में अगर बता रहा है कि अच्छा तुम्हें IPS कर लेना चाहिए या तुम्हें

डॉक्टर बन जाना चाहिए या तुम्हें इंजीनियर बन जाना चाहिए। इस तरह की बातें अगर होती हैं, वह आपकी क्षमता को आंक कर नहीं कह रहा होता, वह आपको बाह्य रूप से देखता है, बाहरी आप जिस तरह का व्यवहार करते हैं उससे आंकता है, लेकिन आपका अंतर्मन क्या कहता है, आपके भीतर क्या चल रहा होता है, आपकी क्या क्षमताएं हैं, यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आप समझिए, विचारिए, सोचिए, अपने ऊपर कार्य कीजिए और तब निकल पड़िए राष्ट्र की सेवा में। कार्यक्रम जारी है एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी और बातें चल रही हैं युवाओं का राष्ट्र निर्माण में योगदान, राष्ट्र के विकास में योगदान। इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस कार्य को करते हैं, कोई व्यक्ति इंजीनियर बनता है, कोई सीए बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई आईएएस आईपीएस बनकर राष्ट्र की सेवा करता है, यह सेवा उस तरह की सेवा है जिसमें आपको भुगतान किया जा रहा है, उसके विभाग में आप कुछ पैसे प्राप्त करते हैं, आपका परिवार भी चलता है। इसके अलावा जब हम अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके होते हैं, हर युवा का कर्तव्य है कि इससे इतर भी राष्ट्र के लिए कुछ और सोचे, कुछ और योगदान दे। ऐसे में योगदान देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। राष्ट्र को अधिक श्रम की आवश्यकता है, आप दे सकते हैं अपना योगदान अपने जॉब से बचे हुए समय से। पर्यावरण को ठीक करने की आवश्यकता है, युवा दे सकते हैं योगदान। हमारे क्षेत्र में जल संकट है, उसके निवारण के लिए युवा आगे बढ़कर आ सकते हैं। नदियों तालाबों में गंदगियां हैं, उसकी सफाई के लिए युवा आगे आ सकते हैं। और ऐसा देखा गया है कि अलग अलग जगहों पर कई युवा मिलकर कार्य कर रहे हैं, नए सिरे से राष्ट्र को बांधने का सिलसिला जारी है, कार्यक्रम भी जारी है। तो चलिए सुनते हैं एक और गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: इसी के संग युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का समय यहीं समाप्त होता है।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

नए जमाने के नए तराने। पहला गाना सुनवाते हैं हम आपको फिल्म एनिमल से। अरिजीत सिंह की आवाज है, श्रेयस पुष्पांक के लिखे इस गीत को संगीत दिया है सिद्धार्थ गरिमा ने।

0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं नए जमाने के नए तराने।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: नए जमाने के नए तराने, आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए, फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी से। आवाज है अरुण देव यादव की, अनुराग साकिया का संगीत और जूनो के लिखे गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में। राम संपत का संगीत और प्रशांत पांडे के लिखे बोल हैं। फिल्म है लापता लेडीज।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना हमने लिया है फिल्म भीड़ से। आवाज है ओम प्रकाश यादव की। अनुराग साकिया के संगीत में बोल लिखे हैं डॉक्टर सागर ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी दरभंगा से भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। अब से कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से आप समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मानसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: उधर राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई, तब भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन में चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
2: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा स्थिति के कारण झंडेवालान मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया है। इससे पहले 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा की गई थी। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा

संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। शुरुआती खबरों के अनुसार सुरंग में 25 लोग फंसे हुए हैं। हालांकि खराब मौसम के कारण बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन तक तेज बारिश हो सकती है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज महिला सिंगल्स मुकाबले में सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण, साथ ही कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर के उपरांत आप सुनेंगे विद्यापति गीत। समय होगा संध्या 6:10 पर। मैथिली संवाद का आप आनंद ले पाएंगे संध्या 6:25 पर। 6:30 पर सुनिएगा काम घर के अंतर्गत घर अंगना। इसी के अंतर्गत सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। 7:00 आप सुनेंगे खेती गृहस्थी। हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे संध्या 7:30 पर। संध्या 7:47 पर सुनिएगा जिले की हलचल। संध्या 7:50 पर बिहार विधानमंडल समीक्षा आप सुन पाएंगे हमारे पटना केंद्र से। रात्रि के 8:00 हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा संसद समीक्षा। सिंगरहार यह कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 8:45 पर हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि 9:00 News@9 और 9:15 पर उर्दू खबरें। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा चर्चा का विषय है। रात्रि 10:00 सुनवाएंगे लोक माधुरी। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा गीतों के रंग।

और अब हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। क्लब पाते 5:50 पर आप सुनेंगे चिंतन, प्रार्थना और प्रयत्न, आलेख एवं वाचन होगा कुसुमाकर दुबे का। कृषि चर्चा के अंतर्गत सुनिएगा सम्मान निधि योजना, वाचन स्वर होगा मोनी कुमारी का। स्वास्थ्य चर्चा में सुन पाएंगे आप नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर उत्सव राज, समय होगा प्रातः 6:05 पर। वंदना के अंतर्गत आप भक्ति संगीत का आनंद ले पाएंगे प्रातः 6:10 पर। प्रातः 6:40 पर सुनिएगा रामचरित मानस गान। नमस्कार मिथिला, हमारा दैनिक कार्यक्रम आप सुन पाएंगे प्रातः 7:05 पर। अंजुमन उर्दू कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 9:10 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे प्रातः 10:00 से। उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनवाएंगे भीमसेन जोशी का गायन, समय होगा प्रातः 11:00। 11:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। नए फिल्मी गीतों का आप आनंद ले पाएंगे दोपहर के 12:00। महिला श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम सुनिएगा नारी संसार, समय होगा दोपहर के 12:30 पर। दोपहर के 1:10 पर सुनवाएंगे देशभक्ति गीत, आवाज होगी मन्ना डे की। फिल्म संगीत का आप आनंद ले पाएंगे दोपहर 1:15 पर। रोजगार सूचना सुनिएगा दोपहर 2:10 पर। दोपहर 2:30 पर

सुनिएगा फिल्म संगीत। दोपहर के 3 बजे लोक गीतों का आप आनंद ले पाएंगे। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। ये आकाशवाणी दरभंगा है।

ये आकाशवाणी दरभंगा है। प्रस्तुत है विद्यापति गीत। कलाकार हैं गौतम मिश्र।

घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।

मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।

आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी हृदयकांत मिश्र। संसदक दुनू सदनक कार्यवाही आइ नीट परीक्षा पेपर लीक मामला सहित कतेको मुद्दा पर विपक्षक हल्लागुल्लाक कारण बाधित रहल। हल्लागुल्लाक स्थितिक कारण लोकसभा कार्यवाही दिन भरि लेल स्थगित कऽ देल गेल। एम्हर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जनौलनि जे सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामला पर चर्चा लेल तैयार अछि। ओ जनौलनि जे सरकार देशक युवा सभक भविष्य के ध्यान में राखैत सब पक्ष के शामिल करैत सार्थक चर्चा चाहैत अछि। विधानमंडलक मॉनसून सत्रक तेसर दिन आइ 13 पैघ विधेयक पारित कयल गेल। एहि मे बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026, बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 आ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 अछि। विधानसभा में बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 पारित भऽ गेल। विधेयक पर चर्चाक बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जनौलनि जे एहि सँ छात्र सभ के राज्य में नीक उच्च शिक्षाक मौका देब अछि। विधानसभा में शहीद जुब्बा सहनी वस्तुकला और अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक 2026 के विधानसभा में ध्वनिमत सँ पारित कऽ देल गेल। एहि विधेयक के विज्ञान प्रौद्योगिकी आ तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी पेश कयलनि। एहि सँ पहिने प्रश्नकालक बीच विपक्ष सदन में कम वर्षा सँ किसान लोकनि के भऽ रहल समस्याक मुद्दा उठौलक। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हस्तक्षेप करैत जनौलनि जे सरकार किसानक हित के लऽ कऽ चिंतित अछि और सिंचाई लेल 12 घंटा बिजली दऽ रहल अछि। ओ जनौलनि जे एहि सँ फराक जरूरत पड़ला पर किसान सब के डीजल अनुदान देल जायत। विधान परिषद में आजुक कार्यवाहीक बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादवक अनुपस्थिति के लऽ कऽ सत्ता पक्षक सदस्य सब द्वारा टीका टिप्पणी पर खूब बहस भेल। बाद में सभापति अवधेश नारायण सिंहक हस्तक्षेपक बाद मामला शांत भेल। भेटल जनतबक अनुसार विधानसभा में काल्हि पारित कतेको विधेयक पर आइ चर्चा कयल गेल। नीट परीक्षा पेपर लीक मामला के लऽ कऽ छात्र सब आइ पटना में विरोध प्रदर्शन कयलनि। पटनाक गांधी मैदान सँ लोक भवन धरि निकालल गेल विरोध मार्चक बीच कतेको ठाम पुलिस बैरिकेडिंग कऽ प्रदर्शनकारी सब के रोकैत देखल गेल। एहि बीच पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्र सभक बीच झड़प सेहो भेल। प्रदर्शनकारी सब के काबू करबाक लेल पुलिस बल प्रयोग सेहो कयलक। कांग्रेसक वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन सँ आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ता सब आइ पटना में विरोध मार्च निकाललनि। कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम लग भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता सभक बीच भेल झड़प में दोनों पक्षक कतेको लोक सब घायल भऽ गेलाह। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना सिटी गुरु गोविंद सिंह अस्पतालक नव भवन में कतेको निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा जिला औषधि भंडार गृह और राज्य कतेको स्वास्थ्य संस्थान में नव चिकित्सा सेवाक शुभारंभ कयलनि। मुख्यमंत्री श्री चौधरी पटना में 40,26,00,000 टाकाक लागत सँ नव बनल 3 गंगा घाट, भद्र घाट, नौजर घाट आ महावीर घाटक लोकार्पण कयलनि। नालंदा विश्वविद्यालय आ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIRक बीच आइ नव दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कयल गेल। एहि सँ विज्ञान आधारित सतत विकास, प्रौद्योगिकी प्रसार, कौशल विकास और वैज्ञानिक जनसंपर्क के बढ़ावा देना अछि। नालंदा विश्वविद्यालयक कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और CSIRक महानिदेशक डॉ एन कलेसेल्वी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कयलनि। दरभंगा जिला में रैयाम चीनी मिल सहकारी समितिक सदस्यता और कुशियार किसान सभक पंजीकरण

0: लेल विशेष अभियान चलाओल जायत। जिलाधिकारी कौशल कुमार जनौलनि जे 24 सँ 26 जुलाई धरि केवटी, सिंहवाड़ा आओर मनिगाछी प्रखंड मे विशेष शिविर लगाओल जायत। प्रदेशक कतेको भाग मे दक्षिण पश्चिम मॉनसूनक सक्रियता सँ वर्षा भऽ रहल अछि। मौसम विभाग आइ सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार आ पश्चिम चंपारण सहित राज्यक उत्तर पूर्व आ उत्तर दक्षिण भाग मे कतेको ठाम भारी वर्षाक अलर्ट जारी कयलक अछि। विभाग अपन पूर्वानुमान मे जनौलक अछि जे अगिला 24 घंटाक बीच पटना, नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया सहित राज्यक दक्षिण मध्य भाग मे कतेको ठाम तेज हवाक संग वर्षा भऽ सकैत अछि। एहि बीच किछु ठाम ठनका सेहो खसि सकैत अछि। एम्हर पछिला 24 घंटाक बीच मधेपुरा जिलाक पुरैनी मे सबसँ बेसी 64.2 मिलीमीटर वर्षा भेल अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम गाम घर।

0: घर आंगन में सब श्रोता लोकन के आ बहन सबके मुनि दिस से नमस्कार संगे स्वागत है। लाल बहन अहू के नमस्कार।
1: नमस्कार मुनि बहन, संगे सब बहन आधी आबादी बहन लोकन के हमरो दिस से नमस्कार छन आ कार्यक्रम घर आंगन में स्वागत छन।
0: आई तो बड़ निक लग रहा है लाल बहन, अहा के साड़ी एकदम चमक रहा है, आई पर इतिक सुंदर मिथिला पेंटिंग, एकर जे फूल सब चिड़िया सब बनल है से कतेक सुंदर लागे ये साड़ी।
1: हाँ मोनी बहन, मिथिला पेंटिंग तो ठीक है, अहाँ एक झलक में जाए जे दुकान पर तो पसंद भ जात मिथिला पेंटिंग के साड़ी। आ साड़िए किया मोनी बहन, एखने देखियो जो ब्याह दान जो हो या पहिने से प्लेन रहे छले या पाग आ अहिना दोपटा रहे छले बर के, आप देखे छन रंग बिरंग के ओ पाग पर माछ घैल बनायल माने फूल बनायल तो कतेक सुंदर लगे जेना एक तो बहुत सुंदर ते पर से ओ पाग पहिने
0: और सुंदर अपन मिथिला चित्रकला के एक तो अपन सबके जे संस्कृति अछि ओकर उकेर को जे बनायल जाइत अछि तो और अपना सबके ओ सुंदरता बढ़ा देत अछि।
1: ठीक है अहाँ कहलहुँ हैं, आ एतबे नहि मोनी बहिन, आ ई देखियो पहिने तऽ ई नहि छलै कोनो आइए भेलै माने बहुत माने प्राचीने काल से ई परंपरा आई अपन सबके दादी नानी से आंगन में अरिपन बनबे छली है। उपनयन, हाँ उपनयन होय छला तो पहिने माटि से मरबा बनाओल जाय छला और मरबा पर लिखल जाय छला गोसाउनी के घर के देवाल पर कदम के गाछ माछ पूरे निक पात से बनायल जाय छला आ वो सब एतेक सुंदर बनबे छलत है मुदा ओकर पहिने एतेक पहचान नै छलै।
0: आ पहिले अपन बहिन सब जे पेंटिंग बनाबैत छलखिन ये तो ओकरा साठ में लऽ जाय छलखिन ये तो कनिया के जे साठ वाला देखे छलखिन कनिया कतेक सुंदर पेंटिंग बनाबै छथिन, मुदा धीरे धीरे जेना जेना समय बीतल अछि लाल बहिन तेना तेना अपन जे रुचि अछि अपन जे कला अछि ओकरा अपन बहिन सब अपन रोजगार के साधन बना लेने छथिन।
1: ई जे अहाँ कहलहुँ आब ओतबा सुंदरते नहि रहि गेल, आब एहि माध्यम सँ किछु पैसा हमर बहिन लोकनि सेहो कमा
0: लगै छथि,
1: अपन पैर पर ठाढ़ भए जाथि। एतबे नहि आ कतेक मान सम्मान भेटै छनि आ देश विदेश में हुनकर नाम होइ छनि,
0: एकर मांग तऽ बढ़ि रहल अछि।
1: ने कहलहुँ हैं जे एतऽ देश विदेश में एकर मांग एतबे नहि, अपन देखियौ रांटी मंगरौनी पिलखबार के कतेक बहिन के सम्मानित कयल गेलन है मिथिला पेंटिंग में, तो कहबाक इतिहास पर जे बहिन के एहिमे रुचि होइन ओ निश्चित रूप से बनाबैत आगू बढ़ैत आ सबसे तो माने एकर सबसे मतलब खासियत है जे बहिन लोकन घर बैसल ई काज कऽ सकै छथि, एहि लए कतौ जाय नहि पड़तनि।
0: हमहुँ जखन मिथिला पेंटिंग सीखे लए जाइ छलहुँ लाल बहिन तखन चारिटा पाँचटा बहिन सब काज कऽ कऽ सबटा काज समेट कऽ बैसै छलथि ये, एक दोसर से जानकारी के गप सेहो साझा करै छलखिन ये, एक दोसर के मदद करै छलखिन ये जँ

0: समस्या आबै छलै नीब गड़बड़ाइ छै,
1: चार रंगे कोन केना रंगके केना चुनू चुनाव करी,
0: कोन रंग संगे कोन रंगके
1: मेल खायत
0: एकदम, इहे सुंदरता कतेटा के फूल बनाओ कतेटा के माछ बनाओ
1: से निक लागत,
0: सबके आकार जे छै न ओ आकार जे सही बनै छै तऽ आओर सुंदर
1: खिलै छै। देखियौ जेना साड़ी भेलै, बिछानक चद्दर भेलै, ओढ़नी भेलै, कते गोटा
0: कुर्ती पर बनै
1: छै, टी शर्ट पर, प्लेन टी शर्ट आ पाग,
0: ये मोबाइल के खोली पर देखब, बैग सब पर एतेक सुंदर सुंदर
1: छोट छोट खूब, तऽ देखियौ तऽ ओहि पर तऽ छोट नीक लागत, आ जे बिछानक चद्दर भेल, तकिया खोल भेल, तऽ ओहिमे तऽ छोट लागत।
0: तऽ जखन चारि पाँचटा बहिन बैसैत छथि तऽ अपन अपन विचार राखै छै जे एना बनायब तऽ ई बेसी सुंदर लागत, आ ओहिसँ सब कोई सीखै
1: तऽ इएह ने कहलहुँ, हम बहिन सब जखन बैसै छी तऽ सार्थक गप करै छी, निरर्थक गप नहि करै छी।
0: आब लाल बहिन एकटा आओर एहिमे बहुत बढ़िया गप ई अछि जे एहिमे लागत बुझियौ तऽ एकदम बहुत कम अछि,
1: एकदम
0: रंग नीब आ एकटा बोर्ड जे कार्डबोर्ड होइत अछि जे पर की कपड़ा के राखि कऽ अपना सब पेंटिंग बनाबैत छी बस, आओर की कनिक ब्रश बुझियौ, तऽ एतबे चीज सँ अपना सबके रोजगार भेटैत अछि, अपन पैर पर ठाड़ भऽ सकै छी,
1: कोनो पूंजी लगेबाक आवश्यकता नहि।
0: शुरुआत मे वह बैग बना कऽ बिछान चद्दर बना कऽ धीरे धीरे जखन अपन सबके काज
1: हाथ जहन बैस जाइए
0: तखन सिल्क के साड़ी अछि, क्रेप अछि, शिफॉन अछि, बहुत रंगक
1: बिछानक चद्दर अछि, आ तहन तऽ घर बैसल एते हम देखै छियनि, हमरा ओतऽ छथिन सोन बहिन हमरा टोल मे, हुनका बेटी के देखै छियनि, हुनका सबके घर बैसल एक एक बेर ऑनलाइन पाग मंगाबै छथिन, टी शर्ट मंगबै छथिन, ओढ़नी, आ मने मांग एतेक रहै छनि जे छन छुई मुई भऽ जाइ छै,
0: बुझियौ तऽ घर मे बैसल सामान एले बनेलखिन घर मे बैस कऽ, पार्सल भऽ गेल,
1: स्कूलो कॉलेज करै छथिन, आ ताहिके बाद से अपन समय भेटै छनि जहन तऽ सब मिल कऽ अपन बनाओल लै छथिन।
0: बुझियौ कतेक नीक ई अछि मिथिला पेंटिंग आ मधुबनी पेंटिंग के जे गप करै छी लाल बहिन, तऽ बहुत महीन सा अंतर अछि, जेकि मधुबनी पेंटिंग ब्रश आ नीब के काज होइत अछि एहिमे बेसी, आ अपन मिथिला पेंटिंग में नीब के बेसी काज होइत अछि, पातर पातर कचनी वाला काज होइत अछि, तैं अपन बहिन सब बहुत अपना सब नेनपोने से देखै छी अंगना में अरिपन के नाम आ बनबै छै, दादी बनबै
1: छै, कोनो पावन होय त अपना सब के देखियौ ने, पूजे होय या कोनो, त अपना सब के
0: बिना अरिपन के त कोनो काज नहि होइत अछि, त वह अरिपन के जे छै बस उतारे के छै, वह अरिपन जखन कहै छै ने जे कि जो हम सब कहै छी जे कि हमरा त मेहंदी नै लगाबाबे, त अहाँ के अरिपन देबो आबैये तऽ मेहंदी केना नहि लगाबो आबैये, अहाँ के पेंटिंग करो आबैये तऽ ई केना, जखने अहाँ के एकटा काज आयल तऽ सब मिलैत जुलैत
1: अछि, अभ्यास के चीज छै, कनी अभ्यास करबे चारि दिन के हाथ अपने बैस जाय,
0: बहुत नीक सब आबि सकैत अछि अपन बहिन सबके,
1: आ क्षेत्र में अपन नाम कमा सकै छथि हमरा बहिन सब,
0: जो एकटा बहिन सीखै छथि तऽ ओ दसटा
1: बहिन के सिखबै छथि,
0: सक्षम बना दै छथिन जे कि अहूँ सीखू,
1: अपन पैर पर ठाड़ भऽ जाओ, अपन हाथ पसारे के नहि आवश्यकता,
0: अपन गाम सब में देखै छियै जे आर्थिक रूप से जे कम आर्थिक रूप से कमजोर बहिन सब छथिन, जो कोनो समस्या लऽ कऽ बहिन लग जाइ छथिन जे देखू हमरा उपार्जन के किछु साधन नहि अछि, हम ओतेक शिक्षित नहि छी जे कोनो काज कऽ सकी, तखन यह मिथिला पेंटिंग अछि जे
1: घर बैसल
0: काज हुनका दै छनि।
1: तऽ देखियौ गप सब तऽ बहुत अइ, मोनी बहिन जे अपना सब भेटै छै तऽ गप करै छी, आब किछु रमन चमन सेहो हेबाक चाही ने बहिन लोकनिके, कनि मनोरंजन तऽ सेहो हेबाक चाही की, तहने ने काज करैमे मोन लगतनि।
0: ई देवी गीत सुनै छी।

0: तऽ कुमकुम झाके स्वरमे अखन अपना सब ई देवी गीत सुनै छी।
1: हाँ, आ बहुत सुंदर गीत सुनलहुँ। आशा करै छी हमर श्रोता लोकनिके सेहो खूब नीक लागल हेतनि। आ माँ जगदम्बा सबके एना प्रसन्न रखथुन, स्वस्थ रखथुन, इएह कामना। आ देखियौ मोनि बहिन, जहन स्वस्थके गप केलहुँ तऽ एखन देखै छी किछु क्षेत्रमे बाढ़ि से आबि गेलै आ किछु क्षेत्रमे आबऽके आशंका अछि।
0: जँ धीरे धीरे नदीमे पानि बढ़ऽ लागैत अछि, चौरमे पसरऽ लागैत अछि, तखने अपना सबके सतर्क भऽ जेबाके चाही।
1: आबऽ वला अइ तऽ ठेकानि कऽ राखी जे हँ हमरा सबके जगह क्षेत्रमे अबैये, तऽ उच्च ठामके चयन कऽ लेबाक चाही जे जहन आयत तऽ चलि जायब। दोसर अगर घरमे सामान सब जे किछु छै आवश्यक ओ सामानके राखि लेबाक चाही। ई नहि जहन पानि आबि जायत तहन तऽ नहि जा सकै छी,
0: एकदम
1: रास्ता बंद भऽ जाइए।
0: आ उच्च स्थानके जखन सोचि कऽ नियारि कऽ राखब जे जँ पानि बढ़ल

0: तो चेल जाए आजी आवश्यक समान एच दवाई एच
1: कागज पत्र जे वो सब समान के सुरक्षित रख ले जना किन को दू मंजिला घर छन तो ऊपर में सबटा समान रख ले नीचा में नहीं राखे ई सब घर में जना कि टॉर्च रखनाए आवश्यक भ जाइए मोमबत्ती रखनाए किया तो जहन पानी के समय रहिए तो लाइनो कट जाइए नहीं तो सब जे सुरक्षा के समान एक डंडा लाठी रखबा चाहिए घर में साँप कीड़ा सब आबि जाइए तो पानी पर जाए तो थाह के पानी कते है आ धियापुता छोट छोट बच्चा के पानी मतलब में नहीं जाए देवक चाहिए सब
0: ध्यान रखब सतर्क रहब जागरूक रहब आ लाल बहिन अपन सबके कार्यक्रम घर आंगन में जे प्रायोजित कार्यक्रम है पारा मेडिकल है पारस ओहो सुनबा के भेंट भ गेल
1: तो आओ सुने से हमरा लोकन ये कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: नमस्कार, मैं हूँ राजेश और एक बार फिर से बुधवार का दिन है और राजेश आ गया कार्यक्रम पैरा मेडिकल है पारस लेकर। इस कार्यक्रम की जैसे आप सबों को आदत पड़ गई है मुझे भी आदत पड़ गई है। बुधवार अभी अभी तो गया था और अभी अभी फिर आ गया और हमें इंतजार होता है इस कार्यक्रम का क्योंकि करोड़ों युवा साथियों और उनके माता पिता से बात करने का मौका जो मिलता है बताने का मौका मिलता है कि टेक्निकल पढ़ाई कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़ जाइए। आज आगे कुछ भी बोलूं उससे पहले नीट में जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की है उनको कोटि कोटि बधाई, बहुत बहुत बधाई आप सबों को जिन्होंने नीट की परीक्षा क्वालिफाई कर ली है और अब इंतजार कर रहे हैं कि काउंसलिंग शुरू हो और अपना मन पसंद हॉस्पिटल कॉलेज मिल जाए जहां से पढ़ाई की जाए और समाज में एक मुकम्मल डॉक्टर बनकर निकलें और समाज की सेवा करें, नाम शोहरत पैसा सब कुछ मिल जाए। डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी हमारे साथ बैठे हैं। हाँ चलिए सबसे पहले हम उनको बुलाते हैं कार्यक्रम में और स्वागत करते हुए कहते हैं कि जिनका हो गया नीट में उनकी भी जय जय, जिनका नहीं हुआ नीट में उनकी भी जय जय। डॉक्टर साहब
4: अच्छा प्रयास किया उसका सफलता अच्छी रही
5: लेकिन बहुत सारे लोग निराश भी हैं उनसे क्या कहना चाहिएगा?
4: देखिए निराशा का तो कोई मतलब नहीं होता है, यही मैं कहूँगा कि सफलता की तैयारी जो होती है वो अच्छी तरह से नहीं हुए इसलिए असफल हुए, थोड़ी जहाँ कमियाँ दिखी आपको उसको फिर से मेंटेन कीजिए। और एक बात और कह दूं राजेश
5: जी
4: कि हमें आगे वो ले जाता है जो हम नहीं कर पाए थे, जो कर पाए वहाँ तक जो क्वेश्चन को हल कर पाए वो तो हल हो ही गया, जो क्वेश्चन को हमने हर प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए और किसी कारण से हम उसको समझ नहीं पाए थे तो वो हमको आगे ले जाएगा, उस पर केंद्रित करना
3: मतलब
4: चाहिए।
3: सोचो विचार करो कि कहाँ गड़बड़ी हुई है और उस पर ध्यान केंद्रित करो। जी हाँ डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कही है लेकिन डॉक्टर साहब एक बात हम यहाँ पूछना चाहते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपसे कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत लंबी होती है ना, होती है, लेकिन जो लोग 3-4 साल से लगे हैं और कुछ नहीं हो रहा है और स्कोरिंग भी इतनी अच्छी नहीं हो रही है तो क्या उन्हें दूसरा ऑप्शन नहीं चुनना चाहिए?
4: बिल्कुल बिल्कुल, वैकल्पिक रास्ता भी चुनना चाहिए। वैकल्पिक शिक्षा बहुत सारे आ गए हैं जिसमें पैरामेडिकल का शिक्षा है, नर्सिंग का शिक्षा है, फिजियोथेरेपी का शिक्षा है
5: जी।
4: तो ये सब शिक्षा है जिस पर उनको ध्यान देना चाहिए, केंद्रित हो जाए।
3: बिल्कुल सही है कि हम जो सोचते हैं कभी कभी ऐसा नहीं होता। क्या हुआ कि नीट में आप नहीं क्वालिफाई कर पाए लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है ना कि क्वालिफाई करके भी अड़चन खड़ा हो जाता है और आपका दाखिला नहीं हो पाता, आप जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता। तो इससे निराशा नहीं होनी चाहिए, आपको एक दूसरा ऑप्शन खोजना चाहिए और इसी स्थिति में हमारा ये कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस आपके लिए बहुत सारे आयाम खोलता है, दिखाता है कि भैया आप यहाँ यहाँ भी अपना करियर बना सकते हो। जैसे पैरामेडिकल के क्षेत्र हैं उसमें बहुत सारे स्ट्रीम है, फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, इसके लैब टेक्नीशियन है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसके अलावे ANM GNM का कोर्स है, इसके अलावे जो आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो नर्सिंग में OT में कहीं भी आप BSc कर सकते हैं, अपने लिए रास्ता तलाश सकते हैं। और हेल्थ सेक्टर में जो समाज सेवा की भावना से आप पढ़ना चाहते हैं ना उसको पूरा कर सकते हैं। बहरहाल ये कार्यक्रम चल रहा

0: है पैरा मेडिकल है पारस और मैं हूं आपका अपना राजेश। डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी भी हमारे साथ बने रहे हैं और ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से, जहां का नंबर है नोट कर लें, खास करके वैसे स्टूडेंट जिन्होंने नीट में क्वालिफाई किया है, आप पता कीजिए आपके लिए क्या क्या ऑप्शन है, और जो नहीं कर पाए हैं तो उनको तो शर्तिया हाँ ध्यान देना चाहिए। प्रोफेशनल पढ़ाई, टेक्निकल पढ़ाई पर, हेल्थ सेक्टर में तो टेक्निकल पढ़ाई की कोई कमी ही नहीं है। नोट कीजिए नंबर 9162413233, 9162413233, और दूसरा नंबर है 9155558888, 9155558888। और अब डॉक्टर साहब क्या रास्ते हो सकते हैं
1: जी कि अब इस बार जो जिसको हम लोग बहुत बच्चे लोग अवॉइड करते थे
2: क्या,
1: और ये फिजियोथेरेपी का कोर्स को
2: हाँ।
1: सरकार ने मान्यता दे दी है
2: हाँ।
1: और ये मेडिकल मतलब कंप्लीट मेडिकल फील्ड हो गया है।
2: क्या बात है,
1: कंप्लीट मेडिकल फील्ड हो गया है
2: हाँ।
1: और अभी जो है इसके तरफ बच्चों का रुझान बहुत नहीं है
2: हाँ।
1: तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जैसे एलोपैथी था, MBBS हुआ, BMS हुआ, BHMS हुआ, BUMS हुआ, बैचलर ऑफ योगा हुआ, उसी तरह से ये बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हो गया है। सरकार ने निम्स इसको नोटिफिकेशन निकाल दिया है, अब ये उसी तरह का विंग हो जाएंगे, उसी तरह का रहेंगे। तो इसलिए मैं बच्चों को, उन बच्चों को कहूंगा कि जिसने मेडिकल फील्ड चुना था, किसी कारण से वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो इस फील्ड को ऑप्ट कीजिए। बहुत अच्छा फील्ड है और बहुत अच्छा स्कोप है, इससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब एक बात बताइए, चर्चा सुनी थी कहीं से मेरे कान तक ये खबर आई थी कि नर्सिंग और फिजियोथेरेपी जो है अब नीट में इसको भी इंक्लूड किया जा रहा है क्या?
1: हाँ, आगे से इंक्लूड किया जा रहा है।
2: किया जा रहा है
1: जी, बिल्कुल।
2: तब तो वही स्तर हो गया सामने, आगे ही बातें की, अब अगर नीट के थ्रू ही एडमिशन अगर होगा तो इसका स्तर तो ऐसे ही बढ़ गया। ये
1: बिल्कुल स्तर बढ़ जाएगा, और अगर इस संभवतः इस साल लागू करे या अगले साल लागू करे, लेकिन इसमें इसमें ढेर सारी जो आयाम है उसको जोड़ेंगे, और उसके साथ साथ इसका जो एडमिशन लेना भी, जैसे MBBS BMS टफ है, उसी तरह से ये भी टफ हो जाएगा
2: जी।
0: कार्यक्रम चल रहा है, पैरा मेडिकल है पारस, मैं हूँ राजेश, आपका अपना राजेश, आप हमारे एक्सटेंडेड विस्तारित परिवार का हिस्सा है और आपका हम भला चाहते हैं। बच्चे लाइन में फटाफट लग जाए, सरकारी प्राइवेट या खुद से व्यवसाय कर ले, और हमें ये मौका प्रोवाइड करता है हेल्थ सेक्टर कि हम खुद से अपना क्लिनिक खोल के बैठ सकते हैं, व्यवसाय करके बैठ सकते हैं। फिलहाल बातचीत चल रही है, हम नंबर बताएं कि अगर इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद कोई जानकारियां चाहिए करियर से रिलेटेड, तो आप इस नंबर को डायल करके खुद डॉक्टर प्रियदर्शी से ये नंबर ले सकते हैं 9162413233, और दूसरा नंबर 9155558888, और ये कार्यक्रम हमें आप तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, बहुत ही उम्दा संस्थान। हाँ, हम गए हैं, आपका राजेश गया है वहाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है, खुद का हॉस्पिटल है जहाँ आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, 24 आवर लाइब्रेरी की सुविधा है, लड़के लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधा है, खान पान की सुविधा है, बहुत ही उम्दा माहौल है कॉलेज का, आप जब चाहें डॉक्टर प्रियदर्शी से बात कर सकते हैं। फिलहाल चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।
2: पैरामेडिकल के कोर्सेज तो हैं ही, लेकिन फिजियोथेरेपी का कोर्स जो है ना, वो MBBS का सब्स्टिट्यूट हो सकता है और बहुत जल्दी उसको मान्यता मिलने जा रही है।
1: अच्छा, ये कैसा हाँ। ये फिजियोथेरेपी एक ऐसा कोर्स है
2: जी,
1: जो
2: पूरी जानकारी दीजिए ना, पूरी जानकारी दीजिए,
1: मैं इसको बता सकता
2: हूँ।
1: इसको ये कह सकता हूँ कि ये जो है, कहने का मतलब कि जैसे अगर सभी पैथियों में
2: हाँ।
1: ये एक ऐसा पैथी
2: अच्छा,
1: है,
2: सभी पैथियों में
1: हाँ। जितने भी हैं
2: हाँ।
1: एक ऐसा पैथी है जो सर्वांगसम है, सबके साथ चलने वाला है
2: हाँ।
1: जैसे कह सकते हैं कि सारे सब्जी बना लीजिए और उसमें नमक और हल्दी जैसा काम करता है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी काम करता है, विधा कोई भी हो, सबकी जरूरत है इसको, जैसे एलोपैथ वाले को भी जरूरत है, BMS वाले, BHMS, सबको जरूरत है, और सब लोग करने का मतलब कि इंडिपेंडेंट ये हो गया है, और इसको लोग जागरूक नहीं है, जागरूकता के अभाव में इसको लोग समझ नहीं पाए थे, इस विधा को समझ नहीं पाए थे और इसको पढ़ने में लोगों को दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अब जो है यह निश्चित रूप से

0: बहुत अच्छी विधा है और इसको पढ़ कर करके लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं।
1: एक बात बताए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ इसमें मिलता है?
0: जी हाँ बिल्कुल मिलता है। सरकार ने तो ये तो मैं पहले भी प्रोग्राम में आपको कहा था कि ये मील का पत्थर साबित हुआ है बिहार के लिए कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चला कर करके सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है।
2: चलिए हाँ, फिजियोथेरेपी में लड़कियों के लिए तो और भी उम्दा व्यवस्था है।
0: हाँ देखिए, अब लड़का लड़की की बात कहें तो इसमें क्या है कि फिजियोथेरेपी लड़कियां ज्यादा बेहतर करती है। क्यों ज्यादा बेहतर करती है कि आज की हमारी बिहारी मानसिकता आज भी है कि लड़के मेल डॉक्टर के पास फीमेल डॉक्टर फीमेल पेशेंट जो है पूरी तरह से नहीं अपनी बातों को कह पाती है और अपना जो रोग है उसको नहीं कर एग्जिबिट कर पाती है
1: जी।
0: और अगर वही फीमेल डॉक्टर रहती है तो उसके पास सभी बंधन मुक्त हो जाता है और वो करते फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा से करा सकती है।
1: तो ठीक तो है, अगर मान लीजिए लड़के ने किया, आगे चल के फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट लड़की से शादी कर ले तो दोनों कम्बाइंड अपना अपना इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हो जाएगा, व्यवसाय शुरू हो जाएगा।
0: थोड़ा
1: सा जीवन में हंसना भी चाहिए डॉक्टर साहब, हंसना भी चाहिए। एक तो नीट का रिजल्ट आया है, जिनका हो गया वो बल्ले बल्ले, जिनका नहीं हुआ है बेचारे परेशान है। जो नीट में आके किसी कारण से हाँ, फिजियोथेरेपी बहुत एक अच्छा करियर हो सकता है। डॉक्टर साहब कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि जिनका MBBS में नहीं हुआ तो फिजियोथेरेपी किसी से कम नहीं है, ऑप्ट किया जाए। अब एक सवाल ध्यान से सुनिएगा डॉक्टर साहब, और पूरा बिहार सुन रहा है, उन बच्चों के लिए, उन युवा साथियों के लिए बताइएगा कि जो नीट में नहीं कर पाए या किसी कारण से एडमिशन नहीं ले पाए, आपके यहाँ श्रीराज हाँ इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल में आपके यहाँ है फिजियोथेरेपी का कोर्स?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: उनके लिए क्या सुविधाएं आप दीजिएगा, अगर वो आके दिखाए कि मैं नीट क्वालिफाई हूँ लेकिन मैं नहीं ले पा रही हूँ या पा रहा हूँ एडमिशन?
0: अगले बार भी मैं कहा था, इस बार भी मैं कहता हूँ कि नीट क्वालिफाई जो बच्चे रहते हैं
1: हाँ,
0: जो नीट क्वालिफाई बच्चे रहते हैं जिसको हम 10% की अपने फी में हमेशा कम कर देते हैं, और इस बार भी मैंने वही सोचा है कि 10% अपने फी में जो नीट क्वालिफाई रहेंगे उनको 10% हम अपने फी में कम करते हैं
1: जी।
0: और हमेशा से रहा, इस बार भी ऐसा ही रहेगा।
1: अच्छा, आपके यहाँ तो कुछ नीट क्वालिफाइड लोग आके पढ़ाई भी कर रहे हैं पिछले और उसके पिछले साल वाले लोग?
0: सभी बैच में है
1: हाँ।
0: बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे। इस बार तो एक बच्चे ऐसी ली है जिसको 450 नंबर है
1: जी।
0: लेकिन उसको कहा कि शायद सर नहीं होगा अगले साल, मैं चुक गया था, इस बार नहीं चुकूंगा
1: हाँ।
0: और ले चुका है, एडमिशन ले चुका है।
1: सोचिए, तो चिंता की कोई बात नहीं है, डॉक्टर साहब की बात को मानिए, और डॉक्टर साहब से ही कहते हैं अपना नंबर बताने के लिए कि आप उस पर बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब सीधे सीधे आप अपना खुद का दोनों नंबर आराम से बताइए।
0: अच्छा ठीक है, ठीक है भाई। 9162413233 एक नंबर ये है।
1: रिपीट कीजिए इसको,
0: इसको रिपीट करें।
1: मिलाएगा कैसे लोग?
0: 9162413233 ये नंबर हुआ। दूसरा नंबर है 9155588888
1: 9155588888 ये नंबर है। देखिए, जहाँ रास्ता खोजिएगा रास्ता मिल जाएगा, एक रास्ता बंद होता है तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। डॉक्टर साहब का ये नंबर आपका रास्ता खोलेगा, एक बार बात कीजिए। घर में बैठने से, निराशा के चादर को ओढ़ने से कुछ भी नहीं होता है, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और जिंदगी का मजा लीजिए। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारा कुछ करना है जिंदगी में, है ना? क्या गलत बोल रहे हैं डॉक्टर?
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और बच्चों के साथ साथ मैं किसी उन गार्जियन को भी कहूंगा कि बच्चों पर दबाव ना डालें
1: हाँ।
0: और इस तरह के कोर्स अगर आप करते हैं तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको मतलब मानसिक रूप से प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि ये कोर्स नहीं करता, ये कोर्स करता। जो कोर्स वो करना चाहता है उसके लिए बेहतर है और भविष्य में वही काम देगा।
2: थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हमारे स्टूडियो में, इस कार्यक्रम के अंदर ढेर सारी बातें की। पूरा बिहार पॉपुलेशन के बीच हमारा ये कार्यक्रम पहुंच रहा है, जबकि झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, नेपाल में, हर जगह ये कार्यक्रम पॉपुलर है। और सिर्फ राजेश हवा में बात नहीं कर रहे, आपके फोन कॉल्स आते हैं। बताइए, नाम बता दें, आज वक्त नहीं, अगले एपिसोड में पूछिएगा, हम बता देंगे किसका किसका फोन कॉल आता है ना। चलते हैं, हेल्थ सेक्टर में करियर तलाशिए, आपके लिए एकदम कंफर्टेबल जोन है, कहीं से भी कोई चिंता की बात नहीं। हम तो कहते हैं पढ़ते पढ़ते हाँ

0: पढ़ते पढ़ते रोजगार मिल सकता है, आप कमाने भी लग सकते हैं। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, लेकिन टेंशन में मत रहिए। टेंशन ही आने से कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। एकदम हंसते खेलते खूब खाइए, खूब मजा कीजिए, पिक्चरों देख लीजिए, लेकिन करियर के बारे में सिंसियर रहिए, नहीं तो किसी के माता पिता ने जीवन भर साथ नहीं दिया है। चले नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
2: तो लाल बहिन अखन अपना सब सुनित छलूं है पारा मेडिकल है पारस प्रायोजित कार्यक्रम। आप देखिए रहल छी जी कि कार्यक्रम में आप अपना सबके समय भ गेल अछि जे कि घर आंगन के समेटी आ खेती पथारी दिस किसान भाई के लऽ चलियन आ खेती गृहस्थी में किसान भाई के स्वागत करै छियन। सबसे पहले
3: स्वागत करै छियन, नमस्कार करै छियन। आ देखियो किसान भाई लोकन तो सब दिन अपन किछ ने किछ काज करैत रहै छथि, कखनो सब हाथ पर हाथ धऽ कऽ तऽ नहि बैसै छथि। जँ एखन तऽ एहन समय जँ सबके आसमान दिस टकटकी लागल रहै छनि जे कखन वर्षा हैत, तऽ जे किसान भाई लोकन रोपनी कऽ लेने छथि से तऽ ठीक छै, आ जिनका बचल छनि तऽ ओ कखन रोपब, किछु धान रोपा गेलै आ किछु नहि। तँ आइ जे अपना सब चर्चा करब,
2: पटौनी बड़ आवश्यक अछि अपन सबके खेती मे। जँ सही समय पर पानि भेट जाइत अछि खेती मे तऽ उत्पादन एकदम नीक होइत अछि।
3: आ देखियो पहिलका समय छलै जे समय पर सही समय पर भेट जाइ छलै, मुदा आब तऽ देखते छियै मानसून तऽ धोखा दऽ दैया, समय पर पानि नहि होइया, तखन जेना आब धान के खेत मे लागलै आ धान मे पानि बेसी लगैया, आवश्यकता पड़ैया, तहन तऽ अहाँके पटौनी करहे पड़त। तऽ एहि तरह सँ जे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अछि जे चलाओल गेल अछि,
2: जुलाई 2015 को शुरू भेल ई योजना, आ अहि 10 वर्ष सँ बेसी समय भऽ गेल अछि। आब अपना सब ओतऽ खेती मे जे पटौनी प्रेरित परिवर्तन के आगू बढ़ेन खूब बढ़ोने अछि, ई योजना सुनिश्चित सिंचाई के विस्तार आ खेत मे पानिक उपयोगक कुशलता मे सुधार के संगे संवहनीय जल संरक्षण के बढ़ावा सेहो दैत अछि। एकरा संगे लाल बहिन ई वर्षा बरखा वाला जे पानि होइत अछि
3: ओकरा संग्रह करैए,
2: जल संचय सिंचन के अंतर्गत खेतक स्तर पर पानिक कुशल वितरण के मजबूत करैत अछि। ई जे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अछि, सब खेत हरेक खेत के पानि ई लघु सिंचाई सतही आ भूजल दुनू के माध्यम से नव जे होइत अछि नव स्रोत के सृजन आ सुनिश्चित पटौनी के अंतर्गत खेती योग्य क्षेत्रक विस्तार पर केंद्रित होइत अछि ई योजना। जल ग्रहण क्षेत्र भऽ गेल वाटरशेड विकास, अहि के अंतर्गत समेकित जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के माध्यम से वर्षा सिंचित आ एकर जे छै बंजर माटि के उत्पादक क्षमता बढ़ाओल जा रहल अछि अहि के माध्यम से।
3: ठीक है, अहाँ कहलहुँ। आ वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ई फब्बारा पटौनी प्रणाली के अपेक्षा सँ एकटा पैघ बदलाव आयल अछि। पटौनी के एहि नव प्रणाली के संसाधन के व्यवहारक क्षमता के बेहतर बनेबाक आ खेती मे नतीजा के उल्लेखनीय सुधार एहिसँ भेल।
2: फब्बारा पटौनी जे कहलहुँ अहाँ, ई फब्बारा पटौनी अपनेला के बाद किसान भाई सबके फसिलक उपज जे अछि से 25-30% तक के वृद्धि भऽ गेल अछि। एहि प्रणाली सँ फसिलक एक समान बढ़त आ जड़िक बेहतर विकास सुनिश्चित कयल गेल अछि।
3: पानिओ एहिमे कम लगैए,
2: आ प्रति बूंद बेसी फसिल, एहि प्रयास के आगू बढ़ेबा के लेल खेतक स्तर पर सूक्ष्म सिंचाई तकनीक के माध्यम सँ कुशल इस्तेमाल के बढ़ावा दैत अछि। आइ अपना सब चर्चा जे कऽ रहल छी अखन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के,
3: तऽ एहि माध्यम सँ किसान भाई लोकनि अपन से जिनका एकर किछु पात्रता छै निर्धारित, जकर लाभ हम किसान भाई लोकनि उठाबैत। आ मुनि बहिन आब की विचार, किछु
2: किसान भाई के मनोरंजन दिस चलियनि सुनाबै छी।

0: एकदम एकदम आप तो सावन मास अभी गेल लाल बहन अपन किसान भाई सबके कजरी खूब निक लागल हेते
1: जेहने बेर ओहने गीत
0: विभा सिन्हा के स्वर में गाओल आ लागले लागले किएक ने अपना सब किसान भाई के कृषि गतिविधि पर आधार

0: हरित कृषि सूचना सुना दी छिन्न, वाचन आ संकलन छिन्न सविता कुमारी के, प्रस्तुति छिन्न असद दाऊद के।
1: आजुक कृषि गतिविधि के संग हम उपस्थित छी लाल महिन, नव नव जानकारीक संग। मखान उद्योग में स्वच्छता पर जोर देल गेल। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा व भारतीय गुणवत्ता परिषद के संयुक्त तत्वाधान में किसान समृद्धि गुणवत्ता मंथन कार्यक्रम भेल। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य छल मखाना क्षेत्र में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाएब, जमीनी चुनौती के पहचान करब ओ किसान वैज्ञानिक उद्यमी ओ नीति निर्माता के बीच संवाद स्थापित कर गुणवत्तापूर्ण ओ प्रतिस्पर्धी मखाना मूल्य श्रृंखला के लिए कार्य योजना तैयार कयल गेल छल। कार्यक्रम के शुभारम्भ राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर नचकेत कोतवाली वाले ओ भारतीय गुणवत्ता परिषद के संयुक्त निदेशक अमित सिंह केलन। डॉक्टर नचकेत कोतवाली वाला कहलन जे मखाना मूल्य श्रृंखला के सब स्तर पर गुणवत्ता बनाकर रखला से किसान लोकन के नीक दाम भेटबाक संग भारतीय मखान के विश्वसनीयता सेहो बढ़त। ओतबे नहीं, ओ कहलन कि मशीनीकरण से श्रम साध्यता कम होयत, स्वच्छ ओ वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुनिश्चित होयत, ओ निर्यात योग्य गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार कयल जा सकैत अछि। ओ जनतम देलनि जे मखाना उद्योग में स्वच्छता ओ गुणवत्ता मानक के पालन पर जोर देलनि। अमित सिंह भारतीय गुणवत्ता परिषद के उद्देश्य ओ गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम के जानकारी दैत कहलनि जे गुणवत्ता संस्कृति मानकीकरण ओ क्षमता निर्माण के माध्यम से मखाना क्षेत्र के बेसी प्रतिस्पर्धी बनाकर किसान लोकन के आय और निर्यात के बढ़ाओल जा सकैत अछि। जिला उद्यान अधिकारी नीरज कुमार झा, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड ओ सरकारी योजना प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर ISC अनुशंसित उत्पादन पद्धति अपेडा के AGM निरंजन रेड्डी, निर्यात गुणवत्ता ओ सीफेट ओ लग लुधियाना के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर RK विश्वकर्मा, मखाना प्रसंस्करण में मशीनीकरण के भूमिका पर विचार रखलन। किसान संवाद सत्र के संचालन वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार केलन। एहि में किसान ओ उद्यमी लोकन सेहो अपन अपन विचार रखलन। एतबे नहि, आब एखन खरीफ धान में खर पात के नियंत्रण पर सेहो ध्यान राखब आवश्यक भ गेल अछि। कारण नीक उत्पादन के वास्ते आवश्यक अछि जे खर पात के क्षति से कोना बचाबी। किसान भाई बहिन लोकन, धानक फसिल में कमौनी निकौनी कयल जाइत अछि। पहिल बेर कमौनी निकौनी रोपनी के 20 से लऽ कऽ 25 दिनक बाद ओ दोसर बेर 40 से 45 दिनक बाद खर पात के नियंत्रण कयल जा सकैत अछि। एहि लेल किसान भाई लोकन के से साकांक्ष रह पड़तनि। एकटा दवाई पेंडीमेथिलीन जे 30% ईसी खर पतवार नाशी इमरजेंस खर पात उगला से पहिने एकर 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से बाव कैला के 3 से 5 दिन के अंदर 6 से लऽ कऽ 7 लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव करबाक चाही। दोसर एकटा दवाई बुटाक्लोर जे 50 ईसी ओ रोपनी के 2 से 3 दिन 72 घंटा के भीतर 2.5 लीटर दवाई में 6 से लऽ कऽ 7 लीटर पानी में ओकरा घोर कर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करबाक चाही। या 50 से 60 किलोग्राम सुखल बाउल में मिलाकर ओकरा छिड़क सकै छी, छिट सकै छी। छिटबाक काल में खेत में हल्लुक पानि लागल रहक चाही। तेसर एकटा दवाई प्रेटिला क्लोर, ई 50 ईसी रोपनी के 2 से 3 दिन के भीतर 1.25 लीटर के मात्रा के 6 से लऽ कऽ 7 लीटर पानि में घोर कर छीट देबाक चाही। एकटा और किसान भाई लोकन दवाई ऑक्सीफ्लोर

0: फेन 23.5 EC जीरो टीलेज वा सीड ड्रिल विधि सँ सीधा बाउ कैला वाला फसिल में 3 से 5 दिनक भीतर 650 मिलीलीटर के मात्रा 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव कऽ सकैत छी। बिस्पायरी बैक सोडियम ई 10 EC खर पतवार नाशी दवाई खर पात उगला के बाद एकर व्यवहार कयल जाइत अछि। 200 से 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के दर से रोपनी के 15 से 20 दिन के भीतर 700 से 800 लीटर पानी में मिलाकर एकरा छिटबाक चाही। संगे खर पतवार नाशी रसायन के प्रयोग में सेहो सावधानी रखबाक चाही। बस आब एतबे, फिर अगला बुद्धि को हम उपस्थित रहब नव नव जानकारी संग।
1: तो किसान भाई अखन अपना सब सुनित छलू हैं कृषि गतिविधि पर आधारित कृषि सूचना वाचन आ संकलन सविता कुमारी के छलन। आब लागले लागले एतिक निक निक जानकारी जखन किसान भाई के दिलियन अपना सब लाल बहिन, तो किएक ने मनोरंजन सेहो
0: निश्चित दिन
1: तो सुनित छी गीत।

0: मनी बहन अपना विदुषी शारदा सिन्हाके स्वरमे ई नचारी सुनै छल हँ। आ देखियौ ठीक हुनका बिना के पार उतरि सकैया महादेव बिना। आ ओनाहो आब तऽ देखै छियनि महादेवके तऽ ओना सब दिन हुनके दिन छनि, मुदा आब तऽ साओन महिना चढ़ि गेल। आ देखियौ जे महादेवके तऽ कांवर सँ लऽ कऽ घर घर आ सब सोमवारीके तऽ आब शिवालयमे कते भीड़ रहत,
1: एकदम एकदम भीड़ रहत, सब अपन अपन पूजा पाठमे
0: लागल रहत आ सबके कल्याण करय वाला तऽ वएह महादेव छथि। आब देखियौ आ किसान भाई लोकनिके कल्याण करय लेल मौसम छै की, तऽ मौसम की कहै छै से पहिने अपन किसान भाई लोकनिके कहि दियौ, तहन फेर आगू गप सप हेतै।
1: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से जे मौसम के जानकारी भेटल अछि, ई 26 जुलाई तक के मौसम अछि। पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के अधिकांश जिला में नीक वर्षा होय के संभावना नहीं अछि, हालांकि किछु स्थान पर मध्यम से हल्का वर्षा भ सकैत अछि। एहि दौरान तापमान में गर्मी से कनिक राहत भेट सकैत अछि। बेसी अधिकतम तापमान जे छै बेसी जगह पर से 30-33 डिग्री सेल्सियस आ न्यूनतम 25-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक संभावना छै। आ नमी जे छै हवा में बेसी नमी बनल रहत, भिनसर में सापेक्षिक आर्द्रता 85-95% आ दुपहरिया में जे छै से 50-60% रहबाक संभावना अछि। मुख्यतः पूर्वा हवा 5-15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलवा के संभावना बन रहल अछि।
0: तो ई छै हमर सबके मौसम पूर्वानुमान। आ मौसम के हिसाब से किसान भाई लोकन जहन अपन काज समेट लै छथि तऽ हुनका बहुत ऐसा मतलब ई होइ छनि, आराम होइ छनि। आ जँ नहि बुझल रहै छनि तऽ वएह पोभा होइ छनि जे कोन काज पहिने करू कोन काज नहि करू कोनो काज समेटू, तऽ मौसमके जानकारी बड़ आवश्यक अछि। आ जँ कहबै कोनो छिटपुट जतऽ बरखा हैत या माने बिजली चमकै वज्रपात हुएके सम्भावना हुए तऽ किसान भाई लोकनि ओहि बेरमे खेतमे नहि रहथि, ओ अपन घर आबि जायत, कतहु उच्च जगहपर शरण लऽ लेथि, कतहु मुदा सबसे पहिने तऽ अपने रहता, तहन आब हमर सबके कार्यक्रम खेती गृहस्थी समेटबाक बेर भऽ गेलै, तऽ आब मुनि बहिन एकरा समेटी आ किसान भाई लोकनि सँ चलबाक आज्ञा लै छी। नमस्कार मुनि बहिन।

0: अरे मेरा वोटर आई कार्ड घर पर रह गया, अब क्या मैं मतदान नहीं कर पाऊंगा?
1: क्यों नहीं, पहचान के और भी कई मान्य विकल्प है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त बैंक या डाकघर पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, पैन कार्ड, सेवा पहचान पत्र, एमपीआर स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, एमएलसी की आधिकारिक पहचान पत्र, आयुष्मान भारत या श्रम मंत्रालय योजनाओं के स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड तथा यूडीआईडी कार्ड दिखाते भी मतदान किया जा सकता है।
0: मतलब वोट जरूर दे सकता हूँ?
2: बिल्कुल, पहचान पत्र की वजह से आपका वोट नहीं छूटना चाहिए।
3: 182 बांकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 में मतदान तिथि है 30 जुलाई 2026। मतदान के दिन मान्य पहचान दस्तावेज साथ रखें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
4: कोई मतदाता ना छूटे।
5: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
6: गन्ने की खेती अब सिर्फ फसल नहीं, बनेगी आपकी नई पहचान और बेहतर कमाई का आधार।
7: बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग की बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत अब गुड़ उत्पादन इकाई की स्थापना पर मिलेगा पूंजीगत लागत का 50% तक अनुदान।
8: क्षमता के अनुसार 6 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता का लाभ उठाइए।
7: आज ही केन केयर पोर्टल ccs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि है 25 जुलाई 2026। गन्ना उद्योग विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी।
9: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: और इस गीत के बाद
12: छाया की

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। पेपर लीक मामले को लेकर पटना में छात्र संगठनों ने निकाला विरोध मार्च, सुरक्षा बलों ने लोक भवन घेराव के प्रयास को किया नाकाम। बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक समेत 13 विधेयक विधानसभा में पारित। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार के छात्रों को राज्य में ही मिलेगा बेहतर उच्च शिक्षा का अवसर। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे की स्थिति बने रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मानसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो अपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर आज राजधानी पटना में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से वामपंथी दलों के छात्र संगठन शामिल थे। एक रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों ने आज पटना के गांधी मैदान से लोक भवन तक विरोध मार्च निकाला। मार्च के दौरान कई स्थानों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झड़पें भी हुईं। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इसके बाद प्रदर्शनकारी लोक भवन और लोक सेवक आवास तक बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि सुरक्षा बलों ने इस प्रयास को विफल कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
2: पेपर लीक मामले को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर नीट परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बिहार के छात्रों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। छात्रों का कहना है कि पेपर लीक का विरोध सही है, लेकिन विरोध के नाम पर हिंसा और राजनीति कतई ठीक नहीं है।
3: नीट का पेपर लीक हो गया, अगर ये उस मामले में है तो मैं उसका समर्थन करूंगी, लेकिन जिस तरह अभी प्रोटेस्ट चल रहा है बिल्कुल पॉलिटिकल रिलेटेड लग रहा है, तो उसके रिलेटेड मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ।
4: हमें तो तब तक अच्छा लग रहा था जब तक ये पेपर लीक को लेके हो रहा है या फिर फेयर एग्जामिनेशन को लेके हो रहा है, बट अगर ये पॉलिटिकल इश्यूज या फिर रिलीजन से जुड़ रहा है तब फिर मैं इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ।
5: अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो धीरे धीरे पॉलिटिकल साइड में जा रहा है, इससे पहले ये पूरे एजुकेशन रिलेटेड था, ये एकदम सही था, लेकिन अब धीरे धीरे ये पॉलिटिकल होता जा रहा है, ये एकदम सही नहीं, मैं इसका समर्थन नहीं अभी करूंगा।
0: विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज 13 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026, बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 प्रमुख हैं। विधानसभा में बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य छात्रों को राज्य में ही बेहतर उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है।
6: बिहार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स के माध्यम से लाखों बच्चे दूसरे राज्य में हमारे पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहा भी है कि एक यूनिवर्सिटी के हमसे उनके संस्थापक मिले, उन्होंने बताया कि जालंधर में लवली यूनिवर्सिटी में 11,000 बच्चे बिहार के पढ़ रहे हैं, अमेठी में लगभग 30,000 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार में इन्वेस्टमेंट हो, बिहार में लोग आकर यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोले और बिहार के बच्चों को बिहार में रहकर

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: पढ़ने का अवसर मिले, इसलिए इसमें संशोधन लाने का काम किया गया।
1: विधानसभा ने शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया। विज्ञान प्रावैधिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी ने सदन में विधेयक पेश करते हुए इसके प्रावधानों से अवगत कराया। विधानसभा में आज बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य पंचायतों को सशक्त बनाना और उनकी आय में वृद्धि करना है। श्री प्रकाश ने बताया कि विधेयक के तहत ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में होर्डिंग और बैनर जैसे विज्ञापनों पर शुल्क लगाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों के लिए नक्शा स्वीकृत कराने को अनिवार्य करने का अधिकार दिया गया है।
2: ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज हम लोग देख रहे होंगे, शहर के ही भांति बड़े बड़े अपार्टमेंट का निर्माण हो रहा है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। आज के समय में जो भी निर्माण हो रहा है अनरेगुलेटेड तरीके से हो रहा है, ये सभी चीजें हो सके इसके लिए एक प्राधिकरण की व्यवस्था की जाएगी, ताकि जो भी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है पंचायतों के क्षेत्रों में उनसे संबंधित जो भी नक्शा है उसको पास कराने की व्यवस्था हो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था हो।
1: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने सदस्यों की सहमति से इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किए जाने की घोषणा की।
3: प्रश्न है कि बिहार पंचायत असम विधेयक 2026 स्वीकृत हो, जिसके पक्ष में हाँ कहें जो विपक्ष में ना कहें, मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, बिहार पंचायत असम विधेयक 2026 स्वीकृत हुआ।
1: इससे पूर्व प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने सदन में कम बारिश से किसानों की हो रही समस्या का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार किसानों के हितों को लेकर चिंतित है और सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जरूरत होने पर किसानों को डीजल अनुदान भी दिया जाएगा।
0: माननीय सदस्यों की चिंता है कि कम बारिश हुई है और लोगों को दिक्कत हो रही है, हम लोग जो किसान भाई हैं, इसलिए हमने दो तरह की व्यवस्था सरकार की है। एक तो 6 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक पर्याप्त बिजली हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि सभी जगह किसानों को उनके खेत में पानी पहुंचाने का काम कर सके। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, जिस जगह भी सुखाड़ की स्थिति होगी वहां डीजल अनुदान देने का काम सरकार तुरंत करेगी।
1: विधान परिषद में आज की कार्यवाही के दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सत्ता पक्ष के सदस्यों की टीका टिप्पणी को लेकर जोरदार बहस हुई। बाद में सभापति अवधेश नारायण सिंह के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। आज की कार्यवाही में विभिन्न विधेयकों पर चर्चा की गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पश्चिम चंपारण समेत राज्य के उत्तर पूर्व और उत्तर दक्षिण भागों में कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
5: दिनांक 23 जुलाई को राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पटना, नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया समेत राज्य के दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की आशंका व्यक्त की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मधेपुरा जिले के पुरौनी में

0: सबसे अधिक 64.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सुपौल जिले में कोसी नदी के जलस्तर में कमी आई है, हालांकि नदी के तटबंधों पर भारी दबाव को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है। एक रिपोर्ट।
1: नेपाल स्थित कोसी बराज से आज शाम 4 बजे तक 1,73,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया, जबकि नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र बराह से 1,11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नदी के जलस्तर में कमी के बावजूद तटबंधों पर भारी दबाव है। इधर मौसम विभाग से मिल रही भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर भी प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। जिलाधिकारी सावन कुमार ने पूर्वी कोसी तटबंध और अस्पड़ों का निरीक्षण किया। उन्होंने अभियंताओं और विभागीय कर्मियों को तटबंधों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी।
0: कटिहार जिले में लगातार बारिश के कारण महानंदा और अन्य नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इससे कई इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: जिले में लगातार बारिश के कारण गंगा, महानंदा, कोसी और बरंडी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार महानंदा नदी के जलस्तर में कई स्थानों पर 55 सेंटीमीटर तक की वृद्धि दर्ज की गई है। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण तटीय क्षेत्रों में कटाव से लोगों में भय का वातावरण बन गया है। प्रशासन ने कटाव प्रभावित इलाकों में बाढ़ निरोधात्मक कार्य तेज कर दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के नए भवन में विभिन्न निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं, जिला औषधि भंडार गृह तथा राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में नई चिकित्सा सेवाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने पटना में 46,26,00,000 रूपये की लागत से नवनिर्मित 3 गंगा घाट, भद्र घाट, नौजर घाट और महावीर घाट का लोकार्पण भी किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज पटना में विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम के पास मार्च पहुंचने पर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोगों को हल्की चोट लगी है। नालंदा विश्वविद्यालय और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के बीच आज नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य विज्ञान आधारित सतत विकास, प्रौद्योगिकी प्रसार, कौशल विकास और वैज्ञानिक जनसंपर्क को बढ़ावा देना है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और CSIR के महानिदेशक डॉ एन कलैसेल्वी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की पूर्व संध्या पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने रेडियो के प्रसारण को डिजिटल युग में भी प्रासंगिक बताया है। उन्होंने कहा कि रेडियो प्रसारण समाचार और मनोरंजन के स्रोत होने के साथ ही सामाजिक परिवर्तन के सूत्रधार हैं। राज्य के दो तेज गेंदबाजों वासुदेव प्रसाद और रिंकल तिवारी का चयन MRF पेस फाउंडेशन के लिए हुआ है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों उदीयमान खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष MRF कैंप के लिए देश के चुने गए दोनों खिलाड़ी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। अरवल के सिविल सर्जन के साथ मारपीट की घटना के विरोध में सदर अस्पताल की OPD सेवा आज पूरी तरह ठप रही। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ भाषा के आह्वान पर चिकित्सकों ने OPD सेवा का बहिष्कार किया। जहानाबाद जिले के कृषि कार्यालय में आज प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया कि 980 मीट्रिक टन यूरिया और 200 मीट्रिक टन DAP खाद उपलब्ध है। रोहतास जिले के धौटाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आकर एक नर्सिंग छात्र की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। पेपर लीक मामले को लेकर पटना में छात्र संगठनों ने निकाला विरोध मार्च। सुरक्षा बलों ने लोक भवन घेराव के प्रयास को किया नाकाम। बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक समेत 13 विधेयक विधानसभा में पारित। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा बिहार के छात्रों को राज्य में ही मिलेगा बेहतर उच्च शिक्षा का अवसर। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से

0: समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अरे वाह, यहाँ ठंडा पानी है
2: और देखिए साफ सुथरा शौचालय भी।
3: मेरे लिए रैंप और व्हीलचेयर की व्यवस्था भी है। वाह,
4: दिशा सूचक इतने स्पष्ट हैं कि केंद्र ढूंढना बिल्कुल आसान हो गया। हेल्प डेस्क पर हर जानकारी तुरंत मिल रही है।
5: वाह, मोबाइल रखने की व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, शाम तक रोशनी की सुविधा, सब कुछ है।
1: और ये पोल वॉलंटियर्स कितना सहयोग कर रहे हैं।
4: 182 बांकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 में आपका मतदान अनुभव होगा सुगम, सहज और सुरक्षित। मतदान केंद्रों पर भूतल पर मतदान केंद्र, ठंडी पेयजल, स्वच्छ शौचालय, स्पष्ट संकेतक, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर, प्रकाश व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, पोल वॉलंटियर्स और मोबाइल रखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 30 जुलाई 2026 को घर से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
6: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
7: जी नमस्कार, मैं सम्राट चौधरी बोल रहा हूँ। राज्य में अग्नि कांडों से होने वाली जान माल की क्षति अत्यंत दुखद और अपूर्णीय है। यदि हम सभी सतर्क रहें और आवश्यक सावधानियों का पालन करें तो इन घटनाओं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। बिहार अग्निशमन सेवा जनहित में निरंतर जन जागरूकता अभियान के माध्यम से आप सभी के अग्नि सुरक्षा एवं निवारण के प्रति जागरूक कर रही है। यह सेवा राज्य के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर है। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा किया जा रहा सुझाव का पालन करें। आपकी सजगता और सहयोग से हम राज्य में अग्निकांडों को रोक सकते हैं और जान माल की क्षति को न्यूनतम कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर सुरक्षित बिहार का निर्माण करें। जय बिहार।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है गोपालगंज जिले की हलचल। गोपालगंज जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मदेश कुमार तिवारी।
8: नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही जिले में हो रही वर्षा से खेतों में पर्याप्त पानी पहुंचने लगा है, जिससे धान की रुपाई में तेजी आई है और किसानों को सिंचाई की समस्या से काफी राहत मिली है। जिले में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी समीर सौरभ ने सदर, बरौली और बैकुंठपुर खंड में सारण तटबंध का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इस दौरान जल संसाधन विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जिले में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 9 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज स्थापित होने के बाद अब विद्यार्थियों को स्नातक की पढ़ाई के लिए दूसरे जिलों का रुख नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सिधवलिया डिग्री महाविद्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य और केंद्र सरकार का लक्ष्य हर छात्र छात्रा तक गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है।
9: इसी महीने टीआरई 4 की अधियाचना हम भेजने वाले हैं और शिक्षकों के स्थानांतरण 10 तारीख से शुरू हो गए हैं प्रक्रिया, क्योंकि कई प्रक्रिया को पार करके उन्हें ट्रांसफर लेना है और उसी के लिए रेशनलाइजेशन का काम चल रहा है और 1 सप्ताह का उनके उन्हें टाइम मिलेगा, वो भी किसी आज से कल तक घोषित होगी। और जब टाइम रहेगा तो ई शिक्षा पोर्टल पर वो अपना आवेदन दर्ज कराएंगे और उसके बाद वो स्थानांतरण पाएंगे।
8: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि नई स्थानांतरण नीति के तहत प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिला शिक्षकों का स्थानांतरण निकटवर्ती पंचायत और पुरुष शिक्षकों का निकटवर्ती प्रखंड में किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्थानांतरण किया जाएगा। जिले के प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा ने सिमराव पंचायत में आयोजित शिविर सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने आम लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से मामलों के निष्पादन के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने 20 सूत्री समिति के सदस्यों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में लंबित आवेदनों, विकास

0: योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा सभी मामलों में शीघ्र निष्पादन पर जोर दिया गया।
1: पंचायत में जाकर के निरीक्षण भी किए और सारे आवेदनों पर हर विभाग बार मॉनिटरिंग किया गया, समीक्षा की गई और बेहतर करने का निर्देश भी दिया गया।
0: जिलाधिकारी समीर सौरभ ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निश्चय मित्र के रूप में सदर प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा किया। उन्होंने टीबी मरीजों के घर पहुंचकर उनसे उन्हें पोषण किट का वितरण किया, नियमित दवा के साथ संतुलित एवं पौष्टिक भोजन लेने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने समाज के लोगों से भी टीबी मरीजों की सहायता के लिए आगे आने की अपील की और कहा कि सामुदायिक सहभागिता से ही टीबी उन्मूलन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जिले के सभी 14 प्रखंडों में सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने वर्चुअल माध्यम से इन विद्यालयों का उद्घाटन किया। इन मॉडल स्कूलों में आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों की भी तैनाती की जा रही है। और बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम में जिले के कई अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। सदर प्रखंड के धीरज कुमार और हथुआ के दीपक राय का चयन बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ है, जबकि शिखा सिंह का चयन कोषागार सेवा में हुआ है। जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।
2: अभी आप सुन रहे थे गोपालगंज जिले की हलचल। गोपालगंज जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मदेश कुमार तिवारी। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है विधानमंडल की कार्यवाही की समीक्षा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है विधानसभा में आज की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता। विधानसभा की कार्यवाही के समीक्षक हैं वरिष्ठ पत्रकार कैलाशपति मिश्र। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने ही ग्रामीण सड़क, पुल निर्माण और सोलर लाइट जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सरकार से जवाब मांगा। जदयू और भाजपा के विधायकों ने लंबित विकास कार्यों का मुद्दा उठाया, जिस पर संबंधित मंत्रियों ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रदेश में सुखाड़ की स्थिति पर राजद विधायक कुमार सरजीत के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश बिजली विभाग को दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को सर्वे कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। रिपोर्ट के आधार पर किसानों को डीजल अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। पथ निर्माण विभाग से जुड़े एक प्रश्न पर भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा ने विभागीय उत्तर पर आपत्ति जताई। मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने कहा कि विभाग से संबंधित बड़ी संख्या में प्रश्न आए हैं और सभी विकास कार्यों पर कार्रवाई जारी है। ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत लंबित भुगतान का मुद्दा राजद विधायक भाई बीरेंद्र ने उठाया। ग्रामीण कार्य मंत्री ने बताया कि 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है और शेष भुगतान की प्रक्रिया भी जारी है। पंचायती राज विभाग की सोलर लाइट योजना पर जदयू विधायक श्याम रजक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सोलर लाइटें खराब पड़ी हैं। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि एजेंसियों के कार्यों की समीक्षा की जा रही है और खराब लाइटों की मरम्मत कराई जा रही है। कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी और छात्रों पर दर्ज प्राथमिकी के विरोध में सदन के वेल में आकर नारेबाजी भी की। विधानसभा अध्यक्ष के आग्रह पर सदस्य अपनी अपनी सीटों पर लौट गए। राजद विधायक कुमार सरजीत ने खाद्य पदार्थों और सब्जियों में शीशा तथा कैडमियम जैसी भारी धातुओं की मौजूदगी का मुद्दा उठाया। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के दुष्प्रभाव गंभीर हैं तथा सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। दूसरी पाली में सदन ने 13 महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कर दिया। इनमें बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026, बिहार नगर विकास विधेयक 2026, बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026, बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 तथा भारतीय स्टाम्प बिहार संशोधन विधेयक 2026 प्रमुख हैं। बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह विधेयक राज्य के युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य बेहतर उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के दूसरे राज्यों में होने वाले पलायन को रोकना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में बिहार के लाखों छात्र उच्च शिक्षा के लिए राज्य से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और राज्य की प्रतिभा भी बाहर चली जाती है। उन्होंने कहा कि संशोधन के माध्यम से बिहार में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों को आकर्षित किया जाएगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अवसर राज्य में ही

0: उपलब्ध होंगे। बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बदलते समय में अपराध की प्रकृति भी बदल रही है। संशोधन के तहत सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा या किसी व्यक्ति के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध भी बिहार अपराध नियंत्रण कानून के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। ऐसे मामलों में 6 महीने से 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक को भी संगठित अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ। उद्योग मंत्री सुरेशी सिंह ने बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान कहा कि निवेशकों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने और व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में व्यवसाय सुगमता परिषद तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति गठित होगी। बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि संशोधन का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण को व्यवस्थित करना है। सदन ने बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान रोजगार और सेवा शर्त निरसन विधेयक 2026 समेत कई विधेयकों को पारित कर दिया। और अब प्रस्तुत है विधान परिषद में आज की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता। इसके समीक्षक हैं वरिष्ठ पत्रकार रामाधार प्रसाद। बिहार विधान परिषद में मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चली। मामूली नोकझोंक के बीच प्रश्नकाल में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। सैटेलाइट टाउनशिप, शिक्षा विभाग में कथित वित्तीय अनियमितताओं और भूमि विवाद से जुड़े प्रश्नों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एकमत दिखे। राज्य सरकार की प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप योजना को लेकर सदन में विस्तृत चर्चा हुई। जदयू सदस्य रविन्द्र कुमार के प्रश्न पर राजद सदस्य डॉक्टर सुनील सिंह ने कहा कि नियमों की अस्पष्टता के कारण बड़ी संख्या में भूमि मालिकों को अपनी जमीन बेचने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने सरकार से नियम स्पष्ट किए जाने की मांग की है। नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि टाउनशिप के लिए चिन्हित भूमि बेचने वाले किसानों को 1 माह के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमि की जांच से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया 1 माह में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री के उत्तर पर राजद सदस्य डॉक्टर सुनील सिंह ने असंतोष जताया। राजद सदस्य सुनील कुमार सिंह तथा अन्य सदस्यों ने पैक्स और व्यापार मंडलों की वित्तीय स्थिति का मुद्दा उठाते हुए कहा कि धान अधिप्राप्ति की राशि का भुगतान लंबित रहने से राज्य के लगभग 70% पैक्स वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान अधिप्राप्ति के विरुद्ध लगभग 91% CMR राज्य खाद्य निगम को जमा कराया जा चुका है तथा इसके विरुद्ध करीब 76% राशि का भुगतान किया जा चुका है। दोपहर बाद दूसरी पाली में बिहार विधानसभा से पारित 7 महत्वपूर्ण विधेयकों को विधान परिषद ने भी मंजूरी दे दी। विपक्षी सदस्य छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सदन से बहिर्गमन कर गए, जिसके बाद विधेयक पारित किए गए। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 प्रस्तुत करते हुए कहा कि डिजिटल माध्यमों से जुए के बढ़ते चलन पर रोक लगाने और आर्थिक अपराधों को नियंत्रित करने के लिए यह कानून लाया गया है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करते हुए कहा कि GST परिषद की सिफारिशों के अनुरूप राज्य की कर व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए संशोधन किए गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजन के लिए सपरिवर्तन निरसन विधेयक 2026 तथा बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2026 सदन में प्रस्तुत किए। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 तथा बिहार नर्सेस पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करते हुए कहा कि इनके लागू होने के बाद देश के किसी भी राज्य में पंजीकृत चिकित्सक बिहार में अलग से पंजीकरण कराए बिना चिकित्सा सेवा दे सकेंगे। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने बिहार चीनी उपक्रम अर्जन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। सभी विधायी कार्य संपन्न होने के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप विधानमंडल में आज की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता सुन रहे थे। विधानसभा की कार्यवाही के समीक्षक थे वरिष्ठ पत्रकार कैलाशपति मिश्र, जबकि विधान परिषद की कार्यवाही के समीक्षक थे वरिष्ठ पत्रकार रामाधार प्रसाद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवर्सिटी

0: वार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा में आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा किस नियम के अंतर्गत होगी और कितनी देर होनी चाहिए ये बातचीत में तय होगी।
1: रूपांतरकार प्रभा भावे और इसका निर्देशन किया है मुख्तार अहमद ने। तो आइए सुनते हैं नाटक मेरे दत्तक पिताजी।

0: भोर की सुहानी बेला कोंकण में जाड़ों का मौसम
1: रखवाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि श्री कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों की ओर से महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में श्री कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। श्री टेनेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद श्री बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इन मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू होते ही विपक्षी दल हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य नीट के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने की अनुमति दी। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों और विद्यार्थियों के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है वह बहुत अनुचित है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इसके बाद सदन में पेपर लीक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। अगर सरकार उनकी मांग स्वीकार करती है तो वे चर्चा के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये सभी लोगों से जुड़ा मसला है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बेटियों के कपड़े फाड़े गए। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन से बाहर नीट मुद्दे पर बयान दे सकते हैं, सदन में आकर इस मसले पर क्यों नहीं बोल सकते। इसके बाद श्री ओम बिरला ने कहा कि कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, ये बातचीत के दौरान तय होगा। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थानों पर जाएं और कार्यवाही चलने दें। श्री बिरला की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे श्री बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, उससे पहले ही विपक्षी सदस्य अपने सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन सदस्य उनकी बात पर ध्यान दिए बिना और नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद जिन विषयों पर नोटिस आए हैं उन सब पर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन ये सब प्रश्नकाल के बाद ही संभव होगा। मैं आपके मुद्दे पर चर्चा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि सदस्य सदन नहीं चलाना चाहते हैं, ये अच्छा संदेश नहीं है। उनकी किसी बात पर जब सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया तो श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 1 मिनट के भीतर ही 12 बजे तक स्थगित कर दी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला केंद्रित पहलों, पेयजल, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पीएमजेवी के एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित पात्र परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की जाती हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान पीएमजेवीके के अंतर्गत तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। इस अवधि के दौरान जिले के लिए न तो कोई निधि आवंटित या जारी की गई है और न ही योजना के अंतर्गत जिसे

कोई कार्य किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गुन ने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए आईटी अधिनियम 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के भाग तीन में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है। शिकायतों का निपटान आईटी नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(ख) अवैध सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर सरकार ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67(क) भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार तीसरे दिन गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच जहां सरकार ने कहा कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में तीस्ता नदी पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में 20 लोगों की मौत की जानकारी दी। सदस्यों ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। श्री राधाकृष्णन ने सदन को भारत में स्वदेश में विकसित पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित रेलगाड़ी के परिचालन शुरू होने की भी जानकारी दी और इसे स्वच्छ, टिकाऊ तथा तकनीकी रूप से उन्नत रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सदन इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेल अधिकारियों को बधाई देता है। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से उन्हें बेहद पीड़ा हुई है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। श्री खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद जब बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हंगामा करने लगे। श्री हरिवंश ने सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि ये प्रश्नकाल है। आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर सदन में ये संकल्प लिया गया था कि किसी भी हालत में प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाया जाएगा। अगर सदन अपनी बात पर कायम नहीं रहता है तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब तैयार करने में कितना समय और जनता का धन लगता है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कृपया प्रश्नकाल चलने दें, अपनी बात का असर ना होते देख श्री हरिवंश ने 1 मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी

सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और आसन की व्यवस्था मिलने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं और छात्रों के भविष्य के लिए नीट परीक्षा से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सरकार ने एक एक करके जो भी कदम उठाए हैं उन्हें देश के सामने रखना हमारा दायित्व है। श्री रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कई दलों के सदस्यों से बात की है और वे सभी चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, हमने पहले दिन से बात कही है, लेकिन चर्चा नियम के तहत होती है। चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है और किस नियम के तहत होनी है, इसका निर्णय सभापति सभी दलों के नेताओं से बात करने के बाद लेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि सरकार हर अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा, विपक्ष की ओर इंगित करते हुए कहा कि ये इंडी गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है, यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। विपक्ष संसद की मर्यादाओं को तार तार करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है। सदन के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक पारदर्शी और लोगों के हित में फैसले करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो जन विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, वे उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसके मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी सदस्य नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पिछले चार दशकों में राज्यसभा में नियम 267 का इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में हुआ है। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने सवाल किया कि दुर्लभतम मामला क्या होता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है वह दुर्लभतम ही है। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और उपसभापति हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में नीट प्रश्न पत्र लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच आसन की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस ने चर्चा की मांग की थी, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, अब विपक्षी सदस्य शर्त रखकर चर्चा टालने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने कहा है कि नियम 267 का उपयोग दुर्लभतम मामलों में किया जाता है, जो घटना हुई है उससे अधिक दुर्लभ से दुर्लभतम मामला भला और क्या हो सकता है, बच्चों पर बल प्रयोग किया गया है। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया और उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनते न देख बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही संचालन संबंधी नियम 267 के तहत सभापति की अनुमति से कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के किसी विषय पर चर्चा कराने के लिए सदन की निर्धारित कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च सदन में 20 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से ही नीट प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर गतिरोध लगातार बना हुआ है और अभी तक कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो सका है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर ऐप एवं डीटीएच के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सिंगरहार।

श्रोतागण नमस्कार। कार्यक्रम सिंगरहाल में अपने लोकनिक आत्मिक स्वागत है। अपने सभक संग हम छी राकेश चंद्र नंदन। बंधु लोकन, अपने सभक संग जखन कखनो अपन कार्यक्रम में जुड़बाक अवसर भेटैत अछि तो मन में रहते अछि जे बहुत रास गप करी, गप अपन साहित्यक, गप अपन संस्कृति, ओ सांस्कृतिक परंपरा सभक। ओना गपक क्रम आरंभ करी, ओहिसँ पहिने हम अपने सबके जनतब दऽ दै छी जे आजुक कार्यक्रम में हम सब सुनब दिलीप कुमार झा किछु काव्य पाठ आ संगहि गीतनाद तऽ जेना होइ छै हम सब सुनबे करब। जखन गीत रात के चर्च केलहुँ तऽ आउ ने गीतेसँ कार्यक्रम के आरंभ करै छी।

बंधु लोकन सियाराम झा सरस के गीत रचना एखन हमरा लोकन ममता ठाकुर के मधुर स्वर में सुनि रहल छलो। गीत नाद त हमरा लोकनिक जीवन के अभिन्न अंग बनि गेल अछि आ निश्चित रूप सँ ई साहित्य केर त अंग अछि। ओना समाजक प्रत्येक बात साहित्यक वस्तु बनैत रहल अछि, देशकाल ओ परिस्थितिक अनुरूप अपना सब ओहिठाम लेखन होइत रहल अछि। समाजक नीक बेजाय, सुख दुख, उत्थान पतन, सब किछु साहित्यमे अपन स्थान बनबैत रहल अछि। बंधु लोकनि, मनुख सामाजिक प्राणी अछि आ मनुखक सबसँ पैघ गुण चेतना होइत अछि। चेतने ओ गुण अछि जे मनुखकेँ पशुसँ फराक करैत अछि। चेतनाक अभाव में मनुखक जिंदगी पशु समान बुझल जाइत अछि। श्रोतागण, जखन कखनहु हमरा लोकनि अपन पुरातन व्यवस्था सबकेँ देखैत छी आ नव युगसँ ओकर तुलना करैत छी तऽ बहुत रास परिवर्तन ओहिमे हमरा सबकेँ देखना जाइत अछि। परिवर्तन दुहु प्रकारक, किछु बेजाय तऽ किछु नीक सेहो। विकास करबा लेल परिवर्तनक संग चलब आवश्यक होइत अछि, मुदा अपन पुरातन सांस्कृतिक परिचितिकेँ संरक्षित करब सेहो हमरे सभक कर्तव्य बनैत अछि। अपन आबयवला जे पीढ़ी, ओकरा अपन सांस्कृतिक परिचितिसँ जोड़बाक दायित्व सेहो हमरे सभक अछि। सामाजिक जीवनमे जखन कखनहु कोनो परिवर्तन अबैत अछि, निश्चित रूपसँ कवि साहित्यकार लोकनि ओकरा अकानैत छथि, ओहि परिवर्तनक स्वरकेँ अकानैत छथि ओ लोकनि आ अपन रचनाक माध्यमे हमरा सबकेँ सचेत करबाक प्रयास करैत छथि। अपन परम्परा सबकेँ हमरा लोकनि कोना संजोगि कऽ राखी, एकर प्रयास करै छी हमरा लोकनि। आ जखन ओ कवि साहित्यकार लोकनि हमरा सबकेँ

जे बाँचल अछि ओहो बाँचल कहाँ अछि। भरि भरि राति जागल रहैत छी चिंतामे, केना कऽ घुरि आओत अमेरिकासँ बेटी। कहैत छली बेटी, पापा मिडिल ईस्टक आकाशक ऊपरसँ उड़ि कऽ आओत हमर विमान। तखनसँ हाथ पैर जेना सिरा गेल अछि, कोना कऽ पहुँचत हमर बेटी। मुदा एतबे नहि अछि चिंताक बात, बात एकटा बेटीक नहि, ईरानक बालिका विद्यालय पर कयल गेल प्रहारमे मारल गेल अछि सोरेक सोरे बेटी। जुआनक कोन कथा, मारल जा रहल अछि असहाय बूढ़ नेना सब। तेहरान आबू धाबी, दुबई सँ दोहा धरि, तेल अबीब सँ बेरूत धरि दहल रहल अछि धरती। धुआं धुआं भऽ गेल अछि आकाश। बाँचल अछि देश युद्धक विभीषिकासँ, बाँचल अछि जे देश युद्धक विभीषिकासँ, ओहो बाँचल कहाँ अछि। देश देशमे बन्न भऽ रहलैए रोजी रोजगार, सब किछु प्रभावित अछि खेती आओर व्यापार। लोक सोचैत अछि लड़ाइ दू पड़ोसियाक बीच अछि, हमरा की माने मतलब। मुदा मतलब छै, हम युद्धमे शामिल नहि रहितहुँ, शामिल छी एहि महाविनाशक युद्धमे। युद्धक विरुद्ध अछि सगरे संसारक लोक, तथापि चलि रहल है युद्ध। संवेद स्वरमे उठक चाही आवाज। संसारक लोक बमक धमक सँ नहि, संगीतक ध्वनि सुनऽ चाहैत अछि। नेना सब अपना इसकुलमे करऽ चाहैत अछि शांति पाठ। तुही राम तू रहीम छ, तुही कृष्ण तू करीम। केओ एक्सर भऽ सकैए बड़का लड़ाका, मुदा केहनो भयानक हुए योद्धा। सगर संसार भरिक तागत सँ बाहर नहि अछि केओ। करै जाओ मुट्ठी बंद, लहरा कऽ कहि दियौ हमसब छी युद्ध विरोधी लोक। एहने अकारण युद्ध केँ रोकबाक लेल सिद्धार्थ बनल छलाह बुद्ध। हे तथागत, एक बेर फेरसँ एहि अंगुली माल सबकेँ शांतिक पाठ पढ़ा दियौ। युद्ध उन्मादी सभक सबटा अस्त्र शस्त्र प्रशांतक अतलमे डुबा दियौ। दोसर कविता अछि आधुनिक सभ्यताक तीर्थ। आयल छी बंगलुरु, एतय अविते त्राण भेटल भादवक गुमसल गुमारसँ। हँ हँ, जान बाँचाय तऽ लाख उपाय, बंगलुरुक मौसम केहन सुहावन। भादवमे होइत छैक एतय एक कम्बलक जार, चौड़गर सड़क, ऊँच ऊँच बहुमंजिला भवनक अमार। जतय धरि नजर जाइत अछि घरे घर, घर पर घर। गाम जकाँ एतय नहि होइत छैक एक गामसँ दोसर गामक बीच चौर चाँचड़ वा चौड़ी। दैतक खुनाल पोखरि, 52 बीघा ब्रह्मोत्तर खेत, लिच्चीक बगान आओर रंगबिरही आमक विशाल उद्यान। एतय होइत छैक खाली ऊँच ऊँच मकान, मकानक भीतर आलिशान दोकान, बड़का दोकानक भीतर असंख्य छोट छोट दोकान, जकरा कहल जाइत छैक शॉपिंग मॉल। जतय भेटैत छै जीवनोपयोगी संसारक जावन्तो वस्तु। बेटी विशेष आग्रह पर घूमि रहल छी विशाल फिनिक्स शॉपिंग मॉलमे। बड़ रमणीय, बड़ बन लग्गू, केना 3 घंटाक समय बीत गेल से पतो नहि लागल। ई मॉल सब कहैत अछि आधुनिक सभ्यताक तीर्थ स्थान। महानगरक व्यस्ततम जीवनमे जखन लोकक उबियात जाइत छैक मौन, काम काजसँ अशोथकित भऽ जाइत छैक देह, तखन महानगरी सभ्यताक लोक मौन हल्लुक करबाक लेल घूम अबैत अछि कोनो शॉपिंग मॉल। एके रंगक काज करैत करैत माय काकी सभक मौन जखन उबियात जाइत छलनि, तऽ ओहो लोकनि बान्हथि मोटरी आ भऽ आबथि जनकपुर, कुशेश्वर, कपिलेश्वर, कऽ आबथि देवी देवताक दर्शन, बहटा रहबथि मौन। घुरतीमे बाजारसँ किछु सौदाबारी किनैत आय मायसँ घुरि अबैत छली गाम। दुधिया इजोतमे नहायल मॉलक विशाल परिसर, जाहिमे संसारक नामी ब्रांड सभक सामान बिकाइत छैक। कतबो भरल रहत जेबी, केहनो भरिगर रहत पर्स, कतबो लिमिटके रहत क्रेडिट कार्ड, सब क्रेडिटके डेबिटमे बदलैत देरी नहि लगैत छैक एतय। छनेमे लल कऽ देत ई बाजारवादी व्यवस्था, जहि कमाओ तहि गमाओ, मात्र प्रवेश टा करबाक अछि जरूरत, सब भऽ जायत खलास। झोरा जब भरियो जायत तऽ मोन रहत खालिए, दुधिया इजोतमे नहाइत रहत देह, मुदा मोन भुतियाइते रहत। तेसर कविता अछि जानकीक नैहर मिथिला। हमरा लोकनि करैत छी परिक्रमा, दोलाक पाछू दुलकत जाइत छी, नपैत छी कोस 84, पाइवाला एक अझक अपना किशोरी जीकेँ। मुदा जानकी आब जनकपुरमे नहि रहैत छथि, पुनौराक सिराउरसँ निकैस भाया अयोध्या, चित्रकूट, दण्डकारण्य फेर आबि गेल छथि अपन मूल वास स्थान मिथिला। साँचे कहैत छी जब विश्वास नहि हुए तऽ आउ हमर मिथिला, बुलि

0: यह जानकीक नैहर अपना ही नयन सँ देखब रह रहा मैथिलानी सबके अपन नेनाक डेन पकड़ने पाठशालाक मुँहथर धरि पहुँचबैत धानक बिया आँटी मात पर नेने एक ठुट्टी पर हाली हाली गब लगबैत बरद पशुपतिनाथ लऽ कऽ चलि गेलाह कैलाश ताहि सकी। अहल भोर गाय महीसक सानी पानी लगबैत भेट जती रामवती फूलमती और स्मृति सुंदर सुंदर बसनी गढ़ैत पचरत्तन वाली कुम्हाइन तकरा ढौरैत हमर बेटी भावना ओहि पर रंग टीप दैत चंदना टेकुरी तेसुत माय नहि सिखौलनि ताहि सकी। कंप्यूटरक कीबोर्ड पर अंगुरी नचबैत मिथिलाक नाच सगरो दुनिया में पसारबाक यत्न करैत भेट जती बेटी मैत्रेयी चित्रा सुमित्रा नव नव रूप में अवतरित भेलै अछि जानकी मंदिरे मंदिरे तकला सँ नहि भेटती। जहिया ओ कऽ देल गेल चली अयोध्या सँ निर्वासित तहिए लऽ लेलनि संकल्प हमरे बदलऽ पड़त एहि विकृति के हमरे तिरोहित करय पड़त सबटा टाटक भावट। एक दिन सबटा राम कॉल जोड़ कहता पतियानी में ठाढ़ भ सबटा बात हमर सुनता। एकटा और कविता अछि जखन शांतिक लेल जरूरी भऽ जाइत अछि युद्ध जखन माँ झांगन पड़ल रहते जवान बेटाक लहास कोना क्यों गाबि सकत सोहर जखन पछवार सँ होइत रहत अकारणे प्रहार कोना चुप बैस सकैत छी हम बहुत किछु बिरह कऽ बचौने अछि देश। हँ भारत देश हमर पुरखाक आदिभूमि कश्मीर माथक मुकुट कश्मीर वितस्ता व्यासक कछेरमे पुष्पित पल्लवित भेल एकटा उन्नत सभ्यता हुनके सभक लगाओल अछि ई चिनारक जंगल सेवक की सुंदर बगान और केसरक क्यारी जकरा दिन देखारे लूट लेलक मानवताक शत्रु सब कश्मीरक सुसवा के नष्ट करबा पर वृत अछि राक्षस सब रचल गेल अछि वेदक एक एक ऋचा एतहि से भूमि हम कोना छोड़ सकैत छी। ताहि देश पर जखन आबि गेल छैक संकट जखन प्राण प्रतिष्ठाकें देल जा रहल चुनौती जखन शांति स्थापनाक लेल जरूरी भऽ गेल अछि युद्ध एकरा हम युद्ध नहि मानैत छी इस शांतिक स्थापना के लेल एकटा जरूरी उपाय। कविता अछि शिक्षा नहि थिक केन्दोन आखर ज्ञान आब संसारक प्रायः लोक लग पहुँच गेल अछि मुदा शिक्षा मात्र आखरा ज्ञान नहि छी। शिक्षाक मूल उत्स थिक प्रकृतिक सानिध्य में किछु सीखब कोनो कोठरी में बन्न भऽ कऽ आखर घोखैत रहब शिक्षा नहि छी। शिक्षा नहि थिक केन्दोन शिक्षा देशक सीमा सरहद सँ ऊपर अछि प्रकृतिक सानिध्य में बिन कोनो शिक्षकक सहयोग के सेहो सीखल जा सकैत अछि जीवनक अनुराग जीवन जीवाक कला जेना कहियो धनुर्विद्या में पारंगत भऽ गेल छलाह एकलव्य। गुरुदेव कहै छथि सगर संसार थिक चिड़ै के एकटा खोता जखन चिड़ै खोता अछि संसार फिर देश की या परदेश की शिक्षक के लगैत छनि हम ही नेना सबके सबटा ज्ञान बिलहैत छी मुदा से आंशिक सत्य अछि। हमरा मोन पड़ैत छथि कुमार भरत कोना ऋषि कण्वक आश्रम में संपूर्ण शिक्षा ग्रहण कयलनि कोना एतेक सुकोमल और दक्ष छली प्रेमवदा और शकुंतला शिक्षा भेल प्रेम करब जेना प्रेम छलनि राधा के कृष्ण सँ जेना प्रेम छलनि भरत के सावक सब सँ जेना अरुणी के प्रेम छलनि अपन गुरु सँ जेना विश्वास छलनि रघुनंदन के जे अपन गुरु महेश ठाकुर के कर कमल में अर्पित कऽ देलनि स्वयं के अर्जित कयल मिथिला राज्य जेना नचिकेता के आत्मज्ञान के छोड़ि आर कोनो ज्ञानक दरकार नहि छलनि जेना मदर टेरेसा के प्रेम छलनि अनाथ असहाय मानव सँ बहुगुना के गाछ सँ छलनि प्रेम। हमरा चाही एहन शिक्षा जे सिखाबै प्रेम करब नदीक जलधारा सँ कोमल कृष्णय सँ अपन मित्र सँ कुटुम्ब सँ से अपने देश सँ नहि संसारक सब देश सँ प्राणी मात्र सँ हमरा जनैत इएह कहत चाहैत रहत संसार के गुरुदेव कविन्द्र रविन्द्र।
1: बंधु लोकनि एखन जेहन वैश्विक परिस्थिति बनि गेल अछि ओहिमे अपन पुरातन सांस्कृतिक परिचितिकेँ बचा कऽ राखब बड़ बेसी आवश्यक भऽ गेल अछि। एकटा सामान्य मनुखक मोन केर व्याकुलताकेँ कवि दिलीप कुमार झाक काव्य केर माध्यमे एखन हमरा लोकनि सुनि रहल छलहुँ। चारूकात जखन एहन वातावरण बनि जाइत छैक तऽ निश्चित रूपसँ मोन व्याकुल भऽ जाइत अछि। एक दिस आगाँ बढ़ैत रहबाक चुनौती रहैत अछि तऽ ओतहि दोसर दिस अपन माटि पानिकेँ अपन भाषा अपन साहित्यकेँ आ सबसँ ऊपर अपन संस्कृतिकेँ संरक्षित रखबाक दायित्व हमरे सभक भऽ जाइत अछि। अस्तु गपक क्रम तऽ अहिना लागल रहत मुदा पहिने ई महेशवाणी।

स्नेहा झा गौल ई महेशवाणी एखन हमरा लोकनि सुनि रहल छलहुँ। बंधु लोकनि, आब देखू ने बेर भऽ रहल अछि जे हमरा सबके शब्द विमर्श दिस सेहो चलऽ पड़त, मुदा शब्द विमर्श करबासँ पूर्व अपने लोकनिसँ एकटा छोट छीन आग्रह। आग्रह ई जे कार्यक्रम सिंगरहार अपने लोकनिकेँ केहन लगैत अछि, अपने लोकनिक जे प्रतिक्रिया, अपने लोकनिक जे सुझाव, ओ हमरा सभक सम्बल बनैत रहल अछि। जँ अपने लोकनि अपन सुझाव आकि प्रतिक्रिया पत्र द्वारा पठबऽ चाहै छी, ओहि लेल हमर सभक पता अछि कार्यक्रम सिंगरहार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। हमर सभक पिन कोड अछि 8460004। बंधु लोकनि, अपने लोकनि आकाशवाणी दरभंगा @gmail.com पर सेहो ईमेल द्वारा अपन प्रतिक्रिया आकि सुझाव हमरा सब धरि पठा सकैत छी। आ आब शब्द विमर्श। एकटा शब्द अछि जगता जोर, असाधारण शक्तिवला। एहि लेल हमरा लोकनि जगता जोर शब्द केर प्रयोग करैत रहलहुँ अछि। जमकब, जमकब भेल जल आदिक जमा भऽ अटकब। एखन तऽ बरखाक बेर अछि, ऋतु अछि, तऽ ठाम ठाम जल जमकल रहैत अछि, अटकल रहैत अछि। एकटा शब्द अछि जुगतायब, माने यत्नपूर्वक राखब, जोगायब। जोगायब की भेल, भविष्य लेल सुरक्षित राखब। एहि लेल हमरा लोकनि जोगायब शब्द केर प्रयोग करैत रहलहुँ अछि। तहिना एकटा शब्द अछि झकझोरब, झकझोरब माने झमारब, जोर जोरसँ बेर बेर हिलायब। एहि लेल हमरा लोकनि झकझोरब शब्द केर प्रयोग करैत छी। तऽ ई छल आजुक शब्द विमर्श। आ बंधु लोकनि, एकटा जनतब अपने लोकनिकेँ दऽ दी जे काल्हि सिंगरहारमे हमरा लोकनि सुनब चंडेश्वर खाँ केर किछु लघु कथा सब। तऽ अपने लोकनिसँ विशेष आग्रह जे काल्हि सिंगरहारमे चंडेश्वर खाँ के लघु कथा सब लऽ कऽ हमरा लोकनि आयब, तऽ निश्चित रूपसँ अपने लोकनि सुनी। तऽ आब बेर भऽ रहल अछि जे हमरा अपने लोकनिसँ विदा लेबऽ पड़त। तऽ इएह आशाक सङ्ग जे अपने लोकनिक सुझाव, अपने लोकनिक प्रतिक्रिया हमरा सब धरि निश्चित रूपसँ आयत, अगिला भेंट धरिक लेल हमरा यानी राकेश चंद्र नंदनकेँ चलबाक आज्ञा देल जाउ। नमस्कार।

सिंगरहार, यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे थे। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
4: ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
5: हम जनरल प्रमोशन मांग रहे हैं ताकि

0: ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से एडजर्नमेंट मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: नामची जिले के NHPC की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकलना मुश्किल हो गया है।

0: बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और एनएसपीसी ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
2: बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिडकैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for making the dream of Viksit Bharat a mass movement with youth playing a key role in it. Government reiterates readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in Parliament.

0: शीशों की नुक्ताचीनी की। अपोजिशन ने दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रखनांदाजी की। इसने बहस से पहले तालीम के महकमे के वजीर के इस्तीफे का मुतालबा किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट मार्च के दौरान मुजाहरीन पर मुबैना तौर पर ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने से मुतालिक दरखास्तों पर मरकज और पुलिस से जवाब तलब किए हैं। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बेहतर रेल सेफ्टी, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ट्रेन हादसात में खातिरखा कमी आई है। अमरीका ने ईरान पर यमन के हूसी ग्रुप की जानिब से बहर अहमर में सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का इल्जाम लगाया है और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि विकसित भारत की तामीर का ख्वाब जन आंदोलन बनना चाहिए और मुल्क के नौजवानों को इस नजरिए को बुनियाद फराहम करनी चाहिए। वजीर आजम ने नई दिल्ली में विकसित भारत अहदाफ के लिए मुतल्लिका शोबों और देही तरक्की, ज़राअत और समाजी बहबूद की पेशरफ्त के जायजे के सिलसिले में सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतह मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। इस मीटिंग में काबीना सेक्रेटरी, अहम वजारतों के सेक्रेटरी साहबान के साथ साथ वजीर आजम के दफ्तर के सीनियर ओहदेदारान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि अवाम की जरूरत के तहत तैयार करदा इस्लाहात के नफाज में तेजी आनी चाहिए और इनसे बामाना तब्दीली पैदा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाहात का मकसद महज हुकूमत के कामकाज में बेहतरी लाना नहीं बल्कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की जानिब मुल्क के सफर को तेज करना है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी मुजाहरे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मरकज नौजवानों के जज्बात और खदशात के हवाले से नहायत हसास है और तलबा के जायज मसलों को सुनने और इसके हल के लिए पुरज़्म है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि कुछ लोग अपने सियासी मफाद के लिए तलबा के एहतजाज को इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: पार्लियामेंट में अपोजिशन के हंगामे पर वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने हर मामले पर बामाने बहस पर रजामंदी जाहिर की है लेकिन अपोजिशन पार्लियामेंट के बजाय सड़कों पर इसके हल की गैर मुनासिब कोशिश कर रही है। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने आज कहा कि तलबा की जानिब से उठाए गए नीट पेपर लीक मामले को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। नई दिल्ली में आज शाम मीडिया से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा यह जांच का मौजू है जिस पर वसी तर तबादला ख्याल की जरूरत है। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि यह एक संगीन मसला है जिस पर संजीदा बातचीत की जरूरत है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई, नीट पेपर लीक मामले और तलबा के एहतजाज समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की जानिब से आज मुसलसल तीसरे रोज बार बार रखना अंदाजी के पेश नजर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में जब ऐवान की कार्रवाई दूसरी मरतबा मुलतवी होने के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू हुई तो अपोजिशन अरकान ने नीट मामले पर नारेबाजी जारी रखी। एहतजाज जारी रहा तो ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे कबल दिन में कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तलबा के एहतजाज का मामला उठाया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने यह बात दोहराई कि हुकूमत मुकर्रर करदा पार्लियामानी जाब्तों के तहत और मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए सभी फरीकों के साथ बामाने बहस के लिए तैयार थी।
2: सरकार नी पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी नीट मामले और दीगर मामलात पर बार बार रखना अंदाजी हुई। कई मरतबा कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने यह कहते हुए अपोजिशन से तआवुन करने की अपील की कि हुकूमत बहस के लिए तैयार है। ऐवान बाला में खिताब करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर यह कहते हुए बहस से बचने का

0: के अंदर कुछ अफराद फंसे हुए हैं। सिक्किम हुकूमत और कौमी पनबिजली पावर कारपोरेशन के सीनियर ओहदेदारान मकाम पर सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: NHPC टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए मुख्तलिफ एजेंसियां आज लगातार तीसरे दिन भी कोशिशों में लगी रहीं। बचाव कार्रवाई 24 घंटे जारी है, ताहम कम बसारत और मीथेन गैस के रिसाव ने लाशों को निकालने में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। 8 लाशें टनल के दहाने से 2 किलोमीटर दूर हैं। इस दौरान सिक्किम हुकूमत ने हादसे में फौत होने वालों की लाशें आज उनके कुंबों को सौंपी। मरकज के अलावा सिक्किम हुकूमत और NHPC ने मुतासिरा कुंभों के लिए माली मदद का ऐलान किया है। गुवाहाटी से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक मीटिंग हुई, जिसमें मंदिर के इंतजाम, अतियात के निजाम, तकरियों और इंतजामी असलाहत जैसे मुख्तलिफ अहम फैसले किए गए। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर की तकरी खाली अहदों को पुर करने और इसकी मजहबी कमेटी की नई सेह से तश्कील पर तबादला ख्याल किया। ट्रस्ट ने कहा कि खसूस

आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक मीटिंग हुई, जिसमें मंदिर के इंतजाम, अतियात के निजाम, तकरियों और इंतजामी असलाहत जैसे मुख्तलिफ अहम फैसले किए गए। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर की तकरूरी खाली अहदों को पुर करने और इसकी मजहबी कमेटी की नई सह से तश्कील पर तबादला ख्याल किया। ट्रस्ट ने कहा कि खसूसी तहकीकती टीम की हतमी रिपोर्ट अभी मौसूल नहीं हुई है और मीटिंग के दौरान इस मामले पर बातचीत नहीं हुई। हुकूमत ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान नाज़ेबा मवाद नशर करने की बिना पर 50 OTT प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया है। लोकसभा में अपने तहरीरी जवाब में इत्तलात व नशरियात के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुर्गन ने बताया कि हुकूमत शिकायतों की बुनियाद पर इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म्स पर बाकायदगी से कार्रवाई करती है। जनाब मुर्गन ने कहा कि हुकूमत ने डिजिटल मीडिया पर हालात हाजरा और ऑनलाइन मवाद के नाशरीन के लिए इदारा जाती मैकेनिज्म वजा करने की खातिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जवाबित 2021 को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात और वस्ती महाराष्ट्र में कल इंतहाई शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। भारतीय महकमा मौसमियात ने शमाल मशरकी भारत में आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी इसी तरह के मौसमी हालात की पेशगोई की है। अमरीका ने यमन के हूसी बागियों को उस ऐलान की मजम्मत की है, जिसमें हूसियों ने बहर अहमर में सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी करने और तजारती बहरी जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने सऊदी अरब के खिलाफ हूसी बागी ग्रुप की इस धमकी के लिए ईरान को मौरिद इल्जाम ठहराया। चाइना ओपन बैडमिंटन में 2 मरतबा की ओलंपिक तमगा याफ्ता PV सिंधु अपने अहम वतन उन्नति हुडा को हराकर खवातीन के सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज दोपहर प्री क्वार्टर फाइनल में हुडा को 21-14, 9-21 और 21-10 से शिकस्त दी। मर्दों के सिंगल्स में आयुष शेट्टी आलमी नंबर 11 इंडोनेशिया के अलवी फरहान को 21-17, 5-21 और 21-17 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत नजरिए को एक अवामी तहरीक बनाने पर जोर दिया है, जिसमें नौजवान एक कलीदी रोल अदा करें। हुकूमत ने ये बात दोहराई है कि वो पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले पर बामाना बहस के लिए तैयार है। इसने नौजवानों के एहतजाज को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशों की नुक्ताचीनी की। अपोजिशन ने दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रखनांदाजी की। इसने बहस से पहले तालीम के महकमे के वजीर के इस्तीफे का मुतालबा किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट मार्च के दौरान मुजाहरीन पर मुबैना तौर पर ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने से मुतालिक दरखास्तों पर मरकज और पुलिस से जवाब तलब किए हैं। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक छोटा सा गाँव, एक साधारण रसोई और उसी रसोई से उठती एक बड़ी शुरुआत। जहाँ कभी सिर्फ घर के लिए अचार, पापड़ और मसाले बनते थे, आज वहीं से निकल रहे हैं ब्रांड, रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई कहानियां। खेत के एक कोने में उगाई गई धनिया जब एक अत्याधुनिक पैकेज्ड ब्रांड बनकर उभरती है, या फिर किसी छोटे से शहर की बेकरी जब एक नए भारत के निर्माण की मिसाल बनती है, तब जन्म लेती है असली जमीनी क्रांति। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी PMFME स्कीम देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। एक ऐसी योजना जिसने न केवल 2 लाख से अधिक ऋण स्वीकृतियों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है, बल्कि देश के अनौपचारिक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

0: औपचारिक पहचान दी है। 20,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, 6 लाख से अधिक आजीविका के अवसर और 44% महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये कहानी है उस भारत की जो वोकल फॉर लोकल को अपना मंत्र बनाकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहा है। आज की इस विशेष चर्चा में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये योजना वित्तीय समावेशन, तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज के जरिए हमारे किसानों और स्थानीय उद्यमियों को रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाला बना रही है। साथ ही हम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र की भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने और वरिष्ठ कृषि एवं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: जगदीश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। ये जो योजना है, इसने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया है अनौपचारिक सूक्ष्म इकाइयों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाकर, और लगभग 75,000 से अधिक इकाइयां अब उद्यमी पंजीकरण, FSS, AI और GST के दायरे में आ चुकी है। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप इस फॉर्मलाइजेशन को केवल कर या विनियमन के चश्मे से अगर हटाकर व्यापक स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक विश्वसनीयता और क्रेडिट योग्यता के संदर्भ में देखें तो क्या समझते हैं आप?
1: देखिए, मुझे लगता है कि जो ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, जो बेसिकली गांव पर आधारित है या Tier 2 cities पर आधारित है या Tier 3 cities पर आधारित है, इस पर बहुत पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, बिल्कुल सही ध्यान दिया गया है। और इसकी जो योजना बनी है वो इतनी मुकम्मल और इतनी परफेक्ट है कि आप किसी भी राज्य में चले जाए, आपको बाजार जिसमें आप अनाज के अलावा अपने घरेलू रसोई का जो सामान लेते हैं, इसके अलावा अपना नाश्ते का सामान लेते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स आपको लोकली मेड मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके कारण जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जिन्होंने इस मार्केट पे इस तरह से कब्जा करके रखा था, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में टिकने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, उनको नई नई स्कीम लानी पड़ती है। हम देखते हैं कि बहुत छोटे स्तर पर, मतलब अगर आप कस्बाई स्तर पर चले जाए तो कस्बाई स्तर पर भी लोकली और मैन्युफैक्चर्ड, लोकली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। सिर्फ खाने पीने के पदार्थ ही नहीं, दूसरे भी पदार्थ आपको मिलते हैं। ये बहुत दिन से और बहुत वर्षों से ये बाजार डेवलप हो रहा था, मोदी सरकार ने पहली बार इसको फॉर्मली ध्यान दिया और इसके लिए एक अच्छी मजबूत योजना शुरू की। और ये जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, अगर आप जो औपचारिक अर्थव्यवस्था देखेंगे देश की, तो उससे करीब 1/4 तो होगी ही, अभी उसका आकलन नहीं हुआ है कि ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो बेसिकली रूरल बेस्ड है, ये कितने की है, कितने हजार करोड़ की, कितने बिलियन डॉलर्स की है, ये आकलन अभी किसी ने नहीं किया कि एक आध स्टडी इस पर है। लेकिन अगर आप पाएंगे कि इस समय देश भर में और लोग लोकली, वोकल फॉर लोकल का नारा मोदी जी सरकार ने ऐसे ही नहीं दिया है, इस जो डेवलपमेंट हो रहा है नीचे के लेवल पर उसको ध्यान में रखते हुए दिया है। आत्मनिर्भर भारत की भी जो अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत ये योजना है, उसको भी इस बात को ध्यान में रख के दिया गया है कि गांवों, कस्बों और Tier 2, Tier 3 cities में, यहाँ तक कि आप जो बड़े शहर हैं उनमें भी आप पाएंगे कि उन अलग अलग क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के बने हुए प्रोडक्ट्स ही आपको मिलते हैं, चाहे खाने पीने के पदार्थ हो, चाहे आपके इस्तेमाल के पदार्थ हो, सौंदर्य प्रसाधन से लेकर तो खाने पीने की चीज, नाश्ते की चीज और मनोरंजन की चीजें, वो सब लोकली प्रोड्यूस हो रही है। इस इकोनॉमी को टैप करके इस योजना ने बड़ा और मदद पहुंचाई है उन सब उद्यमियों को जो अपने बल पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: जी हरवीर जी, योजना ने हाल ही में 2 लाख से अधिक क्रेडिट लिंक्ड स्वीकृतियों का आंकड़ा छुआ है और इसमें 20,300 करोड़ से अधिक का निवेश भी आकर्षित हुआ है, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग तंत्र में अंतिम मील तक क्रेडिट डिलीवरी एक बड़ी चुनौती रही है। आपसे समझना चाहेंगे कि इस योजना में ऐसा क्या अलग रहा जिसने बैंकिंग तंत्र के प्रति सूक्ष्म उद्यमियों का जो हिचकिचाहट का भाव है उसे तोड़ा? क्या बैंक अब सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण को कम खतरे वाला क्षेत्र मानने लगे हैं?
2: एक तो ये अपने आप में हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसमें हमारे लिए है। अभी करीब 30 लाख करोड़ से ज्यादा का ये एक इंडस्ट्री है देश में, और जो अगले 2 साल में मेरे ख्याल से करीब 45,000 करोड़ तक उसको पार कर जाएगा। अब ये जैसे अभी उपासना जी कह रहे थे कि हम बात कर रहे हैं फॉर्मलाइजेशन और इनफॉर्मल की, क्योंकि जो बड़ा फॉर्मल सेक्टर है, बड़ा कब्जा, जो बड़े ब्रांड, बड़े मार्केट एक्सेस उनके पास रहे हैं, और जबकि छोटे स्तर पर गांव, गांव से थोड़ा आगे हम जाए जो छोटे कस्बे,

0: शहर, वहां पर तमाम सारे एंटरप्रेन्योर्स ने कोशिश की कि वो वैल्यू एडिशन में जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें जाए, एग्रीकल्चर के वैल्यू एडिशन में जाए। वैल्यू एडिशन है फूड प्रोसेसिंग, जिससे कि वो बेहतर उनके आय का जरिया बने और स्थानीय स्तर पर किफायती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो एक बाधा आती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए वो होती है वित्तीय संसाधनों की, जो हम रिसोर्सेज जो है फाइनेंशियल उसकी बात करते हैं। जो छोटा एंटरप्रेन्योर है वो अगर उसके पास पूंजी नहीं है, और इसके पहले जब फॉर्मल सेक्टर की बात करेगा या बैंक्स को अप्रोच करेगा, उसका उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, तमाम सारे कोलेटरल चाहिए, फिर बैंक्स में इतना लंबा प्रोसेस है, उसको ये मिलना मुश्किल था और लोग आगे नहीं बढ़ पाए। जाहिर सी बात है कि इसका स्कीम को ही इसी काम के लिए तैयार किया गया कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कुछ लाख रुपए से अपना काम शुरू करना चाहते हैं, वो किस तरीके से फॉर्मलाइज एंटरप्रेन्योर के रूप में और उनकी जो यूनिट है वो कैसे फॉर्मलाइज सेक्टर में जाए, जो गुणवत्ता के मानक है उनको पूरा करती हो, और साथ में उसके लिए मार्केट की जो लोकलाइज स्तर पर जो अपॉर्चुनिटी है उसको टैप करे। अब इस तरह की जो स्कीम जो बिना कोलेटरल के एक सीमित स्तर पर जो फाइनेंस मुहैया कराती है, ऐसे जो एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनको कोई बहुत बड़ा जो तामझाम होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, आपके पास असेट कितना है, आपकी इक्विटी कितनी है, फिर बैंक तय करेगा कि हम इसमें कितना डालेंगे और किस तरीके से वो असेस करेगा, उन सब झंझटों से मुक्त करते हुए इस तरह की स्कीम लाई गई, ताकि ये जो बेहतर संभावना का जो क्षेत्र है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए और स्थानीय स्तर पर, क्योंकि ये लगातार एक बात है, जब हम कहते हैं कि जो भारत बड़े शहरों में नहीं, महानगरों में नहीं, जो मेजर इंडस्ट्रीज में नहीं है, जो छोटे स्तर पर है, जो रूरल इंडिया जिसे हम कहें या हमारे जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहां पे जो लोग एक तरीके से अपनी उद्यमशीलता के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन जब उनके पास क्रेडिट की सुविधा दी गई, उनको टेक्नोलॉजी का नो हाउ, उनका जो हैंड होल्डिंग जिसे हम कहते हैं कि उनको बताया गया कि किस तरह की तकनीक आपका जो उत्पाद है उसको तैयार करने में काम आएगी, किस तरह की प्लांट और मशीनरी जो है इसमें जरूरत होती है, उसके लिए कैसे फाइनेंस मुहैया कराया जाएगा, और आप अपने उत्पाद को मार्केट में कैसे ले जा सकते हैं, मार्केट लिंकेज कैसे हो सकता है, क्योंकि जो छोटा एंटरप्रेन्योर है उसके सामने ये भी एक चैलेंज होता है कि जो मार्केटिंग का जो एक स्किल होती है उसके पास उतनी बेहतर नहीं होती जो बड़ी कंपनियों की, जो मार्केटिंग के जो लोग हैं या उनके जो संसाधन है, उनके पास जो रिसोर्सेज है वो होते हैं। तो उस चैलेंज को दूर करते हुए ये जो सारे स्टेप्स हैं, फाइनेंस अवेलेबल कराने से लेकर के उसको ट्रेड करने तक, मार्केटिंग के तक, वो इस स्कीम की खास जो खूबी है। और जो हम देख रहे हैं कि भाई 2 लाख से ज्यादा सैंक्शंस इसमें हुए हैं, तो ये अपने आप में, या 20,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें निवेश हो चुका है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो एक ये जो काम हो रहा है वो छोटे स्तर पर हो रहा है जी। और जो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है, क्योंकि वो प्रोड्यूस भी वहीं से आ रहा है, तो उसके जो उत्पादक हैं उनको अपने आसपास अपने उत्पादों की थोड़ा बेहतर कीमत देने का एक बाजार भी खड़ा हो रहा है। तो ये एक जो इकोसिस्टम बन रहा है, तो वो इकोसिस्टम जो है, इनमें से बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो फिर माइक्रो से स्मॉल में जा सकते हैं, फिर वो और बड़े हो सकते हैं, और बड़े हुए हैं लोग। इस तरीके के उदाहरण, जैसे 2 उदाहरण इस आर्टिकल की बात आपने जिक्र किया, जिस तरह से छोटी जगहों पर इस तरीके की तमाम सारी जो कहानियां सामने आती है, और उसी रास्ते चल के देश में कई बड़ी कंपनियां एस्टेब्लिश हुई है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लोइट करने का और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर रोजगार के साथ में उनकी जो इकोनॉमी जो है उसको बड़ा करने का एक अच्छा एक तरीके से एक ये स्कीम बनी, और उसका फायदा लोग उठा रहे हैं, उसके नतीजे आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने कहा कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है हमारे देश में, जिस तरह से लोगों की इकोनॉमी कंडीशन बदल रही है, उनके जो हाथ में अधिक पैसा आ रहा है तो वो प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं
1: जी।
0: और उनको फिर ये है कि जो सिर्फ बड़ी कंपनियां हैं उनकी तरफ न जाकर के जो स्थानीय स्तर पर उत्पाद उपलब्ध है वो उनके मार्केट जो है के रूप में सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें, हमारी जो GDP का करीब 7% ये सेक्टर बन गया है, और एग्रीकल्चर का एक बड़ा हिस्सा इसके पास है। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत बड़ी गुंजाइश है, क्योंकि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, जो हमारे पास जिसकी जो एक संभाव्यता जिसको हम कहते हैं

0: उसका हमने बहुत छोटे स्तर का दोहन किया है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके लिए अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की।
1: हरवीर जी जिन कहानियों का जिक्र कर रहे थे, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि पीएमएफएमई योजना के सबसे पहले जो लाभार्थी थे वो थे जमुना लाल पाटीदार, और उनका आवेदन इस योजना के तहत पहला आवेदन था जिसे स्वीकृत किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण में कोई पृष्ठभूमि न रखने वाले 10वीं पास उद्यमी जमुना लाल पाटीदार को 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से इस योजना से मिले। उन्होंने उसका निवेश धनिया प्रसंस्करण इकाई शुरू करने में किया। योजना के तहत उन्हें वित्त, मशीनरी और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनका विचार एक सफल उद्यम में बदल गया, और आज उनके पास 5 से ज्यादा लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं और उनका व्यापार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। जमुना लाल पाटीदार की ये कहानी हम सबको बताती है कि अगर आपके पास कुछ करने का जज्बा है और आपके पास एक विजन है, एक सोच है, एक प्लान है, तो उस प्लान को आगे बढ़ाने में इस तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं वो बहुत मददगार साबित हो रही हैं। जगदीश जी, अगर खाद्य प्रसंस्करण की बात को हम आगे बढ़ाएं तो एक बड़ी चुनौती ये आती है कि अगर हमें वित्तीय सहायता मिल भी जाए तो जो छोटे स्तर के जो स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग हैं या जो गांव के दूर दराज के किसान हैं, गुणवत्ता नियंत्रण कैसे करें, शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, जो मॉडर्न डे की पैकेजिंग है और राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना, उनके लिए आज भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है। क्या आप देखते हैं कि इस दिशा में किस तरह के परिवर्तन लाने की जरूरत है और कितना बदलाव पिछले एक दशक में आया है?
2: देखिए, ये चैलेंज तो है और ये चुनौती भी है उन सब छोटे उद्यमियों के लिए जो अपने घर से या अपने गांव से ऐसा उद्यम शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो फल हैं और सब्जियां हैं इनके बहुत कम पदार्थ बनते हैं, 2-3% के लगभग इसका योगदान होता है फूड प्रोसेसिंग में, जबकि फूड प्रोसेसिंग भारत में और सनराइज सेक्टर बोला जाता है इकोनॉमी की भाषा में, और इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है क्योंकि भारत जो है सबसे बड़ा कृषि उत्पाद करने वाला देश है, सबसे अधिक दूध उत्पाद करने वाला देश है, और हम जो है, मतलब आप सोचिए कि फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में भी भारत की जो रैंकिंग है वो वैश्विक रैंकिंग में ऊपर ही है। ये पूरा सेक्टर जो प्रोसेसिंग का सेक्टर है, हमारा खाने की वस्तुएं बनती हैं उसमें 32%, जैसा हरविंद सिंह ने बताया, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, जबकि बहुत चुनौती है। और इसमें मैं 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा कि जो स्वयं सहायता समूह हैं, जिनको आप हर राज्य में, और हर राज्य सरकार भी उनको अपनी तरफ से मदद दे रही है, आप किसी भी राज्य में चले जाए, लोकल अखबार उठा के देखें तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक सक्सेस स्टोरी आपको जरूर मिलती है। कोई एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट अपने गांव में जाकर एग्रीकल्चर एक स्टार्टअप शुरू करता है और 200-500 किसानों को अपने साथ जोड़ता है, उनको नई टेक्निक सिखाता है। 3D प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है आप छोटे शहरों तक पहुंच गई है और लोग उससे कर रहे हैं आपको, लेकिन उनको एक विशेषज्ञ सहायता की जरूरत जरूर है, उनको ब्रांडिंग ठीक से करने की जरूरत। अभी जो प्रोड्यूस वो तैयार करते हैं वो इतना ही होता है कि वो लोकली खप जाए, और इसका उद्देश्य भी मुझे यही होना चाहिए कि और जो प्रोडक्ट बाहर जाते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, फल और उसके जो प्रोसेस्ड हैं पदार्थ वो सारे, और जो आप मिलेट्स आ गए, मिलेट्स के कई पदार्थ बनकर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हमारा जो खाद्यान्न है उसकी क्वालिटी के बारे में हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कहीं कोई एकाध कोई खेप वापस आती होगी, अदरवाइज वो सब मार्केट में खपता है। आप यूरोप में घूमकर आइए, आपको भारत के हजारों छोटे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो सीधे एक्सपोर्ट होते हैं, लोग अमेजोन पर उसको ऑर्डर करते हैं और लोग खरीदते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें इतना बड़ा, इसको सनराइज सेक्टर ऐसे ही नहीं कहते, इसमें इतना ज्यादा स्कोप है कि ये हमारी फॉर्मल इकोनॉमी के आधे के करीब पहुंच सकता है। इसी समय उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा आकार है। उनको जरूरत किस बात की कि जो राज्य स्तर पर जो योजनाएं चलाई जा रही है, स्वयं सहायता समूह वर्षों से काम कर रहे हैं और जिन राज्यों में वो सफल हुए हैं वो, आप जैसे यूपी है, यूपी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उत्पादित होने वाले प्रोडक्ट्स को और प्रधानता दी जाती है, स्वयं सहायता समूह को कहा जाता है कि इनको आप बनाइए, इनको हम प्रमोट करेंगे, मार्केट से लिंक करेंगे और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे। ये हो रहा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी ऐसी योजनाएं हो रही है, हिंदी भाषी राज्यों में, दक्षिण में भी ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स इसको सीरियसली लेती है, ये केंद्र की योजना बहुत अच्छी योजना है, ये मैं समझता हूँ कि जो सहायता राज्यों से मिल रही है उसके ऊपर है। अब 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिला और 75,000

0: से ज्यादा प्रोडक्ट अगर इसमें लिस्टेड हुए जीएसटी में, FSSAI में, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो जरूर मिलना चाहिए। मिलेट्स जब से आए हैं, मिलेट्स पर आधारित खाद्य पदार्थ और प्रोसेस फूड बहुत बड़े पैमाने पर बन रहे हैं जहां मिलेट्स होते हैं, तो और फिर क्वालिटी को अगर हम मेंटेन करते हैं उसके लिए उसको वो मदद, ये जो स्कीम है इसमें ये सब दिया जा रहा है, लेकिन इसका आकार बढ़ाने की जरूरत है।
1: हरवीर जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला कि लोकल प्रोसेसिंग यूनिट से क्या एग्री सप्लाई चेन मजबूत हो रही है, और दूसरा कि छोटे स्तर पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, क्या ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का सस्टेनेबल मॉडल बन रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
2: सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो हमारे ग्रामीण युवा है जो वहीं पर रुकना चाहते हैं और कुछ बड़ा सोच के काम करना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए मौका मिलना चाहिए। जो ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ट्रेनिंग में थोड़ा अभी कोशिश है इस स्कीम के सामने, लेकिन हमारे पास फूड प्रोसेसिंग के और फूड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं, निफ्टम्स हैं, तो जरूर इसमें इनिशिएटिव लेकर के जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको जोड़ने के लिए वो थोड़ा उनको तैयार भी करना चाहिए इसके लिए कि आपके लिए यहाँ पर बड़ा इकोनॉमिक एक अपॉर्चुनिटी है, आप आगे जा सकते हैं और साथ में आप स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं। फूड में ये फैक्टर जरूर है कि जो गुणवत्ता है और हाइजीन है, हमारा FSSAI है, उसके जो मानक है, उसके स्टैंडर्ड्स जो है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, तो वो उनको पूरा करते हुए ही अपने प्रोडक्ट्स को आगे लाएं, क्योंकि अगर आप जो फूड अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर आप उनको पूरा करेंगे और आपका प्रोडक्ट्स उस तरीके से बाजार में लोगों तक पहुंचेगा, तो इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्थानीय स्तर पर बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ी कंपनी बना रहे हैं, क्योंकि आप उसी लेवल पर उसकी क्वालिटी जो है, उसकी हाइजीन उस स्तर पर ला रहे हैं और आप कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके ओवरहेड्स कम है, आप सोर्सिंग वहीं कर रहे हैं, आपकी जो चेन है सोर्सिंग से लेके मार्केटिंग तक की वो बहुत बड़ी नहीं है, तो इसलिए आपके एक्सपेंसेस जो है वो इकोनॉमिकल है दूसरों के मुकाबले। तो ये एक अच्छा बहुत ही मॉडल कामयाब हो सकता है, और इसको क्योंकि बात ही इसमें फॉर्मलाइजेशन से हो रही है, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो लोग हैं उनको फॉर्मल इकोनॉमी की तरह बढ़ाना है हमें, उसमें उनके जो FSSAI के उनके पास सर्टिफिकेट्स हो, उनके पास जो है ये बाकी टैक्सेशन की फॉर्मेलिटीज हो, वो सब इसका पार्ट है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी मुहिम के रूप में धीरे धीरे, जैसे लेकिन ये भी रीजनेबल नंबर आ गया है, अगर 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इसके फुटप्रिंट्स पूरे देश में मिलेंगे, इनको थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। और हम देख रहे हैं अगर आप जाएंगे मार्केट्स में, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बेसिक चीजें जो है मल्टीपल उसके प्रोडक्ट्स बना करके, चना में, मक्का में, और बहुत सारी है, जैसे मैंने मिलेट्स की बात की, मैं कुछ महिलाओं से एक बार मिला था हमारे एक कार्यक्रम में, वो आए उड़ीसा से, उन्होंने कहा कि जब ये हॉकी कप एक वहां पर जब हुआ था भुवनेश्वर में, वहां पर उनको अच्छा मार्केट मिला और अच्छे दाम मिले, क्योंकि मिलेट के बिस्किट्स जो है उनके बहुत बेहतर तरीके से उनको मार्केट मिला और पसंद किया गया। तो ये मतलब इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज आती है मार्केट एक्सेस में, हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जहां इस तरह का कैप्टिव मार्केट होता है, कोई बड़े आयोजन होते हैं, वहां पर इन लोगों को मार्केट एक्सेस दिलवाना चाहिए, जिससे कि इनके जो बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद है वो लोगों के बीच में पहचान बनाए और ये जो मार्केटिंग है वो फिर इनकी विकसित हो।
1: जी जगदीश जी, अगर इस योजना और खाद्य प्रसंस्करण को थोड़ा सा जोड़ कर देखें तो जो 44% महिला नेतृत्व वाले जो उद्यम हैं उनको स्वीकृत ऋण मिले हैं, साथ ही साथ 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सीड कैपिटल मिली है, यानी जो महिलाओं को आज तक हम सहायक श्रम मानते आए थे, बहुत बड़े तबके के लिए सहायक श्रम की भूमिका थी उनकी, अब वो बिजनेस ओनरशिप में परिवर्तित होने जा रही है। आपको क्या लगता है जब महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में और ज्यादा तकनीकी तौर पर सक्षम बनाया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा, तो आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है कि हम ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब भारत को बनाएं, उस दिशा में कितनी प्रगति आप देखते हैं?
0: मुझे लगता है महिलाएं बहुत बड़ा और हिस्सा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, क्योंकि भारत में फूड प्रोसेसिंग कोई आज की नहीं है, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन अगर आप देखें कि कितनी चीजें हमारे घरों में बनती है, आज उस क्वालिटी की चीजें आपको बाजार में नहीं मिलती, हमारी नानियों दादियों ने क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या नहीं हमने खाया है, तो ये ऐसे ही नहीं बनती, फलों से, सब्जियों से, अनाज से, मोटे अनाज से, इन सब से वो बनाती रही है। मैं समझता हूँ उसमें अगर आप महिलाओं को बढ़ा

0: चाहते हैं, तो जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, जो पुराना उनका ज्ञान, पुराने जमाने की जो उनकी विधियां हैं, जो बहुत कम खर्च में ओवरहेड एक्सपेंसेस जिसको कहते हैं, वो कोई भी पदार्थ उसमें वेस्ट नहीं जाता। अभी तो हम अपने जो कृषि टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें से सिर्फ 10% ही फूड प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, और फलों और सब्जियों में तो 2-3% ही कर पा रहे हैं। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े अपनाए तो आप यकीन मानिए वो महिलाएं ऐसा चमत्कार कर सकती है। 44% महिलाएं कम नहीं होती है। अगर एक योजना जिसमें 2 लाख से ज्यादा सैंक्शन हुए, 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो चुका है, उसमें अगर 44% महिलाएं हैं, तो ये मानकर चलिए कि महिलाएं इस योजना को आगे बढ़ा रही हैं। उनके उस ज्ञान को, जैसे ही क्या होता है, अगर आप कोई स्वयं सहायता महिलाओं का समूह है और उसमें जब कोई एक टेक्निकल विशेषज्ञ जाता है तो वो आधुनिक पढ़ाई लिखाई वाला होता है, वो जब उनको बताने लगता है तो वो हंसती है आपस में कि क्या बोल रहा है, इसको नहीं मान, ये ऐसे नहीं ऐसे बनता है। तो उस नॉलेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो ट्रेडिशनल नॉलेज है। उस नॉलेज को किस तरह से आप आधुनिक टेक्नोलॉजी के ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, उसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट निकलने वाला है। जिन देशों ने फूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाया, उन्होंने पुराने नॉलेज को छोड़ा नहीं है, पुरानी टेक्निक्स को छोड़ा नहीं है, उसको उन्होंने उसको नया रूप दिया है, टेक्नोलॉजी में उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये अडॉप्टेशन अगर आप करते हैं इस योजना में, तो यकीन मानिए महिलाएं इस योजना की मतलब कर्णधार हो सकती हैं। और बड़े पैमाने पर कितना प्रोड्यूस हमारा बेकार जाता है, आलू पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, बेकार फेंका जाता है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है, अगर है तो उसकी क्षमता उतनी नहीं है। टमाटर कितने ही राज्यों में टमाटर फेंक दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में तो एक पूरा जिला है टमाटर से सड़कों पे फेंक देते हैं, प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है। फिर प्रोसेसिंग की यूनिट अगर लगा दी जाए तो उसको मार्केट एक्सेस नहीं है, और वो उस क्वालिटी में उसको मिलना चाहिए, जीवन अवधि है, तो वो प्रोड्यूस उस अवधि में पहुंच जाए कंज्यूमर तक, ये सब व्यवस्था आपने तो सोचनी पड़ेगी। और उसके लिए जो मेरा जोर इस बात पर है कि जो पुरानी विधियां हैं उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएंगे, तो आप यकीन मानिए महिलाएं जो आज कर रही है ना, जो स्वयं सहायता समूह की छोटे छोटे उद्यम चला रही है, जैसे मिलेट्स के बिस्कुट छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर गांव-गांव में ये बन रही है चीजें, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसकी पैकेजिंग, ये दोनों को संभालने की जरूरत है। तो अगर आप पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ मिलाते हैं, अगर मशीनरी नहीं है तो बनाई जा सकती है, जैसे मैंने कहा कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें लोग बना रहे हैं। मैंने छोटे स्थानों पे, अमरावती महाराष्ट्र का छोटा स्थान है, वहां 2-3 यूनिट्स देखी जो 3D टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, उसमें उनको एक इंजीनियर मिल गया, उसके सहारे उन्होंने इसको अपना लिया। तो ये नए प्रयोग वो लोग उनके दिमाग में आते हैं, हमने एक योजना बना दी और योजना का एक फिक्स ढांचा है, तो उसको थोड़ा सा ओपन रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, इसको भी हम लेंगे और इस पर भी हम विचार करेंगे। इसमें आपके पास 4 ऐसी योजना है, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय जो है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और PMFEM के साथ में ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी है, जो इन सब योजनाओं में कैसे लिंकेज हो और इन सब योजनाओं का लाभ फूड प्रोसेसिंग को कैसे मिले, मंत्रालय इसके लिए कोशिश कर रहा है, नो डाउट, मतलब उनके उद्देश्यों में भी लिखा है, और ये सब योजनाएं फूड प्रोसेसिंग को मदद करती है, उस सेक्टर को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इसमें थोड़ा जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको शामिल करना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए कि अच्छा हम इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे हमारा बनाने का एक फार्मूला है, उस फार्मूले के अलावा अगर पुराना कोई अच्छा फार्मूला है तो हम उस फार्मूले को अपनाएंगे, तो यकीन मानिए हमारा हम बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, इसमें ग्रो करने की जबरदस्त संभावना है। अभी हम 30.5 के लाख करोड़ के आसपास का ये सेक्टर है, इसको आप 4 गुना ले जा सकते हैं, इतनी क्षमता हमारे इस सेक्टर में है। तो मैं समझता हूँ कि योजना एक उस दिशा में बहुत अच्छा कदम है, और इसको इन सब चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। और मेगा फूड पार्क्स और जो ये बड़ी होती PM किसान संपदा योजना के तहत बन रहा है, कोल्ड चेन्स बन रही है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बन रहे हैं, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको गांव में जाना चाहिए आसपास के, और जहां वो प्रोड्यूस है, लोकल प्रोड्यूस है, उसको कैसे मदद दी जाए ये कोशिश करनी चाहिए, उनको कैसे हम सहायता दे सके, उसको जब आप इस PM FME से जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा उसका मुझे लगता है। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क देने से अब बात नहीं बनती है, उसके साथ नीचे भी लोगों को जोड़ा जाना।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम में अब समय कम है, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि कोविड के समय इस योजना को शुरू किया गया था, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अगर भविष्य की बात करें तो अगले 5 से 10 वर्षों में आप इस योजना से भारत के ग्रामीण इलाकों की प्रगति को कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे इस योजना का दायरा और व्यापक होता जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला पलायन जो एक गंभीर समस्या है, उस पर भी बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा?
2: बिल्कुल, देखिए एक तो अभी तक के जो नतीजे हम देख रहे हैं वो काफी प्रॉमिसिंग है। दूसरी बात यह है कि ये हमें हमारे तमाम सारे पॉलिसी एक्सपर्ट और इकोनॉमिक

0: ज्यादातर अब ये सब मान चुके हैं कि जो लिबरलाइजेशन में हमने उम्मीद लगाई थी कि लोग कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर बड़ी इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में जाएंगे, उसकी संभावनाएं अब कम है। हमें जो रास्ता ढूंढना है इन लोगों के लिए, उनके इकोनॉमिक वेलबींग का, उनके बेहतर फ्यूचर का, वो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही ढूंढना है। तो ऐसे में इस तरह की स्कीम को और बेहतर करके और वहां पर और ज्यादा संभावनाएं पैदा करके क्या हम कर सकते हैं, कैसे जो बड़ा निवेश ला सकते हैं, वो करना पड़ेगा और करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं कि बिहार में कुछ इस तरीके का एक छोटे स्तर पर सोलर पावर्ड कोल्ड रूम बनाए, बहुत ही पायलट लेवल पे, और उसमें महिलाओं ने अपने जो, जैसे उपासना जी बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे फल और सब्जियां वेस्ट हो जाती हैं बड़े पैमाने पर, उन्होंने उसमें रखना शुरू किया और उनको एक मेंबर बना करके किया गया काम। तो ये छोटा सा काम था लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि उनका वेस्टेज कम हो गया, उनके प्रोड्यूस को बेहतर दाम मिलने की स्थिति पैदा हो गई। इसमें भी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो शेल्फ लाइफ जिस तरीके के प्रोडक्ट प्रोसेस होकर के आते हैं उनका अगर कम है तो कम्युनिटी लेवल पर उनके लिए ये इस तरीके के कलेक्टिव जो अप्रोच के जरिए जो फैसिलिटी है उसमें भी साथ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा तंत्र सरकार को बनाना चाहिए जो इनके साथ सीधा जुड़ सके।
1: छोटे छोटे कदम जब एक दिशा में बढ़ते हैं तो वो सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, पूरी तस्वीर बदल देते हैं। पीएम एफएमई योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि उन लाखों हाथों की ताकत है जो अपने हुनर से आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहे हैं। जहां एक छोटा सा यूनिट एक परिवार की उम्मीद बनता है और वही उम्मीद पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को गति देती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि जब नीतियां जमीन से जुड़ती हैं तो बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं जिंदगियों में दिखाई देता है। हमारे अतिथि जगदीश उपासने जी और हरवीर सिंह जी, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक माधुरी।

कार्यक्रम लोक माधुरी में आप सबों का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं दीपक कुमार झा। श्रोताओं, लोक माधुरी कार्यक्रम के आज के इस अंक में हम बात करेंगे लोक गाथाओं के बारे में। हम चर्चा करेंगे कि लोक गाथा क्या है, इसके क्या तत्व हैं, इसकी क्या प्रासंगिकताएं हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत आइए एक लोक गाथा से ही करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कप्पल पासवान और उनके साथियों द्वारा गाया गया ये लोक गाथा। श्रोताओं, अपने समाज में लोक गीतों की तरह ही लोक गाथा का भी प्रचलन रहा है। लोक गाथा को कथात्मक गीत भी कह सकते हैं। इसको गाकर नृत्य करने की भी परंपरा रही है। लोक गाथा की परिभाषा करते हुए विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न विचार प्रकट किए हैं, किंतु परिभाषाओं में कुछ सर्वमान्य तत्व विद्यमान हैं। लोक गाथा को कथात्मक गीत अथवा गीत कथा भी कहा गया है। फ्रैंक सिजविक लोक गाथा को सरल वर्णनात्मक गीत मानते हैं, जो लोक मात्र की संपत्ति होती है और जिसका प्रसार मौखिक रूप से होता है। प्रोफेसर एफ बी गुमेर ने इनकी विस्तृत चर्चा

की है। उनके अनुसार लोक गाथा गाने के लिए लिखी गई ऐसी कविता है जो सामग्री की दृष्टि से प्रायः व्यक्तित्व विहीन रहती है और संभवतः उद्भव की दृष्टि से सामुदायिक नृत्यों से संबद्ध रहती है, पर इसमें मौखिक परंपरा ही प्रधान है। डॉक्टर मेयर लोक गाथा को छोटे छोटे पदों में रची कविता मानते हैं जिसमें कोई लोकप्रिय कथा विस्तार से कही गई हो। लूसी पॉन्ड लोक गाथा को एक साधारण कथात्मक गीत मानते हैं और इसकी उत्पत्ति को संदिग्ध बताते हैं। तात्पर्य यह कि लोक गाथाओं में गीतात्मकता अनिवार्य तत्व है। कथानक प्रभावशाली और विस्तृत होता है पर उनके रचयिताओं का पता नहीं होता। ये समाज के किसी वर्ग और व्यक्ति विशेष से संबद्ध नहीं है अपितु संपूर्ण समाज की धरोहर हैं। इनका उद्भव जनसाधारण की मौखिक परंपरा से होता है। काव्य कला के सौंदर्य और गुणों का इनमें अभाव रहता है। भारत में लोक गाथाओं की बड़ी ही व्यापक और दीर्घ परंपरा पाई जाती है परंतु इसकी कोई निश्चित संज्ञा नहीं है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में इनके भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। महाराष्ट्र में इन्हें पावड़ा, गुजरात में कथा गीत तथा राजस्थान में गीत कथा कहते हैं। अपने मिथिला क्षेत्र में भी कई प्रकार के लोक गाथा हैं जैसे कि राजा सलहेश, डोमकच, झरनी, राजा भरथरी आदि। यूं कहें कि भारतीय लोक गाथाओं के अनेक प्रकार हैं। स्थूल रूप से इनका वर्गीकरण विषय तथा आकार की दृष्टि से किया जा सकता है। वृहत गाथाओं का आकार कभी कभी प्रबंध काव्यों के समान भी पाया जाता है किंतु लोक गाथाओं का वास्तविक वर्गीकरण विषय की दृष्टि से ही समीचीन होगा। श्रोताओं आइए सुनते हैं एक लोक गाथा। इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं राजा गोपी चंद्र की गाथाओं को जिसमें स्वर दिया है सुरेश लाल देव ने।

अभी आप सुन रहे थे राजा गोपी चंद्र की गाथा सुरेश लाल देव से। श्रोताओं, लोक गाथा के कई प्रकार हैं, जैसे प्रेम कथात्मक गाथा, वीर कथात्मक गाथा, रोमांच कथात्मक गाथा, योग कथात्मक लोक गाथाएं आदि। प्रथम कोटि की लोक गाथाओं में प्रेम संबंधी वर्णन ही अधिक रहता है। प्रणय में उत्पन्न अनेक घटनाएं एक स्थान पर संजो दी जाती हैं। इनमें प्रेम विषम परिस्थिति में उत्पन्न होता है तथा उसी में पलता और बढ़ता है। इसी कारण संघर्ष की अवस्था अनिवार्य होती है। पिहुला बाला लखंदर, शोभा नयका बंजारा तथा भरथरी चरित में वियोग की शीर्षावस्था के दर्शन होते हैं। द्वितीय वर्ग की गाथाएं वीर कथात्मक गाथाएं हैं। इन लोक गाथाओं में किसी वीर के साहसपूर्ण कौशल का वर्णन अभीष्ट होता है। इस प्रकार की लोक गाथाओं में प्रायः उसी वीर पुरुष के चरित्र को उभारा जाता है जो नायक होता है। कहीं तो वह किसी आपदग्रस्त नारी की रक्षा करते हुए दिखाई पड़ता है, तो कहीं न्याय की विजय के लिए अन्याय से संघर्ष करता हुआ। इस प्रकार की गाथाओं में आल्हा सर्वश्रेष्ठ है। लोरिकायन तथा कुंवर विजयमल की गाथाएं भी इसी कोटि में आती हैं। तृतीय प्रकार की गाथाओं में रोमांच या रोमांस की प्रधानता होती है। इस प्रकार की गाथाएं प्रायः नायिका प्रधान पाई जाती हैं। नायिकाओं का लौकिक जीवन रोमांचकारी घटनाओं से भरा होता है। इस कोटे में प्रमुख रूप से दो लोक गाथाएं उल्लेखनीय हैं, सुरठी तथा बिहुला बाला लखंदर। इनका मुख्य उद्देश्य सत्य की असत्य पर विजय है। कथा में नायक बाद में योग धारण कर जोगी बन जाते हैं और सभी सुख सुविधाएं छोड़कर संसार से विरक्त हो जाते हैं। इन्होंने इस कोटि के अंतर्गत राजा भरथरि तथा राजा गोपीचंद्र की गाथाओं को अलग से स्थान दिया है। विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रधान रूप से कुछ प्रमुख लोक गाथाएं प्रचलित हैं। इनमें से कुछ हृदयग्राही लोक गाथाओं का विवरण भी आता है। आइए सुनते हैं राजा भरथरि पर आधारित लोक गाथा।

अभी आप सुरेश लाल देव से राजा भर्तृहरि पर आधारित लोक गाथा सुन रहे थे। इसी के साथ लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी अब यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के लिए वाचन और निर्माण दीपक कुमार झा का था, प्रस्तुतकर्ता थे विनीत कुमार ठाकुर और संयोजन था अमरनाथ प्रसाद का। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी। आकाशवाणी दरभंगा से अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों के रंग।

गीतों के रंग कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हिंदी सिने जगत के मशहूर पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिवस है। 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में जन्मे मुकेश चंद्र माथुर, जिन्होंने मुकेश के नाम से हिंदी सिने जगत को अपनी आवाज दी। आइए आज के गीतों के रंग कार्यक्रम में सुनते हैं मुकेश के गाए कुछ बेहतरीन नगमे।

गीतों के रंग कार्यक्रम में आज सुन रहे हैं हम मुकेश के गाए बेहतरीन नगमे। मुकेश ने 10वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया और कुछ समय के लिए लोक निर्माण विभाग में काम करने लगे। दिल्ली में काम के दौरान ही उन्होंने आवाज की रिकॉर्डिंग के साथ प्रयोग और अपनी गायन क्षमता और वाद्य बजाने के कौशल को विकसित किया। मुकेश को मुंबई लाए उनके दूर के रिश्तेदार मोतीलाल, जहां उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से गायन की शिक्षा ली। इसी दौरान मुकेश को हिंदी फिल्म निर्दोष में गायक अभिनेता की भूमिका का प्रस्ताव मिला। उनका पहला गीत दिल ही बुझा बुझा हुआ हो तो, जिसे उन्होंने निर्दोष फिल्म के लिए गाया था और पार्श्व गायक के रूप में उनका पहला हिट गाना था दिल जलता है तो जलने दे। अभिनेता मोतीलाल पर फिल्माए गए इस गीत को पहली नजर फिल्म में लिया गया था। मुकेश कहते हैं केएल सहगल के इतने बड़े प्रशंसक थे कि पार्श्व गायन के शुरुआती वर्षों में वे अपने आदर्श की नकल करते रहे। एक बार तो केएल सहगल ने कहा कि दिल जलता है गाना सुना और उन्होंने टिप्पणी की, यह अजीब है, मुझे याद नहीं कि यह गीत मैंने कब गाया।

नीतूकरण में बातें हो रही हैं पार्श्व गायक मुकेश के बारे में। बाद के दिनों में मुकेश ने निर्देशक नौशाद अली की मदद से अपनी गायन शैली विकसित की। नौशाद अली ने मुकेश को उनकी सैगल शैली से बाहर निकलने और अपनी खुद की शैली बनाने में मदद की। नौशाद ने उन्हें फिल्म अंदाज के लिए गाने दिए। शुरुआत में इस फिल्म में दिलीप कुमार की आवाज मुकेश ने दी थी और राज कपूर के लिए मोहम्मद रफी ने गाया था। उन्होंने नौशाद के कई हिट फिल्मों में गाने गाए, अनोखी अदा, नीला, अंदाज। अन्य संगीतकार जिन्हें जीवन का सपना टूट गया जैसे हिट गानों में महान दिलीप कुमार के लिए मुकेश की आवाज का इस्तेमाल किया, वे थे अनोखा प्यार में अनिल विश्वास, ये मेरा दीवानापन है यहूदी में शंकर जयकिशन और सुहाना सफर, दिल तड़प तड़प के मधुबती में सलील चौधरी। हालांकि बाद में दिलीप कुमार ने रफी को अपनी आवाज के रूप में चुना और मुकेश राज कपूर की आवाज बन गए।

मुकेश ने शंकर जयकिशन के लिए सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए, 133। उसके बाद कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 गाने रिकॉर्ड किए। 4 फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने वाले मुकेश ने सर्वाधिक शंकर जयकिशन के संगीत वाले में पुरस्कार जीता, जिसकी संख्या है 3। 1974 में मुकेश को रजनीगंधा कि कई बार मैंने देखा है कि गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, और फिल्म अनाड़ी के गाने सब कुछ सीखा हमने, पहचान सबसे बड़ा नादान वही, बेईमान के जय बोलो बेईमान की, इन सबों के लिए उन्होंने फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। शंकर गायक जयकिशन द्वारा रचित तीनों गाने हैं, और कभी कभी मेरे दिल में फिल्म कभी कभी के टाइटल सॉन्ग के लिए खयाम द्वारा रचित संगीत में मुकेश ने पुरस्कार प्राप्त किया। मुकेश ने कल्याण जी आनंद जी संगीत निर्देशक की जोड़ी के लिए कई गाने गाए। शंकर जयकिशन के बाद मुकेश ने एक ऐसी जोड़ी नैना है जादू भरे से लेकर बेदर्द जमाना क्या जाने, जिसके अकेले कल्याण जी वीरजी शाह के रूप में संगीतबद्ध किया था।

0: बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।
1: नहीं।

0: बोल राधा बोल संगम को गाते नहीं, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम को गाते नहीं, पर बोल राधा बोल संगम को गाते नहीं
1: नहीं नहीं।

0: बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना सा, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।
1: क्या ना क्यों सताते हो, होगा
2: मुकेश बॉलीवुड के उन गायकों में से हैं जिन्होंने मोहब्बत गाई तो लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं, जब उन्होंने दर्द गाया तो लोगों के आंसू छलके, और जब उन्होंने देशभक्ति के तराने गाए तो चप्पा चप्पा गूंज उठा देशभक्ति के भाव से। मुकेश के गाए हुए गाने आज भी हमारी जुबान पर यूं ही बरबस आ जाते हैं और हम उन्हें गुनगुनाने लगते हैं।

गीतों के रंग कार्यक्रम में आज हमने याद किया मुकेश को उनकी जयंती पर। चलते चलते सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना।

0: इसी के संग गीतों के रंग कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मानसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
2: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के

0: पारित करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने पक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. Meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. The government today reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth. Mr. Rijiju's remarks came as both houses of parliament witnessed repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day today over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Later, the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. The opposition demanded resignation of the